उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान, सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकौ, तू ठाकर ऊच भगवाना, मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगंत जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय, हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाणिया मान देवाए, ज्यो धरती चरण तले ते उपर आवै, त्यो नानक साध जना, जगत आन सब पैरी पाए, सूही महला चौथा, तू करता सब किछे आपे जाने, क्या तुद पै आग सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तेहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाने, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुझ सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड़ियाई तू है जाने, सब तुदनो नित ते आए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित्र परम पद पाए।

ब्रह्मा बिशर महादेव त्रै गुण रोगी विचहो मैं कार कमाई जिन किए तिसै न चेतै बपड़े हर गुरमुख सो जी पाई हौ मैं रोग सब जगत व्यापिया तिन कहो जन मरण दुख भारी गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन कहो हौ बलिहारी जिन सिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूपया पारो नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म बिचारो सुही महला चौथा कीता करना सरबर जाई किश कीचै जे कर सकी अपना कीता किशु ना होवै ज्यों हर भावै त्यों रखी मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किश कर हम साकै ज्यों भावै तिवें बख्श रहाओ सब जियो पिंड दिया तुद आपे कर लाया जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै जेहा तू तुर लिख पाया पंच तत् कर तुद सिरिठ सब साजी कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै एक ना सतगुर मेल तू बुझावै एक मन मुख करै से रोवै हर की वडियाई हौं आख ना साका हौं मूर्ख मुग्ध नी जान जन नानक कहो हर बख्श लै मेरे स्वामी शरणागत पया अजान राग सूही महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद बाजी गर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एक ओंकारा कवन रूप दृष्टियो बिनसायो कतै गयो ओ काते आयो रहाओ जल ते उठे अनक तरंगा कनक भूखन कीने बहुरंगा बीज बीज देखियो बहु प्रकारा फल पाके ते कंकारा सहस घटा मैं एक आकाश घट फूटे ते ओही प्रगास भरम लोभ मोह माया विकार भ्रम छूटे ते एकंकार ओह अबनासी बिन सतनाही ना को आवै ना को जाही गुरपूरै हौ मैं मल धोई कहो नानक मेरी परम गत होई सुही महला पंजवा कीता लोड़ै सो प्रभ होए तुद बिन दूजा नाही कोए जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की रख लाज तेरी शरण पूर्ण दयाला तुझ बिन कमन करे प्रतपाला रहाओ जल थल महियल रहया परपूर निकट वसै नाही प्रभ दूर लोक पतियारै कछु ना पाईऐ साच लगै ताह मैं जाइऐ जिसनो लाए लय सो लागै ज्ञान रतन अंतर तिस जागै दुरमत जाए परम पद पाए गुर प्रसादी नाम ते आए दुइ कर जोड़ करो अरदास तुद भावै ता आणै रास कर कृपा अपनी भक्ति लाए जन नानक प्रभ सदा ते आए सुही महला पंजवां तन सोहागन जो प्रभु पछानै मानै हुक्म तजै अभमानै प्रेसे राती रलिया मानै सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी मन तन अर्प तजला जलुकानी रहाओ सखी सहेली कौ समझावै सोई कमावै जो प्रभ पावै सास सुहागण अंक समावै गर्भ घेली महल ना पावै फिर पछतावै जब रहन विहावै कर्महीन मनमुख दुख पावै बिनो करीजे जाना दूर प्रभ अबनासी रहा भरपूर जन नानक गावै देखा दूर सुही महला पंजवा गृह वस गुर कीना हो कर की नार दस दासी कर दीनी पतार सगल समग्री मैं कर की जोड़ी आस प्यासी पिर को लोड़ी कवन कहा गुण कंत प्यारे सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया अमृत नाम तंबोल मुख खाया कंगन बस्तर गहने बने सुहावे तन सब सुख पावे जा पिर कर आवे
ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਰ।

प्रगटया सूर जोत उजियारा, सेज विशाई सरदया पारा, नव रंग लाल सेज रावने आया, जन नानक पिर तन मिल सुख पाया। सूही महला पंजवा, उमक्यो हियो मिलन प्रभताई, खोजत चरयो देखो प्रे जाई। सुनत संदेसरो प्रे गृह सेज विशाई, भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई। किन बिद हियरो धीरे निमानो, मिल साजन तुझ कुरबानो रहाओ। एका सेज विशी तन कंता, तन सूती पिर सद जागंता, पियो मदरो तन मतवंता, तन जागे जे पिर बोलंता। पही निरासी बहुत दिन लागे, देह दिसंतर मैं सगले चागे। खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे, होए कृपाल प्रभ मिलै इस पागे। भयो कृपाल सतसंग मिलाया, बूझी तपत करै फिर पाया। सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया, कहो नानक गुर परम चुकाया। जै देखा तै फिर है भाई, खोलियो कपाट ता मन ठहराई। रहाओ दूजा सूही महला पंजवा, क्या गुण तेरे।

लाल रंगीले प्रीतम मनमोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ। प्रभ दाता मोहि दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावो क्या कहरी जावो बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाईए अंत न लहीए मंत्र से चरनारे पावो दान ढीठ होए मांगो मुख लागै संतरे नारे जन नानक कहो गुर कृपा तारी प्रभात दे निस्तारे सुही महला पंजवां कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवा थोरी मंगन बहुता महला पावै कहतो पहुता जो प्रेमाने तिन की रीसा कूड़े मूर्ख की हाठीसा रहाओ पेख दिखावै सच ना कमावै कहतो महली निकट ना आवै अतीत सदाए माया का माता मने प्रीत कह मुखराता कहो नानक प्रभ बिना सुनी जय कुचल कठोर कामी मुक्त की जय दर्शन देखे की वड्याई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिगस फूल बैठा साज जना का दर्शन जीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जै सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब धंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जै कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईए जौ होइए रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवा लाल नरावया कमन गतीरी सखी बतावो मुझे मतीरी सुह

संत करे हर रंगा, तह मरण ना जीवन सोग ना हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जां कै दर्स पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जां का शब्द सुनत सुख सारे, जां की टहल जमदूत बिदारे। जां की तीरक इस मने सुधारे, जां कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन ना पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो काले खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, घट

सच्चा धर्म पुन भला कराए, दीन कह तो सह दुनी ना जाए, सर्व निरंतर एको जागे, जित जित लाया तित तित को लागे। अगम्या गोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बोलाया तेरा। सुही महला पंजवा, प्रातः काल हर नाम उचारी, ईत ऊत की ओढ़ सवारी। सदा सदा जपिए हर नाम, पूर्ण होवे मन के काम। रहाओ प्रभ अविनाशी रहन दिन गाओ, जीवत मरत निहचर पावे थाओ। सो साहो सेव जे टोट ना आवे, खात खर्चत सुख अंध विहावे। जग जीवन पुरख साध संग पाया, गुर प्रसाद नानक नाम ते आया। सुही महला पंजवा, गुर पूरे जपहे दयाल, दुख बिन से पूर्ण पई काल। पेख पेख जीवा दर्श तुम्हारा, चरण कमल जाई बलिहारा। तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा, रहाओ। साध संगत स्यों प्रीत बन आई, पूर्व कर्म लिखत तुर पाई। जप हर हर नाम अचरज प्रताप, जाल न सके तीने ताप। निमख न बिसरे हर चरण तुम्हारे, नानक मांगे दान प्यारे। सुही महला पंजवा, से संजोग करो मेरे प्यारे, जित रसना हर नाम उचारे। सुन बेनती प्रभ दीन दयाला, साध गावे गुण सदा रसाला। रहाओ जीवन रूप सिमरन प्रभ तेरा, जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्ट ना तारत, मिथ्या मोह बंधे नित पारच। माधवे पज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत हर सरणी। रहाओ करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखन संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सुही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर, हर हर नाम सिमर रतनागर। सिमर सिमर जीवा नारायण, दुख रोग सोग सब बिन से, गुर पूरे मिल पापत जायण। रहाओ जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म ते आई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पए जब दीन दयाला, नानक जाचे संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा, झूठे तंदे रचियो मूड़ा।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवै दुत्तर माई। दिन रहने अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हर, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेह रच लोबाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। साथ साथ सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तानु, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निद पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक को प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवा, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवा, कर पंजवा पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एकै, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवा, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवा, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यो राखो स्वामी। मार्ग गुरै पठाया रहाओ। महादुत्र माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, करो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवा, कर छेवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतियां। मिले नाम आधारा, तुठा सच्चा पात साहो। ताप गया संसारा, भगता की टेक तू। संता की ओट तू, सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ, ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਣੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ, ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹੱਲਾ।

मेरे राम हौसो थान पालन आया, खोइत खोइत पया साध संग तिन सरनाई पाया रहाओ। वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे, एक तिल नहीं कीमत पाई, साधक सिद्ध फिरै बिल लाते ते पी मोहे माई। दस अवतार राजे होए वरते, महादेव अवदूता तिन पी अंत न पायो तेरा, लाए थके बिपूता। सहज सुख आनंद नाम रस, हर संति मंगल गाया, सफल दर्शन भेट्यो गुर नानक, ता मन तन हर हर त्याया। सुही महला पंजवा, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। संत हो सागर पार उतरियै, जे को बचन कमावै संतन का। सो गुर प्रसादी तरियै रहाओ, कोट तीर्थ मजन इस नाना, इस तल में मैल भरी जै। साध संग जो हर गुण गावै, सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुक्त ना होई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद बैस, उपदेश चौं वर्ण कौ सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मैं, कड़कट नानक माजा। सूही महला पंजवां, जो किश करै सोई प्रमानै, ओए राम नाम रंग राते। तिनकी शोभा सबनी थाई, जिन प्रभ के चरण पराते। मेरे राम हर संतां जेवड ना कोई, भगतां बने आई प्रभ अपने स्यों, जल थल मैयल सोई रहाओ। कोट अपराधी संत संग उदरै, जमता कै नेड़ ना आवै। जन्म जन्म का विछड़िया होवै, तन हर स्यों आन मिलावै। माया मोह भरम पौ काटै, संत सरण जो आवै। जिहा मनोरथ कर आराधे, सो संतन ते

अंध कूप ते काल लिए तुम आप है कृपाला सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला अपनी नदर करे परमेश्वर बंधन काट छड़ाए अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए परम गया पै मोह बिनासे मिटिया सगल विसूरा नानक दया करी सुखदाता पेटिया सतगुर पूरा सूही महला पंजवा जब कछ ना सी ओ तब क्या करता कवन कर्म कर आया अपना खेल आप कर देखै ठाकर रचन रचाया मेरे राम राय मुझते कछु न होई आपे करता आप कराए सर्व निरंतर सोई रहाओ गणती गणी न छूटे कतहूं काची दे आनी कृपा करो प्रभ करण हारे तेरी बख्श निराली जी जंत सब तेरे कीते घट घट तुही ते आई है तेरी गतमित तू है जाने कुदरत कीम ना पाई है निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी कर्म धर्म नहीं जाना दया करो नानक गुण गावे मिठा लगे तेरा पाना सूही महला पंजवा भाग ठड़े हर संत तुम्हारे जिन घर तन हर

ज्ञान ध्यान किस कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्या

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे।

तिन मुख नाम न उपजे दूजे व्यापे चोर जियो मूल न बुझे अपना से पशुआ से टोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगे सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगे दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै ते तन कैसी भुख जियो बाकी वाला तलबीए सिर मारे जंदार जियो लेखा मंगे देवना पुछे कर बिचार जियो सच्चे की लिव उबरै बख्शे बख्शनहार जियो अन को की जय मित्रा खाक रलै मर जाए जियो बहु रंग देख पुलाया पुल पुल आवै जाए जियो नजर प्रभु ते छुट्टी है नजरी मेल मिलाए जियो गाफल ज्ञान में होने गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो खिंचो तान में गुची है बुरा भला दोए नाल जियो बिन शब्द पैर ते आ सब जो ही जमकाल जियो जिन कर कारण तारे आ सब सहदे आधार जियो सो क्यों मनो विसारी है सदा सदा दातार जियो नानक नाम ना विसरै निदारा आधार जियो सुही महला पहला काफी कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार वखर सच लै पथ पाए दरबार सतगुर शब्द पै रहाओ मन तन सच सलाहे साचे मन पाया लाल रत्ता मन मानिया गुरपूरा पाया हौं जीवा गुण सार अंतर तू वसै मन माए सह जे रस रसै मूर्ख मन समझाए आखो के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मन मुख परम पुलाना ना तिस रंग है मरसी होए विडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा कर आणिया गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सुही महला पहला ज्यों आरन लोहा पाए पन कढ़ाइयै त्यों साक्त जोनी पाए पवै पवाइयै बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए परम पुलावना रहाओ तू गुरमुख रखनहार हर नाम ते आई है मिले तुझे रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेखे आप देह सो पाई है तू देखे थापो थाप दर भी नाई है

ओए अमृत भरे भरपूर है ओना तिल ना तमाए, गुणकारी गुण संगर अवरा उपदेशन सेवड़ भागी जे ओना।

प्रभ रव रहया सब थाई मन वसाई पूर्व लिखिया पाया से सुखाली मेरे प्रपाणी सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हम मैं मल खोई गुरमत सच समाई नानक आप मिलाई करते नाम नमै निद पाई सुही महला तीजा हर हरे हर गुण गावो हर गुरमुखे पाए राम आन दिनो शब्द रवो अनहद शब्द बजाए राम अनहद शब्द बजाए हर जियो कर आए हर गुण गावो नारी अंदन भगत करे गुरे आगै सातन कंत प्यारी गुर का शब्द वसिया कट चानन गुर का शब्द वसिया कट अंतर सेजन शब्द सुहाए नानक तिन कर सद ही सोहेला हर कर कृपा कर आए भगता मनिया आनंद पाया हर नाम रहे लिव लाए राम गुरमुखे मन निर्मल होवा निर्मल हर गुण गाए राम निर्मल गुण गाए ना मन वसाए हर की अमृत बाणी जिन मन वसिया से ही जन निस्तरे कट कट शब्द समाणी तेरे गुण गावे सहज समावे शब्दे मेल मिलाए नानक सफल जन्म तिन केरा जे सतगुरु हर मार्ग पाए संत संगत स्यो मेल पया हर हर नाम समाए राम गुर कै शब्द सद जीवन मुक्त पाए हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मिलाए मनुआ रता हर नाले सुखदाता पाया मोह चुकाया अंदन नाम समाले गुरसबदे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन कर सद ही सोहिला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग परम पुलाया हर का महल न पाया राम गुरमुखे एक मेल मिलाया तिनके दुख गवाया राम तिनके दुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावे रंगराते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करे दर जापे कर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी सबदे ही सुख होई सुही महला तीजा जे लोड़े वर बालड़िए तां गुरचरणी चित लाए राम सदा होवे सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर कै सह सुभाए सातन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द सिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जने आपे आप्यो पाया नानक सदा प्रदावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया पिर पायाड़ा बालड़िए आंदन सहजे माती राम गुरमती मन अंध पया ते तन मैल ना राती राम ते तन मैल ना राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मिलाए आंदन रावे हर प्रभ अपना विचों आप गवाए गुरमत पाया सहज मिलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिलै वड्याई प्रभ रावे रंग राती पिर रावे रंग रातड़िए पिर का महल तिन पाया राम सो सहवत निर्मल दाता जिन विचों वाप गवाया राम विचों मोह चुकाया जा हर पाया हर का मन मन पाणी आन दिन गुण गावे नित साचे कथे अकथ कहानी जुग चारे साचा एको वरते बिन गुर किने ना पाया नानक रंग रवै रंग राती जिन हर से ती चित लाया कामण मन सोहिलड़ा साजन मिले प्यारे राम गुरमती मन निर्मल होवा हर राख्या और तारे राम हर राख्या और तारे अपना कार्य सवारे गुरमती हर जाता प्रीतम मोहे लया मन मेरा पाया कर्म विधाता सतगुर सेव सदा सुख पाया हर वसिया मन मुरारे नानक मेल लई गुर अपने गुर कै शब्द सवारे सुही महला तीजा
सोहेलड़ा हर राम नाम गुर शब्दी विचारे राम हर मन तनो गुरमुख बीजै राम नाम प्यारे राम राम नाम प्यारे सब कुल उधारे राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया कर अनहद सुरत समाणी हर हर एको पाया हर प्रभ नानक कृपा तारे सोहेलड़ा हर राम नाम गुर शब्दी विचारे हम नीवी प्रभ अतूचा क्यों कर मिलिया जाए राम गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुभाए राम मिल शब्द सुभाए आप गवाए रंग सों रलिया माने से सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम समाणे नानक सोहागण सा वडभागी जे चलै सतगुर पाए हम नीवी प्रभ अत ऊचा क्यों कर मिलिया जाए राम घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो राम एक ना प्रभ दूर वसै एक ना मन आधारो राम एक ना मन आधारो सृजन हारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे अंध होवा मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना विच एको एको राम पतारो राम गुरसेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाया राम हर धूड़ देवो मैं पूरे गुर की हम पापी मुत कराया राम पापी मुत कराए आप गवाए नहीं कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी गुरमत नाम प्रगासा हर हर आनंद भया दिन राती नानक हर मीठ लगाए गुर सेवन सतगुर दाता हर हर नाम समाए राग सूही महला चौथा शंत कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर पुरख में लाए।

निश्चल हब जाना मिथ्या माना, संत प्रभु होए दासा, जीवत मरिया भौ जल तरिया, जे थीवै कर्म लिखिया सा, गुरसे बीजे अमृत पीजै, जिसला वैसै त्यानो, नानक शरण पया हरिद्वार, हौ बलबल सद कुरबानो, सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया, सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया, जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया, वड भागी दर्शन पाई है, थियो न माना सद कुरबाना, सगलाया मिटाई है, ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा, हम तिस पाया विचाया, नानक दीन सरन सुख सागर, राख लाज अपनाया, सूही महला पंजवा, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो, हर अमृत भरे भंडार, सब किश है कर तिसकै बलराम जियो, बाबल मेरा वड समर्था, करण कारण प्रभारा, जिस मृत दुख कोई ना लागे, भौ जल पार उतारा, आद जुगाद भगतन का राखा, उस्त कर कर जीवा, नानक नाम महारस मीठा, अंदन मंतन पीवा, हरे आपे ले मिलाए, क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जी हो, जिसनो तेरी टेक, सो सदा सजी वही बलराम जी हो, तेरी टेक तुझे ते पाई, साचे सृजनहारा, जिसते खाली कोई नाही, ऐसा प्रभु हमारा, संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी, सफल दर्स भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी, संभलिया सच थान, मान महत सच पाया बलराम जी ओ, सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जी ओ, गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जमिया, सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारे, सुन पै बिनासे, सगल नानक प्रपुरख करने हारे, उपजिया

ठाकुर पाणी सा गुणवंती तिन्ही सब रंग माणा। नानक की तर तू है ठाकुर तू नानक का माणा। हम वारी वन्या कोली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हम बल जाई लख लख लख बरिया जिन परंपर दा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बेकारे ठाकर से मन माना। प्रभ जी पानी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुक्त जुगत दर खोला। कहो नानक कहो निरपा होई सो प्रभ मेरा ओला। सोही महला पंजवा साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन भाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्व गुणा परपूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्व रया परपूरे। तां की सरण सर्व सुख पाए होए सर्व कल्याणा। सदा सदा प्रभ को बलिहार है नानक सत गुरबाणा। ऐसा गुरबट भाग

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरा ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हाँ बिसम पई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी। हाँ चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा ते जेवड़े अवर ना कोई आदि अंत मध्य प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई। चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा। हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा अगम विचारो। मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हम मैं बिंठी गाठे। सब कै मद सब हूं ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद शरण आई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चितलाया। प्रभ अविनाशी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सब पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए। स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन त्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया। एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की सलोका नाल महला तीजा। श्लोक महला तीजा।

उड़ते कौ उड़ता, जीवते कौ जीवता मिले, मुवे कौ मुआ। नानक सो सालाही है जिन कारण किया पौड़ी, सच त्यायन से सच्चे गुर शब्द विचारी, हम मैं मार मन निर्मला हर नाम और तारी। कोठे मंडो माणिया लग पए गवारी, जिन किए तिसे ना जाननी मनमुख गोबारी। जिस बुझाए सो बुझसी सच्चा, क्या जंत विचारी। श्लोक महला तीजा, कामन तौ सिंगार कारो, जै पहला कंत मनाए, मत से जय कंत ना आवई एवै बिरथा जाए। कामन पिर मन मानिया तौ बनिया सिंगार, किया तौ प्रवान है जां सौ तरे प्यार। पाओ सिंगार तंबोल रस, भोजन पाओ करे, तन मन सौपे कंत कौ तौ नानक पो करे। महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस, ले तन किया सिंगार, सेजै कंत ना आयो एवै पया विकार। महला तीजा, तन पिर एह ना आखियन, बहन इकट्ठे होए, एक जोत दोए मूर्ति, तन पिर कहिए सोए। पौड़ी, पै बिन भगत ना होवई, नाम न लगे प्यार, सतगुर मिलिया पौ उपजै, पै पाए रंग सवार। तन मन रत्ता रंग सिया, हम मैं तृष्णा मार, मन तन निर्मल अत सोहना, पेटिया कृष्ण मुरार। पाओ पाओ सब तिसदा, सो सच वरतै संसार। श्लोक महला पहला, वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए, सागर लहर समुंद सर, वेल वर्ष वराहो, आप खड़ोवै आप कर, आप पीना या पाहो, गुरमुख सेवा थाए पवै, उन मन तत कमाहो, मसक तलहो मजूरिया, मंग मंग खसम दराहो, नानक पुर दर वे प्रवाह, तव दरूणा नाहे को सच्चा वे प्रवाहो। महला पहला, उज्जल मोती सोहने, रत्ना नाल जुड़न, तिन जन वैरी नानका, जे बुढ़े थिए मरन। पौड़ी, हर सालाही सदा सदा, तन मन सौब शरीर।

तब लग प्राणी तसै सरेवो, जब लग कट मैं सासा, जे कट जाए ता पाओ ना जासी, हर के चरण निवासा, जिसको शब्द बसावे अंतर, चूकै तसै प्यासा, हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै, मन जन टाले पासा, जो जन जान भजै अवगत।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहकी सार सुहागन जान है, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर रख है, अवरा देखना सुने अपक है, सो कत जाने पीर पराई, जाके अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत ना कीनी, पुरुष लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवने अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग एना, तै जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काट सवेरा, घर की नार उरै तन लागी, ओ तो पूत पूत कर भागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछ पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरे बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ समार सवेरा, सूही ललत बेड़ा बंद ना सकयो, बंधन की वेला, पार सरवर जब उछले तब तरण दुहेला, हाथ ना लायक सुंबड़े जल जासी ढोला, रहाओ एक आपी ने पतली सह केरे बोला, दुद्धा

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महल।

रजाई, जैसे सच में रहो रजाई रहाओ, जो किश होवा सब किश तुझते, तेरी सब असनाई, तेरा अंत ना जाना मेरे साहेब, मैं अंधले क्या चतराई, क्या हूं कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथ ना जाई, जो तुद पावे सोई आखा, तिल तेरी वड्याई, एते कुकरा हूं बेगाना, पौका स्तनताई, भगत हीण नाक जे होएगा, ता खसम नाओ ना जाई, बिलावल महला पहला, मन मंदर तन वेस कलंदर, कठी तीर्थ नावा, एक शब्द मेरा प्राण बस्त है, बाहुड़ जन्म नायावा।

अगमा गोचर लाख्या पारा चिंता करो हमारी जल थल मैयल भरपुर लीना कड़कड़ जोत तुम्हारी सिख मत सब तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा गुण गावन तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे बिलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान आपे कर कर वेखे तान तू दाता नाम प्रमाण ऐसा नाम निरंजन देओ हम जाचक तुम लाखा पे हो रहाओ माया मोह तरकटी नार पूंडी कामण कामण यार राज रूप झूठा दिन चार नाम मिले चानन अंधियार चख छोड़ी सहसा नहीं कोए बाप दिसै वे जात ना होए एके कहो नाही पौ कोए करता करे करा वैसोए शब्द मोए मन मन ते मारिया ठाक रहे मनसा चै तारिया अवरना सूजै गुर कौ वारिया नानक नाम रते निस्तारिया बिलावल महला पहला गुरबचनी मन सही ध्याने हर कै रंग रता मन माने मनमुख परम भुले बौराने हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई हर बिन जियारा रह ना सकै खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली सास गिरास जपो अपने हर पाली सद बैरागन हर नाम निहाली अब जाने गुरमुख हर नाली अकथ कथा कहिए गुर पाए प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए बिन गुर करनी क्या कार कमाए हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए मनमुख विछड़े खोटी रास गुरमुख नाम मिले साबास हर कृपा तारी दसन दास जन नानक हर नाम धन रास बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यों जित हुण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै अहला जन्म गवाया दूजा पाव ना दे लिव लागणो जिन हर के चरण विसारे जग जीवन दाता जन सेवक तेरे तिनके तैं दुख निवारे रहाओ तू दयाल दया पदाता क्या है जंत विचारे मुक्त बंद सब तूते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कहिए मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे परम पुलाने से मनमुख कहिए नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द समाले हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए आपे परखे आप चलाए आपे

माया सर्प भयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावै, जा होए कृपाल ता गुरु मिलावै। हाँ फिरो उदासी मैं करतन दसाया, निर्मोल हीरा मिलै ना उपाया। हर का मंदिर तिसमें लाल, गुर खोलिया पर्दा देख पई निहाल। जिन चाखिया तिस आया साद, जो गूंगा मन में बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण अक्स माया। बिलावल महला पंजवां, सर्व कल्याण किए गुरुदेव, सेव के अपनी लायो सेव। बिघन ना लागे जप अलाख्या पेव, तरत पुनीत पई गुण गाए। दुरत गया हर नाम ते आए रहाओ, सबनी थाई रव्या आप। आद जुगाद जा कावड़ प्रताप, गुर प्रसाद ना होए संताप। गुर के चरण लगे मन मीठे, निर्विघ्न होए सब थाई बूठे। सब सुख पाए सदगुर तूठे, पार ब्रह्म प्रभ रखवाले। जिथे किथे दिसे नाले, नानक दास खसम प्रतपाले। बिलावल महला पंजवां, सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे। अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे, मोहे अनाथ तुमरी सरनाई। कर कृपा हर चरण ते आई, दया करो बसो मन आए। मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ, प्रभ चित आवे ता कैसी पीड़। हर सेवक नाही जम पीड़, सर्व दुख हर सिमरत नसे। जा कै संग सदा प्रभ बसे, प्रभ का नाम मन तन आधार। बिसरत नाम हो तन शार, प्रभ चित आए पूर्ण सब काज। हर बिसरत सब का मोहताज, चरण कमल संग लागी प्रीत। बिसर गई सब दुर्मत रीत, मन तन अंतर हर हर मंत। नानक भगतन कै कर सदा आनंद, राग बिलावल महला पंजवां। कर दूजा जानड़िए कै कर गावना, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे, मैं मन तेरी टेक। अवर स्याण पां बिरथिया प्यारे, राखण कौ तुम एक रहाओ। सतगुर पूरा जे मिले प्यारे, सो जन होत निहाला। गुर की सेवा सो करे प्यारे, जिसनो होए दयाला। सफल मूर्त गुरदेव स्वामी, सर्व कला परपूरे। नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर, सदा सदा हजूरे। सुन सुन जीवा सोए।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप अलिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम ना।

गुण गावो नित राम के, ए अवखद जोग आए बसो कर देश मैं, एह भले संजोग नानक प्रभ सो प्रसन्न भय लह गए बेयोग। बिलावल महला पंजवां, काहू संग न चल ही माया जंजाल, ऊठ सिधारे छत्रपातो संतन कै ख्याल, रहाओ अहं बुद्ध कौ बिनसना ए तुर की ढाल, बहु जोनी जन्म मरै बिखिया बिकराल, सत बचन साधु कह नित जपै गोपाल, सिमर सिमर नानक तरे हर के रंग लाल। बिलावल महला पंजवा, सह समाध आनंद सुख पूरे गुरदीन, सदा सहाई संग प्रभ अमृत गुण चीन, रहाओ। जय जय कार जगत्र मैं लोचै सब जिया, सो प्रसन्न पए सतगुर प्रभु कछ बिघ्न न थिया, जा का अंग दयाल प्रभ ताके सब दास, सदा सदा वड़ियाइया नानक गुरपास। राग बिलावल महला पंजवां, घर पंजवां चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत मंडल जग साजिया ज्यो बालू घर बार, बिनसत बार ना लाग गई ज्यो कागद बूंदार। सुन मेरी मनसा मन माहे सत देख बिचार, से सतक गिरि जोगी तज गए कर बार, रहाओ। जैसा सुपना रैन का तैसा संसार, दृष्ट मान सब बिनसी है क्या लगे गवार, कहां सो भाई मीत है देख नैन पसार, एक चाल एक चाल सह सब अपनी वार, जिन पूरा सतगुर सेव्या से असर हर द्वार, जन नानक हर का दास है राग पैज मुरार। बिलावल महला पंजवा, लोकन किया वड्याइया बैसंतर पागो, जो मिले प्यारा अपना ते बोल करा गो, जो प्रभ जियो दयाल होए तो भगती लागो, लपट रहो मन बासना गुर मिले त्यागो, रहाओ। करो बेनती अत कनी यो जियो हमांगो, अर्थ आन सवारिया प्रे निमक सुहागो, पंच संग गुर ते छुट्टे दोख हर रागो, हृदय प्रगास प्रगट भया निस्बा सिर जागो, सरण सुहागने आया जिस मस्तक भागो, कहो नानक तिन पाया तन मन सीत लागो। बिलावल महला पंजवा, लाल रंग तिसको लगा जिसके वड भागा, मैला कदे ना हो वही न लागे दागा, प्रभ पाया सुखदाइया मिलिया सुख पाए, सह समाना भीतरे छोड़िया न जाए, रहाओ। जरा मरा न व्यापई फिर दुख ना पाया, पी अमृतिया गान्या गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम मोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला, सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म गुण तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुर्बानी। बिलावल महला पंजवा, राखो अपनी सरन प्रभ मोहे कृपा तारे, सेवा कछु ना जानो नीच मूर्खारे, मान करो तुदी उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद पूलते तुम बख्शन हारे, रहाओ। हम अवगन करे असंख नीत तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे, तुम देवो सबके दया तार, हम अकृत कनारे, लाग परे तेरे दान स्यो नैचित खसमारे, तुय ते बाहर किश नहीं पव काट नहारे, कहो नानक सरण दयाल गुर लेहो मुगदे उधारे। बिलावल महला पंजवा, दोष ना काहू दीजिए प्रभ अपना त्याई है, जित सेवे है सुख होए घना मन सोई गई है, कहिए काए प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जेठा कर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावे। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै, सतगुर सेवो अपना, काहे फिरो अभागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे फूल लागे, रहाओ कर पाप दर्पण की, कर पाप दर्ब किया, वर्तन कह ताई, माटी से माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर बकीता, अंदर

सर्वकला समरथ प्रभ पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजिया नामे बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रमन सापूर। जित जित लावो तित तित लगे, सियानप सब जाली जत का तुम भरपूर हो। मेरे दीन दयाली सब किश तुम ते मांगना, वडभागी पाए नानक की अरदास प्रभ जीवा गुण गाए। बिलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै कलमल सब नसना। प्रभ सेती रंग रातिया ता ते गर्भ ना ग्रसना, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। मन तन निर्मल होई है गुर का जप जपना रहाओ। हर रस चाखत त्रापिया मन रस लै हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट भई उल्ट कमल बिगसना। शीतल सांत संतोख होए सब बूझी तृष्णा, दह दिस तावत मिट गए निर्मल थान बसना। राखन हारे राखिया पय परम पसना, नाम निधान नानक सुखी पेक साध दर्शना। बिलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै तब होए निहाल। राज मिलख सिकदारिया अग्नि मैं जाल, संत जना का शोहरा तिस चरणी लाग। माया तारी शत्रपात तिन छोड़ो त्याग रहाओ। संतन का दाना रूखा सो सर्वन दान, गृह साक्त शक्ति प्रकार ते बिहू समान। भगत जना का लुगरा ओढ़ नगन ना होई, साक सिर पाओ रेशमी पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे अद विचो टूटे, हर जन की सेवा जो करे इत उते छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई दर्शन भेटत साधका, नानक गुण गाई। बिलावल महला पंजवा, सरवणी सुनाओ हर हर हरे ठाकर जस गावो। संत चरण कर सीस तार हर नाम ते आवो। कर कृपा दयाल प्रभ एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणका लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर बिनो बुलावो, पाव मलोवा आप त्याग संत संग समावो। सास सास न विसरे अनकत ना तावो, सफल दर्शन गुर भेटी है मान मोह मिटावो। सत संतोख दया धर्म सिंगार बनावो, सफल सुहागण नानका अपने प्रभावो। बिलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना सब मैं प्रगटाया, जिस जन होवा सा संग तिस पेटे हरदाया। एह प्रतीत गोविंद की जप हर सुख पाया, अनक बाता सब कर रहे गुर कर ले आया रहाओ। शरण परे की राखता नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए अवसर दुर्बाया। अंतरजामी आप प्रभ सब करे कराया, पतत पुनीत कणे करे ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मानुख जन माया परमाया, नानक तिस पत राखसी जो प्रपहराया। बिलावल महला पंजवा, माटी ते जन साजिया कर दुर्लभ देह, अनक छिद्र मन मैं टके निर्मल दृष्टे। क्यों बिसरे प्रभ मने ते जिसके गुण ए है, प्रभ तज रचे जे आन स्यों सोर लिये खे है। रहाओ सिमरो सिमरो सास सास मत बिलम करे है, छोड़ परपंच प्रभ स्यों रचो तज कूड़े ने है। जिन अनक एक बहुरंग

सिमरत सिमरत सिमरिय सो पुरख दातार मनते कवो न विसरै सो पुरख अपार चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव जा कहो कृपा करहो प्रभु ता कहो लाभो सेव निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद नानक कबो ना विसरै परमानंद बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया गुर कीने धर्मा गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर तन मन तन मन सब शीतल पया पाया सुखबीर रहाओ सोवत हर जप जागया पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद आप मुक्त संगीतरे कोल कुटां ब्योदारे सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ तान दीबाण परवार तन प्रभ तेरा नाओ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ संता एक त्यावना दूसर को नाहे एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए कथा पुरातन इयो सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे बिलावल महला पंजवा बंधन काट सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल राव आसा परम विकार मोह इनमें लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यो तू राखे त्यो रहा प्रभ अगम अपारे करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक तरिय साध संग हर हर गुण गाओ बिलावल महला पंजवा कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं विश्वास तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटे जो ऊपर लादा रहाओ जप तप संजम तुम खंडे जम के दुख डांड सिबरे नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना प्रभ जन कौ दीना बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुखसार।

प्रवयक में अपार, बस्त कमावत सब सुखी किश उन्न दिसै, संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै, जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया, जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया। बिलावल महला पंजवा, हर हर हर हरा दिया होइए आरोग, रामचंद की लष्ट का जनमार आरोग, रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचे भोग, साध संगत कह वारण मिलया संयोग, जिस सिमरत सुख पाई है बिन सह बेहोग, नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग। राग बिलावल महला पंजवा, दो पदे कर पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद आवरियो पाप सब त्यागया, दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग, शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या, सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया, रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया, सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया। बिलावल महला पंजवा, कर धर मस्तक थापिया नाम दीनो दान, सफल सेवा पार ब्रह्म की ताकी नहीं हान, आपे ही प्रभ राखता भगतन की आन, जो जो चित वह साध जान सो लेता मान, रहाओ शरण परे चरणार बिंद, जन प्रभ के प्राण सह सुभाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बिलावल महला पंजवा, चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप, प्रभ शरणांगत जन परे ताका सत प्रताप, राखन हारिया पार प्रभ ताकी निर्मल सेव, राम राज रामदास पुर कीने गुरदेव, रहाओ सदा सदा हर त्याई किश बिघन ना लागे, नानक नाम सलाही है पै दुश्मन भागे। बिलावल महला पंजवा, मन तन प्रभ आराधिय मिल साध समागै, उचरद गुण गोपाल जस दूर ते जम पागै, राम नाम जो जन जपै आंदन सज जागै, तंत मंत न जो है तित ताख न लागै, रहाओ काम क्रोध मद मान मोह बिन से अनरागै, आनंद मगन रस राम रंग नानक शरणागै। बिलावल महला पंजवा, जी जूत वस प्रभु कै जो कह सो करना, पय प्रसन्न गोपाल राय पौ किश नहीं करना,

ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਿਸ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਸਾਚਾ ਮਨ ਜੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਨਾਠਾ ਦੁਖ ਠਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਪਾਏ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤਾਤੇ ਬਹੁਣ ਨਾ ਤਾਓ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਨ ਬਲ ਜਾਓ ਅੰਧ ਸੁਖ ਮੰਗਲ ਬਨੇ ਪੇਖਤ ਗੁਣ ਗਾਓ ਰਹਾਓ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਧੁਨ ਇਹੋ ਬਨਿਓ ਸੁਭਾਓ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਏ ਬਾਹਿਤ ਫਲ ਪਾਓ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿਦ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੋਖਰ ਕੋ ਨਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰਖ ਗੁਣਤਾਸ ਕੀਰਤਨ ਨਾਮ ਸਿਮਰਤ ਰਹੋ ਜਬ ਲਗ ਘਟ ਸਾਸ ਰਹਾਓ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬੰਦਪ ਤੂੰ ਹੈ ਤੂੰ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕੋ ਨਿਰਮਲ ਜਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਰਬ ਸਿੱਧ ਹਰ ਗਾਈਐ ਸਭ ਭਲਾ ਮਨਾਵੈ ਸਾਧ ਸਾਧ ਮੁਖ ਤੇ ਕਹੈ ਸੁਣਦਾਸ ਮਿਲਾਵੈ ਸੂਖ ਸਹਿਜ ਕਲਿਆਣ ਰਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀਨ ਜੀ ਸਗਲ ਦਿਆਲ ਪਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੀਨ ਰਹਾਓ ਪੂਰ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਪੇਖ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਧੀਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤਾਰ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਰਾਖ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕੋ ਮੁਖ ਨਿੰਦਕ ਸ਼ਾਰ ਤੁਜੈ ਨਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋ ਮੀਤ ਜਨ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਦਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥ ਰਹਾਓ ਜੀਅਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਬੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬੇਨੰਤੀਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੋਰ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮੀਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਜਨਾ ਰਾਖੇ ਗੋਵਿੰਦ ਨਿੰਦਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਹੋਏ ਗਏ ਤੁਮ ਹੋ ਨਿਚਿੰਦ ਰਹਾਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਪੇਟੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਜੈ ਕਾਰ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸਫਲ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵ ਊਚ ਅਪਾਰ ਗਣਤ ਹਰ ਸਭ ਜੀ ਜਿਸ ਹਾਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਦ ਕਤ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮਜਾਲ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਰਸ ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਓ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜਾਂ ਕਾਵੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ ਪੂਰਨ ਪਏ ਕਾਮ ਭਉ ਨਾਠਾ ਪ੍ਰਭ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਵਿਸਰਾਮ ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਓ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਨਾਮ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕੜਕੜ ਸਭ ਜਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰੋਗ ਮਿਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸਾਂਤ ਵਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹਰ ਕੀ ਨੀਦਾਤ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਓ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਨ ਬਿਸਰਿਆ ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ ਅੰਦਨ ਰੰਗਰਾਤਾ ਸਾਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ ਪੂਰਨ ਪਈ ਆਸ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਿਮਰਤ ਗੁਣਤਾਸ ਰਹਾਓ ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ ਤੁਮੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਓ ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ
कहो नानक कृपा भई प्रभय सहाई। बिलावल महला पंजवा। अपने बालक आप रखिया नो पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पे पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोखा मारे बख्शिया नो अपनी कल तारी मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दुपदे कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवण यह ना सुनाए साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव सेव साध सेवाओ सदा करो करताए। अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए। हो कृपाल दीन दुख पंजन मोहे चरण हृदय वसाए। सब हूं तले तले सब ऊपर एह दृष्ट दृष्टाए। अभिमान खोए खोए खोए खोई हों मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए। अतुल अतुल अतुल नह तुलिया भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार है रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार है। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार है। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही तुम्हें मेरा परिवार है। जो तुम करहो सोई पल हमरे पेख नानक सुख चरणार है। बिलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने बिसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्रह जकीनी अमृत मनते डारन। काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन। नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा। संतन कै सुनियत प्रभ की बात कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जने आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप रहाओ। गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर कै बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाहया गुर सिरजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई। जिन पैज रखी सारे संसार रहाओ। कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्दो जारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाओ। बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन ऊंचा बीचना खींचा हों तेरा तू मोरा।
एक अंकार एक पासारा एक है प्रयापारा एक विस्तीर्ण एक संपूर्ण एक है प्राण आधारा निर्मल निर्मल सुचा सुचो सुचा सुचो सुचा अंत न अंता सदा बेअंता कहो नानक ऊचो ऊचा। बिलावल महला पंजवा बिन हर काम ना आवत है जा स्यो राच माज तुम लागे ओ मोनी मोहावत है रहाओ कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिन मैं जावत है उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बखैठ गौरी खावत है तिरण को मंदिर साज सवारो पावक तलै जरावत है ऐसे गढ़ में ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है पंच दूत मूंड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है दृष्ट ना आवे अंध अज्ञानी सोए रहो मदमावत है जाल पसार चोग विस्थारी पंखी जोफा हावत है कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपारिया मोली प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवो जैसे पांत बोली रहाओ सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ पूर्ण पूर्ण रहो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते ओ मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोज पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे वर्ण न साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिया किश कथन न जाई जह जह देखा तै रया समाई रहाओ जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई शरण परयो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अविनाशी करता पतत पवित एक निमख जपाई है अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है कित विधिया कित संयम पाई है कौ सुरजन के जुगति त्याई है रहाओ जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर मेरी उल्ट तरी पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा निध कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ अन बोले कहो तुही पछाने जो जियन मैं होता रे मन काय कहां लो डह कह जो पेहती संग सुनता ऐसो जान पहे मन आनंद आन न बियो करता कहो नानक गुर पहे दयारा हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है एह निशानी सुनो तुम पाई जो कालर पीत गिरी है रहाओ जो देखे शिदर तो निंदक उमा है पलो देख दुख परी है
आठ पहर चितवै नहीं पहुंचे, बुरा चितवत चितवत मरिया। निंदक प्रभु भुलाया काल नेरा आया, हर जन स्यों बाद उठरिया। नानका राखाया प्रभु स्वामी क्या मानस बपरे करिया। बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ। काज बिहाजन कंचन छाडन बैरी संग हेत साजन त्याग खरे। होवन कौरा अनहोवन मीठा बिखिया मैं लपटाए जरे। अंधकूप मैं परे उपरानी परम गुबार मोहे बंद परे। कहो नानक प्रभ हो दयारा गुर पेट काढ़े भा फरे। बिलावल महला पंजवा मंतन रसना हर चीना पय आनंदा मिटे आंदे से सर्व सुख मोको गुरदीना रहाओ। एनप ते सब पई सियानप प्रभ मेरा दाना बीना हाथ दे रख अपने को काहू ना करते कशकीना। बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर पारोसै कहू ना मान्यो मन छीना। बिलावल महला पंजवा गुरपूरै मेरी राख लई अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैल गई रहाओ।

रहाओ। गुर को शब्द मेरा ही अरे बस है, हर नाम मन संग धरो, तस्कर पंच निवारो ठाकर, सगलो परमा होम जरो। जो तुम करो सोई पल माने, पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते, संत संग ले मोहे उदरो। बिलावल महला पंजवा, ऐसी दिख्या जन स्यो मंगा, तुमरो ध्यान तुम्हारो रंगा, तुमरी सेवा तुम्हारे अंगा रहाओ। जन की टहल संपाखन जन स्यो, उठन बैठन जन कै संगा, जन चर राज मुख माथे लागी, आशा पूर्ण अंत तरंगा। जन पार ब्रह्म जा की निर्मल महिमा, जन के चरण तीर्थ कोट गंगा, जन की तूर कियो मज्जन नानक, जन्म जन्म के हरे कलंगा। बिलावल महला पंजवा, ज्यों पावे त्यों मोहे प्रतपाल, पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु, हम पार्ग तुम पिता कृपाल रहाओ। मोहे निर्गुण गुण नाही कोई, पहुंच ना सको तुमरी काल, तुमरी गत मित तुम ही जानो, जियो पिंड सब तुमरो माल। अंतरजामी पुरख स्वामी, अन बोलत ही जानो हाल, तन मन शीतल होए हमारो, नानक प्रभ जियो नदर निहाल। बिलावल महला पंजवा, राग सदा प्रभ अपने साथ, तू हमरो प्रीतम मन मोहन, तुझ बिन जीवन सगलिया काथ रहाओ। रंक तेराओ करत खिन पीतर, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, जल तगन मैं जन आप उधारे, करे अपने दे राखे हाथ। शीतल सुख पायो मन तृप्ते, हर सिमरतो श्रम सगले लाथ, निर्दान नानक हर सेवा, अवर सियानप सगलिया काथ। बिलावल महला पंजवा, अपने सेवको कबो ना बिसारो, उरला गोस्वामी प्र मेरे, पूर्व प्रीत गोबिंद विचारो रहाओ। पतत पावन प्रभ बिर तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जा रहो। जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेख दर्श स्वामी सुख सारो। बिलावल महला पंजवा, आगे पाछे कुशल भया, गुरपूरै पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभ की नी माया रहाओ। मन तन रव रहया हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, सांत सहजया आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब होए खया। गुण अवगन प्रभ कछ ना बिचार्यो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बड़ाई अचुत बनासी, नानक उचरै हर की जया। बिलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसे, करो नगरो पत उधारनो, राग स्वामी आप भरोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसे, औध बिहावत अधिक मोहावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसे। शरण दुख पंजन पुरख निरंजन, साधु संग त्रवण जैसे, केशव कलेस नास अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे। राग बिलावल महला।

ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਸੋਏ, ਕਰ ਬੰਦਨਾ ਲਖ ਬਾਰ, ਥਕ ਪਰਿਓ ਪ੍ਰਭ ਦਰਬਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਕਰੋ ਸਾਧੂ ਤੂਰ, ਨਾਨਕ ਮਨਸਾ ਪੂਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਪ੍ਰਭ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਦੁਆਰ, ਗਹਿ ਚਰਨ ਸਾਧੂ ਸੰਗ, ਮਨ ਮਿਸ਼ਟ ਹਰ ਹਰ ਰੰਗ, ਕਰ ਦਇਆ ਲਿਹੋ ਲੜ ਲਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ, ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਦੀਨਾ ਨਾਹ ਦਇਆਲ, ਜਾਚੋ ਸੰਤਰਵਾਲ ਰਹਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਖਿਆ ਕੂਪ, ਤਮ ਗਿਆਨ ਮੋਹਿਤ ਕੂਪ, ਗਹਿ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਲੇਹੋ, ਹਰ ਨਾਮ ਆਪਣਾ ਦੇਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਠਾਓ, ਨਾਨਕਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ, ਲੋਭ ਮੋਹੇ ਬਾਂਧੀ ਦੇਹ, ਬਿਨ ਭਜਨ ਹੋਵਤ ਖੇਹ, ਜਮ ਦੂਤ ਮਹਾਂਪਿਆਨ, ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾਨ, ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਸਾਖ ਸੁਣਾਏ, ਨਾਨਕਾ ਹਰ ਸਰਨਾਏ, ਪੈ ਭੰਜਨਾ ਮੁਰਾਰ, ਕਰ ਦਇਆ ਭਗਤ ਉਧਾਰ, ਮੇਰੇ ਦੋਹ ਗਣੇ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਹਰ ਬਿਨਾ ਕਤੈ ਸੁਮਾਹੇ, ਗਹਿ ਓਟ ਚਿਤਵੀ ਨਾਥ, ਨਾਨਕਾ ਦੇ ਰਖ ਹਾਥ, ਹਰ ਗੁਣ ਦੇ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ, ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਰਨ ਆਸ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਰਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਡ ਭਾਗ ਨਾਨਕ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਝ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚੰਦ ਚਕੋਰ, ਜੋ ਮੀਨ ਜਲ ਸੋ ਹੇਤ, ਅਲ ਕਮਲ ਭਿੰਨ ਨਾ ਪੇਤ, ਜਿਉ ਚੱਕਵੀ ਸੂਰਜ ਆਸ, ਨਾਨਕ ਚਰਨ ਪਿਆਸ, ਜਿਉ ਤਰਨ ਭਰਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਜਿਉ ਲੋਭੀਐ ਧਨ ਦਾਨ, ਜਿਉ ਦੂਧ ਜਲੈ ਸੰਜੋਗ, ਜਿਉ ਮਹਾਂ ਖੁਦਿਆਰਥ ਭੋਗ, ਜਿਉ ਮਾਤ ਪੂਤੈ ਹੇਤ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਨੇਤ, ਜਿਉ ਦੀਪ ਪਤਨ ਪਤੰਗ, ਜਿਉ ਚੋਰ ਹਿਰਤ ਨਿਸੰਗ, ਮਹਿੰਗ ਲੈ ਕਾ ਮੈਂ ਬੰਦ, ਜਿਉ ਗ੍ਰਸਤ ਬਿਖਈ ਤੰਦ, ਜਿਉ ਜੁਆਰ ਬਿਸਨ ਨਾ ਜਾਏ, ਹਰ ਨਾਨਕਿਉ ਮਨ ਲਾਏ, ਕੁਰੰਕ ਨਾ ਦੈਨੇ ਹੋ, ਚਾਤ੍ਰਿਕ ਚਾਹਤ ਮੈਂ ਹੋ, ਜਨ ਜੀਵਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨਾ ਰੰਗ, ਰਸਨਾ ਬਖਾਨੈ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਦਰਸਨ ਦਾਨ, ਗੁਣ ਗਾਏ ਸੁਨ ਲਿਖ ਦੇ, ਸੋ ਸਰਬ ਫਲ ਹਰ ਲੇ, ਕੁਲ ਸਮੂਹ ਕਰ ਤੋ ਉਧਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਉਤਰ ਸਪਾਰ, ਹਰ ਚਰਨ ਬੋਇਥਤਾ ਹੈ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਸ ਗਾਹੇ, ਹਰ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਮੁਰਾਰ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਦੁਆਰ। ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਥਿੱਤੀ ਕਰ ਦਸਵਾਂ ਜਤ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਏਕਮ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਅਮਰਾ ਜੋਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ, ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਘਟ ਘਟ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਦੇਖ ਦਿਖਾਵੈ ਤਿਸ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ, ਕਿਆ ਜਪ ਜਾਪੋ ਬਿਨ ਜਗਦੀ ਸੈ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਲ ਕਰਦੀ ਸੈ ਰਹਾਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਲੱਗੇ ਪਛਤਾਣੇ, ਜਮਦਰ ਬਾਂਧੇ ਆਵਣ ਜਾਣੇ, ਕਿਆ ਲੈ ਆਵੈ ਕਿਆ ਲੈ ਜਾਹੇ, ਸਿਰ ਜਮਕਾਲ ਸੇ ਚੋਟਾਂ ਖਾਹੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਛੂਟ ਸਕੋਏ, ਪਾਖੰਡ ਕੀਨੈ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਸੱਚ ਕੀਆ ਕਰ ਜੋੜ, ਅੰਡਜ ਫੋੜ ਜੋੜ ਵਿਛੋੜ, ਧਰਤ ਆਕਾਸ ਕੀਏ ਬੈਸਣ ਕਉ ਥਾਓ, ਰਾਤ ਦਿਨੰਤ ਕੀਏ ਪਉ ਪਹਾਓ, ਜਿਨ ਕੀਏ ਕਰ ਵੇਖਣ ਹਾਰਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਾ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵੋ ਪਾਏ ਵੇਸਾ, ਜੋਤੀ ਜਾਤੀ ਗਣਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਜਿਨ ਸਾਜੀ ਸੋ ਕੀਮਤ ਪਾਵੈ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਕਿਸ ਨੇੜੈ ਕਿਸ ਆਖਾਂ ਦੂਰ, ਚੌਥ ਉਪਾਏ ਚਾਰੇ ਬੇਦਾ, ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ ਬਾਣੀ ਭੇਦਾ, ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਖੜਤੀ ਨੇ ਉਪਾਏ, ਸੋ ਬੂਜੈ ਜਸਿਆ ਬੁਜਾਏ, ਤੀਨ ਸਮਾਵੈ ਚੌਥੈ ਵਾਸਾ, ਪ੍ਰਣਵਤ ਨਾਨਕ ਹਮ ਤਾਂ ਕੇ ਦਾਸਾ, ਪੰਚਮੀ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬੇਤਾਲਾ, ਆਪਾ ਗੋਚਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰਾਲਾ, ਇੱਕ ਭ੍ਰਮ ਭੂਖੇ ਮੋਹ ਪਿਆਸੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਚਾਖ ਸ਼ਬਦ ਤ੍ਰਿਪਤਾਸੇ,
एक रंगरा तेक मरतूर, एक दर कर साचै देख दूर। झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सुचा काला काओ। पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी पर मैं मुक्त न होए। तव छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगद रड़ाए। खस्ती खट दर्शन प्रभ साजे, अनहद शब्द निराला वाजे। जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, सबदे भेदे तौ पत पावै। कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साच समावै। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर। मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार। मन साचा मुख साचो पाए, सच भी साने ठाक ना पाए। अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै। पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ। तिसमें मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा। आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा। आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करण है जोग। दसमी नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान। सच मैल न लागै, भ्रम पौ भागै। बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यो तागा जग एवै जानो। अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो। एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै। फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै। निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल। जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका। फलो हार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए। कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए। द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता। जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस खाल ना खाए। अतीत भय मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई। द्वादशी दया दान कर जाणै, बाहर जातो भीतर आणै। बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम। तीन पवन मैं एको जाणै, सब सुत संजम साच पछाणै। तेर सतरवर समुंद किनारै, अमृत मूल शिखर लिवतारै। डर डर मरै ना बूढ़ै कोए, निडर बूढ़ मरै पत खोए। डर मैं घर घर मैं डर जाणै, तख्त निवास सच मन पाणै। चौदस चौथे थावै लै पावै, राजस तामस सतकाल समावै। ससियर कै कर सूर समावै, जो जूत की कीमत पावै। चौदस पवन पताल समाए, खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए। अमावस्या चंद गुप्त गैनार, बुझो ज्ञानी शब्द विचार। ससियर गगन जोत हो लोई, कर कर वेखै करता सोई। गुरते दिसै सो तिस ही माहे, मनमुख पूले आवै जाए। घर दर थाप थिरथान सुहावै, आप पछाणै जां सतगुर पावै। जह आसा तह बिनस बिनासा, फूटै खप्पर दुबदा मनसा। ममता जाल ते रह उदासा, प्रणवत नानक हमता के दासा। बिलावल महला तीजा, वार सत कर दसवा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद आदित वार, आद पुरख है सोई। आपे वरतै वरना कोई, ओत पोत जग रहा परोई। आपे करता करे सो होई, नाम रते सदा सुख होई। गुरमुख विरला बूझै कोई, हृदय जपनी जपो गुणतासा। हर अगम्या गोचर परंपर स्वामी, जन पग लग त्यावो, होए दासन दासा रहाओ।
सोमवार सच रहा समाए, तिसकी कीमत कही ना जाए। आख आख रहे सब लिव लाए, जिस देवै तिस पल्लै पाए। अगमा गोचर लखिया ना जाए, गुर कै शब्द रहा समाए। मंगल माया मोह उपाया, आपे सिर सिर तंदै लाया। आप बुझाए सोई बूझै, गुर कै शब्द दर कर सूझै। प्रेम भगत करे लिव लाए, हम मैं ममता शब्द जलाए। बुद्ध वारे आपे बुद्ध सार, गुरम करनी शब्द विचार। नाम रते मन निर्मल होए, हर गुण गावे हम मैं मल खोए। दर सच्चै सद सोभा पाए, नाम रते गुर शब्द सुहाए। लाहा नाम पाए गुरुद्वार, आपे देवै देवनहार। जो देवै तिसको बल जाइए, गुर प्रसादी आप गवाइए। नानक नाम रखो और तार, देवन हारे कौ जयकार। वीरवार वीर परम पुलाए, प्रेत पूत सब दूजे लाए। आप उपाए कर वेखै वेका, सबना करते तेरी टेका। जी जंत तेरी शरणाई, सो मिले जिस लह मिलाई। शुक्रवार प्रवरया समाई, आप यो पाए सब कीमत पाई। गुरमुख होवै सो करै विचार, सच संयम करनी है कार। वर्त नेम नेता प्रत पूजा, बिन बूझे सब पाओ है दूजा। शनिश्चरवार सौन शास्त्र विचार, हम मैं मेरा परमै संसार। मनमुख अंधा दूजे पाए, जमदरबा दा चोटा खाए। गुर प्रसादी सदा सुख पाए, सच करनी साच लिव लाए। सतगुर सेवै सेवड पागी, हम मैं महार सच लिव लागी। तेरा रंगराते सह सुभाए, तू सुखदाता लह मिलाए। एक स्ते दूजा नहीं कोए, गुरमुख बूझै सो जी होए। पंद्रह थित्ती तै सत वार, महारुति आवै वार वार। दिन सरैण तवै संसार, आवा गौण किया करतार। निहचल साच रहया कल तार, नानक गुरमुख बूझै को शब्द विचार। बिलावल महला तीजा, आदि पुरख आपे सिरठ साजे। जी जंत माया मोहे पाजे, दूजे पाए परपंच लागे। आवै जाए मराया भागे, सतगुर भेटे सो जी पाए। परपंच चूकै सच समाए, जा कै मस्तक लिखिया लेख। ता कै मन वसिया प्रभ एक रहाओ। सृष्टि उपाए आपे सब वेखै, कोई न मिटै तेरै लिखै। सिद्ध साधक जे को कह कहाए, परमे पूला आवै जाए। सतगुर सेवै सो जन बूझै, हम मैं मारे तांदर सूझै। एक स्ते सब दूजा हुआ, एको वरतै अवर न भीआ। दूजे ते जे एको जाणै, गुर कै शब्द हर दर निसाणै। सतगुर भेटे तां एको पाए, विचों दूजा ठाक रहाए। जिसदा साहिब डाढ़ा होए, तिसनों मार ना साकै कोए। साहिब की सेवक रह सरनाई, आपे बख्शे देवड़े आई। तिसते उपर नाही कोए, कौन डरे डर किसका होए। गुरमती सांत वसै शरीर, सब चीन फिर लगे ना पीर। आवै ना जाए ना दुख पाए, ना मेरा ते सहि समाए। नानक गुरमुख वेखै हदूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। एक सेवक एक परम पुलाए, आपे करे हर आप कराए। एको वरतै अवर ना कोए, मन रोस कीजै जे दूजा होए। सतगुर सेवे करनी सारी, दर साचै साचे विचारी। थिति वार सब शब्द सुहाए, सतगुर सेवे तां फल पाए। थिति वार सब आवै जाहे, गुर शब्द निह चलो सदा सच समाहे। थिति वार तां जां सच राते, बिन्ना मैं सब पर मैं काचे।
ਮਨਮੁਖ ਮਰੈ ਮਰ ਬਿਗਤੀ ਜਾਹੇ, ਏਕ ਨਾ ਚੇਤੈ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਹੇ। ਅਚੇਤ ਪਿੰਡੀ

कहे कबीर में ना मेरा मन मानिया राम प्रीत की ओ लै देव। बिलावल बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सफल जन्म मोको गुर कीना दुख बिसार सुख अंतर लीना। ज्ञान अंजन मोको गुर दीना राम नाम बिन जीवन मन हीना रहाओ। नाम दे सिवरन कर जाना जग जीवन स्यों जियो समाना। बिलावल बाणी रविदास भगत की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दार्द देख सब को हसै ऐसी दशा हमारी। अष्ट दशा सिद्ध कर तलै सब कृपा तुम्हारी। तू जानत मैं किछ नहीं

जो तुद उपकरै दुख सुखासा तिसका परवासा, क्योंकि जय मन मेरे जो अंती अवसर रखना सुकासा। हर जप मंत गुरु उपदेश लै जापो तने अंत छड़ाए जिन हर प्रीत चितासा। जन नानक अंदर नाम जपो हर संतो एहो छूटन का साचा परवासा। गुंड महला चौथा हर सिमरत सदा होए आनंद सुख अंतर सांत शीतल मन अपना। जैसे सगत सूर बहु जलता गुर सस देखे लह जाए सब तपना। मेरे माने अंदन त्याए नाम हर जपना जहां कहां तुझ राखै सब ठाई। सो ऐसा प्रभ सेव सदा तू अपना रहाओ। जा मैं सब निदान सो हर जप मन मेरे गुरमुख खोज लो हर तना। जिन हर त्याया तिन हर पाया मेरा स्वामी। तिन के चरण मलो हर दसना शब्द पछाण राम रस पावो। ओ उत्तम संत भयो बड़ बड़ना ते जन की वडियाई हर आ वधाई। ओ कटै ना किसै की कटाई एक तिल तिल तिल ना। जिस ते सुख पावै मन मेरे सो सदा त्याय नित कर जुरना। जन नानक हर दानिक दीजै नित बसै हृदय हरि मोहि चरना। गुण महला चौथा जितने साहा पात साहा उमराव सिकदार चौधरी सब मिथिया झूठ पाव दूजा जान। हर अबनासी सदा थर नेह चलो तिस मेरे मन भज परवान। मेरे मन नाम हरि पज सदा दीबान। जो हर महल पावे गुरबचनी तिस जेवड़े अवर नाही किसै दातान। रहाओ जितने तनवंत कुलवंत मिलखवंत दिसै मन मेरे सब बिनस जाहे जो रंग कसुंभ कचान। हर सत निरंजन सदा सेव मन मेरे जित हर दरगह पावे तू मान। ब्राह्मण खत्री सूद वैस चार वर्ण चार आश्रम है। जो हर त्यावै सो प्रधान ज्यो चंदन निकट वसै हिरड बपड़ा। त्यों सत संगत मिल पतत परवान। ओह सब ते उचा सब ते सूचा जा कै हृदय वसया भगवान। जन नानक तिसके चरण पखालै जो हर जन नीच जात सेवकान। गोंड महला चौथा हर अंतर जामी सब तै वरतै जिहा हर कराए तिहा को करैयै। सो ऐसा हर सेव सदा मन मेरे जो तुदनो सब दूर रख लईयै। मेरे मन हर जप हर नित पढ़ैयै हर बिन को मार जी वाल ना साकै ता मेरे मन कायत कड़ैयै। रहाओ हर परपंच किया सब करता विच आपे अपनी जोत रही है। हर एक को बोले हर एक बुलाए गुरपूरे हर एक दिखाइए। हर अंतर नाले बाहर नाले कहो तिस पासो मन क्या चोरी है। नेह कपट सेवा की जय हर केरी ता मेरे मन सर्व सुख पई है। जिस दे वस सब किश सो सब दू वड्डा सो मेरे मन सदा ध्याई है। जन नानक सो हर नाल है तेरा हर सदा ध्याए तू तुदले छड़ई है। गोंड महला चौथा हर दर्शन कहो मेरा मन बहुत तृप्त है। जो त्रिखावंत बनीर मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। हमरी बेदन हर प्रभ जाने मेरे मन अंतर की पीर। रहाओ मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे सो भाई सो मेरा वीर। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के ले सतगुर की मत धीर। जन नानक की हर आस पुजावो हर दर्शन सांत शरीर शक्का एक। राग गौंड महला पंजवा
चौपदे कर पहला एक ओंकार, सदगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ। सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा। गोंड महला पंजवां, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भायले, पगतारे सास ले खैल तो उदर हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन कौ ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ। ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर विशरै, फिर संगत हर हर त्यायले, जैसे मीन रसन सा

ओट नाम जपत मिटै पाप कोट रास दी हरे को नाम मन का इष्ट गुर संग ध्यान रहाओ।

तब पेटे गुरसा दयाल दिन रहन नानक नाम ते आए सुख सहजानंद हरनाए। गोंड महला पंजवां गुर की मूर्त मन में ध्यान गुर कै शब्द मंत्र मन मान गुर के चरण हृदय लै तारों गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारों मत को परम पुलै संसार गुरबिन कोई नवतर सपार रहाओ पूले कौ गुर मार्ग पाया अवर त्याग हर भगती लाया जन्म मरण की त्रास मिटाई गुरपूरे की बेअंत वडाई गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास अंधकार मैं भया प्रगास जिन किया सो गुर ते जानिया गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया गुर करता गुर करण है जोग गुर परमेसर है पी होग कहो नानक प्रभ यह जनाई बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई। गोंड महला पंजवां गुरु गुरु गुर कर मन मोर गुरु बिना मैं नाही होर गुर की टेक रहो दिन रात जा की कोई न मिटै दात गुर परमेसर एको जान जो तिस पावै सो प्रवान रहाओ। गुर चरणी जा का मन लागै दुख दर्द प्रमता का भागै गुर की सेवा पाए मान गुर उपर सदा कुर्बान गुर का दर्शन देख निहाल गुर के सेवक की पूर्ण काल गुर के सेवक को दुख ना व्यापै गुर का सेवक दे जापै गुर की महिमा कथन ना जाए पार ब्रह्म गुर आसमाए कहो नानक जाके पूरे भाग गुर चरणी ता का मन लाग। गोंड महला पंजवां गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत गुर मेरा देओ अलाखा पेओ सर पू चरण गुर से गुर बिन अवर नाही मैं थाओ अंधन जपो गुरु गुर नाओ रहाओ। गुर मेरा ज्ञान गुर दै ध्यान गुर गोपाल पुरख भगवान गुर की शरण रहो कर जोर गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोइथ तारे पव पार गुर सेवा जमते छुटकार अंधकार मैं गुर मंत्र उजारा गुर कै संग सगल निस्तारा गुर पूरा पाई वड भागी गुर की सेवा दुख ना लागी गुर का शब्द ना मेटै कोए गुर नानक नानक हर सोए। गोंड महला पंजवा राम राम शंकर व्यवहार राम राम राम प्राण आधार राम राम राम कीर्तन गाए रमत राम सब रे उसमाए संत जना मिन बोलो राम सब ते निर्मल पूर्ण काम रहाओ। राम राम तन संच पंडार राम राम राम कर आहार राम राम विसर नहीं जाए कर कृपा गुर दिया बताए राम राम राम सदा सहाय राम राम राम लिवलाए राम राम जप निर्मल पै जन्म जन्म के किल बिख गए रमत राम जन्म मर निवार उचरत राम पै पार उतार सब ते ऊच राम प्रगास निस्बासर जप नानक दास। गोंड महला पंजवां उनको खसम कीनी ठाक हारे दास संगते मार बिदारे गोविंद भगत का महल ना पाया राम जना मिल मंगल गाया सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार राम भगत के पानी हार रहाओ। जगत पास्ते लेते दान गोविंद भगत को करे सलाम लूट लेहे साकत पत खोवे सा जना पग मल मल धोवे पंच पूत जने कमाए उत्पुज खेल कर जगत वे आए तीन गुणा कै संग रच रसे इनको छोड़ ऊपर जन बसे कर कृपा जन लिए छडाए जिसके से तिन रखे हटाए कहो नानक भगत प्रभ सार बिन भक्ति सब होए खुआर। गोंड महला पंजवां कल कलेस मिटे हर नाए दुख बिन से सुख कीनो ठाओ
जप जप अमृत नाम अगाए संत प्रसाद सगल फल पाए। राम जपत जन पार परे जन्म जन्म के पाप हरे रहाओ। गुर के चरण हृदय उतारे अग्न सागर ते उतरे पारे। जन्म मरण सब मिटियो पाद प्रभ सो लागी सह समाद। थान थनंतरे को स्वामी सगल कटा का अंतर जामी। कर कृपा जा कौ मत दे आठ पहर प्रभ का नाउ ले। जाकै अंतर वसै प्रभ आप ताकै हृदय होए प्रगास। भगत पाए हर कीर्तन करिए जप पार ब्रह्म नानक निस्तरिए। गोंड महला पंजवां गुर के चरण कमल नमस्कार। काम क्रोध स्तंते मार होए रहिए सगल कीरीना। काट काट रमैया सह मैं चीना। इन बिद्रमह गोपाल गोबिंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ आठ पैर हर के गुण गाओ जी प्राण को है सुहाओ। ताजा मान जान प्रभ संग साध प्रसाद हर से मन रंग। जिन तू किया तिसको जान आगे दरगे पावे मान। मन तन निर्मल होए निहाल रसना नाम जपत गोपाल। कर कृपा मेरे दीन दयाला साधु की मन मंगैर वाला। हो दयाल देहो प्रभदान नानक जप जीवे प्रभ नाम। गोंड महला पंजवा धूप दीप सेवा गोपाल। अनक बार बंदन करतार प्रभ की शरण गही सब त्याग। गुरसो प्रसन्न पय वड भाग। आठ पहर गाइए गोविंद तन तन प्रभ का प्रभ की जिंद। रहाओ हर गुण रमत पय आनंद पार ब्रह्म पूर्ण बगसंद। कर कृपा जन सेवा लाए जन्म मरण दुख मेट मिलाए। कर्म धर्म हो तत् ज्ञान साध संग जपिए हर नाम। सागर तर बोथ प्रभ चरण अंतर जामी प्रभ कारण करण। राख लिए अपनी कृपा तार पंच दूत भागे बिकराल। जुवे जन्म न कबू हार नानका अंग किया करतार। गोंड महला पंजवा कर कृपा सुख अंत करे। बालक राख लिए गुरदेव प्रभ कृपाल दयाल गोबिंद। जी जंत सगले बख्शिंद तेरी शरण प्रभ दीन दयाल। पार ब्रह्म जप सदा निहाल। रहाओ प्रभ दयाल दूसर कोई नाही। घट घट अंतर सर्व समाही। अपने दास का हलत पलत सवार है पतत पावन प्रभ बिर तुमार है। औखद कोट सिमर गोविंद तंत मंत पजिए भगवंत। रोग सोग मिटे प्रभ त्याए मन बांशत पूर्ण फल पाए। करण कारण समरथ दयार सर्व निदान महाबीचार। नानक बख्श दिए प्रभ आप सदा सदा एको हर जाप। गोंड महला पंजवा हर हर नाम जपो मेरे मीत। निर्मल होए तुम्हारा चीत। मन तन की सब मिटे बिलाए दुख अंधेरा सगला जाए। हर गुण गावत तरिए संसार वड भागी पाइए पुरख अपार। रहाओ जो जन करे कीर्तन गोपाल तिसको पोहे ना सके जमकाल। जग में आया सो प्रमाण गुरमुख अपना खसम पछाण। हर गुण गावे संत प्रसाद काम क्रोध मिटे उन्माद। सदा हजूर जान भगवंत पूरे गुर का पूर्ण मंत। हर तन खाट किए पंडार मिल सतगुर।

सिमरत शास्त्र वेद पुराण पार ब्रह्म का करै वख्याण। जोगी जति बैसनो रामदास मित नाही।

देख इस मरते कौ जे कौ रोवे जो रोवे सोई पत खोवे। गुरप्रसाद मैं डगरो पाया जीवन मरण दो मिटवाया। कहो कबीर एहो राम की अंश जस कागत पर मिटे ना मंस गोंड। टूटे तागे निखुटी पान द्वार ऊपर चिलकावे कान। कूच बिचारे फूए फाल या मुड़िया सर चढ़ बो काल। एहो मुड़िया सगलो दर्ब खोई आवत जात नागसर होई रहाओ। तुरी नार की छोड़ी बाता राम नाम वाका मन राता। लड़की लड़कन खैबो नाहे मुंडिया अंदन तापे जाहे। एक दोए मंदर एक दोए बाट हमको साक्षर उनको खाट। मूंड पलोस कमर बद पोथी हमको चाबन उनको रोटी। मुंडिया मुंडिया हुए एक ए मुंडिया बुढ़द की टेक। सुन अंदली लोई बेपीर इन मुंडिया न पज सरन कबीर गोंड। खसम मरे तौ नार ना रोवे उस रखवारा औरो होवे। रखवारे का होए विनाश आगे नरक इहां भोग बिलास। एक सुहागन जगत प्यारी सगले जी जंत की नारी रहाओ। सोहागन गल सो है हार संत कौ बेख बिकसे संसार। कर सिंगार बह पखियारी संत की ठिठकी फिरे बिचारी। संत भाग हो पाछे परे गुर प्रसादी मारो डरे। सागत की हो पिंड परायण हम कौ दृष्ट परे त्रख डायण। हम तिसका बहु जान्या पेओ जब हुए कृपाल मिले गुरुदेओ। कहो कबीर अब बाहर परी संसार कै अंचल लरी। गोंड गृह सोभा जा कह रे नाहे आवत पैया खुदे जाहे। वाकै अंतर नहीं संतोख बिन सोहागन लागे दोख। तन सोहागन महापवीत तपित पीसर डोले चीत रहाओ। सोहागन कृपन की पूती सेवक ताज जगत स्यो सूती। साधु कै ठांडी दरबार शरण तेरी मोको निस्तार। सोहागन है अत सुंदरी पग नेवर शनक शन हरी। जव लग प्राण तव लग संगे नाहे ता चली बेग उठ नंगे। सोहागन पवन त्रै लिया दस अठ पुराण तीर्थ रस किया। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बेदे बड़े भूपत राजे है शेदे। सोहागन उर्वार ना पार पांच नारद कै संग बेदवार। पांच नारद के मिटवे फूटे कहो कबीर गुर कृपा छूटे गोंड। जैसे मंदिर में बलहर ना ठहरै ना बिना कैसे पार उतरै। कुंभ बिना जल ना टीकावै साधु बिन ऐसे अवगत जावै। रहा जारो तिसे जो राम ना चेतै तन मन रमत रह मैं खेतै रहाओ। जैसे हलहर बिना जिमी नहीं बोईऐ सूत बिना कैसे मणि परोईऐ। कुंडी बिन क्या गंठ चढ़ाई है साधु बिन तैसे अवगत जाई है। जैसे मात पिता बिन बाल ना होई बिंब बिना कैसे कपड़े धोई। कोर बिना कैसे असवार साधु बिन नाहीं दरबार। जैसे बाजे

राग गोंड बाणी नाम देओ जी की कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। असमेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संवादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंद।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जोए गवाई थी। हिंदू अन्ना तुरकू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागौंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता।

जप मुकंद मस्तक निशान, सेव मुकंद करै बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी, एक मुकंद करै उपकार हमरा कहाँ करै संसार।

सठ तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सब वृथा जावै साध का निंदक कैसे।

सगली सिमरतो श्रवनी सुना, कर नेंदो कमना नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावे, भूम दान शोभा मंडप पावे। अपना बिगार बिराना संड, कर निंद बोजो नी हंड। निंदा कहाँ करो संसारा, निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया, कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली महल।

कोई पढ़ता सहसा करता, कोई कड़े पढ़े पुराना, कोई नाम जपे जप माली, लागे तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसै कवन दर कहिए। दरा पीतर दर कवन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी। बाजे लोक सुने पत झोली मंगण कै ताई। पीखिया नाम पड़े बाबा गोरख जागे। गोरख सोजन गोए उठाली, करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे, चंद सूरज मुख दिए। मरण जीवन कौ धरती दीनी, एते गुण विसरे। सिद्ध साध क्यार योगी जंगम, पीर पुरस बहु तेरे। जेतन मिला ता कीर्त आखा, ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे, पानी कमल रह। ऐसे भगत मिले जन नानक, तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला, सुन मा शिंदरा नानक बोले। वसगत पंच करे नहीं डोले, ऐसी जुगत जो कौ पाले। आप तरह सगले कुल तारे, सो अवधूत ऐसी मत पावे। अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले, होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे, सच नाम ताड़ी चित लावे। नानक बोले अमृत बाणी, सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए, निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए, गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए, छे दर्शन की सोजी पाए। राम कली महला पहला, हम डोलत बेड़ी पाप भरी है। पवन लगे मत जाई, सनमुख सिद्ध पेटन को आए। निहचो देवड़े आई, गुर तार तारन हारिया। देह भगत पूर्ण अविनाशी, हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक जोगी अर जंगम, एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी, अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना, नाम जपी प्रभ तेरा।
ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਭੇਟਿਓ ਸਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਵੇਰਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਸੁਰਤੀ ਸੁਰਤਰ ਲਾਈਐ ਏਤ, ਤਨ ਕਰ ਤੁਲਹਾ ਲੰਘੈ ਜੇਤ, ਅੰਤਰ ਪਾਹਿਤ ਸਹਿ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਐਨਸ ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅਥਕ, ਐਸਾ ਦੀਵਾ ਨੀਰ ਤਰਾਏ, ਜਿਤ ਦੀਵੈ ਸਭ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹੱਛੀ

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड भाग गुरसरनी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझे बूझे मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिर से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत न पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जे वड भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राखै कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापे कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवे मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदेव पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवे निध पावो इन बे तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जानो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले आए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापे मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापे तय हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचे जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहा निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨੈ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕਉ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਭੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨਾ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान तैताना पाओ न बिंगा कल फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक।

कोई कहे तुर्क कोई कहे हिंदू, कोई बंश है पिस्त कोई सुरग हिंदू। कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा पवन मैं।

जा कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत

रहाओ जब उसको कोई देवे मान, तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरै, तब यो सेवक सेवा करै। मुख बेरावे अंत ठगावै, एक ठौर ओ कई ना समावै। उन मोहे बहुते ब्रह्मंड, राम जनी कीनी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रहै, इस संग राचे सो कछु ना लहै। इसे त्याग सत्संगत करै, वडभागी नानक हो तरै। राम कली महला पंजवा, आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर्ण रहा प्रभ एक, रत्न मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान, पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाईए, बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा, कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचै, जिसने बुझावे सो कित बिद बुझै। जानन हार रहा प्रभ जान, ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे, नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा, दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास हे बित, काटी बंध हर सेवा लाए। हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा, रसक रसक गुण गावे। हर जनो अपने गुरुदेव निवाजा। रहाओ

मिट जाए कर कृपा पार ब्रह्म दयाल मानते कबो न मिसर गोपाल तेरे दास की हो मातूर नानक की प्रभ सरदा पूर रामकली महला पंजवा तेरी शरण पूरे गुरुदेव तुझ में दूजा नाही कोय तू समर्थ पूर्ण पार ब्रह्म सो त्याए पूरा जिस कर्म तरण तारण प्रभ तेरो नाओ एका शरण गही मन मेरा तुझ बिन दूजा नाही ठाओ रहाओ जप जप जीवा तेरा नाओ आगे दरगे पावो ठाओ दुख अंधेरा मन ते जाए दुर्मत बिनसै रचै हर नाए चरण कमल स्यो लागी प्रीत गुरपुरे की निर्मल रीत पहो भागा निरपव मन बसै अमृत नाम रसना नित जपै कोट जन्म के काटे फाहे पाया लाभ सच्चा तन लाहे तोट न आवै अखुट भंडार नानक भगत सोहै हर द्वार राम कली महला पंजवा रतन जिवेहर नाम सत संतोख ज्ञान सुख सहज दया का पोता हर भगता हवाले होता मेरे राम को भंडार खात खर्च कष्ट उठ न आवै अंत नहीं हर पारावार रहाओ कीर्तन निर्मोल हीरा आनंद गुणी गहीरा अनहद बाणी पूंजी संतन हथ राखी कुंजी सुन समाध गुफा तय आसन केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत कर कृपा जिस आप देवाया।

देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केलो आप बिछोरा आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप, रामकली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनामे तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधे प्रभ गुणपास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान, रामकली महला पंजवा, रखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधे जंत, मिलिए प्रभ गुर मिलमंत, जियन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, कट कट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार, सुमत सार।

आए बूढ़त लोहो साध संग तरै नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवां मन माहे जा भगवंत गुरपुरै हो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। करन कराम ने आप तिस कौ सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सह सुख पावे मीत। साहेब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान सर्व।

नमो भगवंत गोसाई खालक रव रया सर्वठाई रहाओ जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

चक्र पेलो हर चरण कमलो सरनाए मना राम नाम जप संग सहाई गुरमुख पावे साई तना रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे काम क्रोध मसद ही चूरे करै बेकार जिया रे कह ताई गाफल संग न तसुआ जाई धरत तोह अनक शर जानै कौडी कौडी कौ खाक सिर शानै जिन दिया तसेरा चेतै मूल मिथ्या लोभना उतरै सूल पार ब्रह्म जपहे दयाल इह मन होवा सादरवाल हस्त कमल लड़ लीनो लाए नानक साचै साज समाए राम कली महला पंजवा राजा राम की सरनाए निरपो पय गोविंद गुण गावत सा संग दुख जाए रहाओ जा कै राम बसे मन माही सो जन दुत्तर पेखत नाही सगले काज सवारे अपने हर हर नाम रसन नित जपने जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै सो दासा देसा काहे करै जन्म मरण की चूकी कान पूरे गुरु उपर कुर्बान गुर परमेसर भेट निहाल सो दर्शन पाए जिस होए दयाल पार ब्रह्म जिस कृपा करै साध संग सो पवजल तरै अमृत पीवाओ साध प्यारे मुखी उजर साचै दरबारे अंध करो तज सगल बेकार नानक हर जप उतरो पार राम कली महला पंजवा ईंदन ते बै संतर भागै माटी कौ जल दै दिस त्यागै ऊपर चरण तलै आकाश कटमै सिंध की ओ प्रगास ऐसा समर्थ हर जियो आप निमखना बिसरै जी भगतन कै आठ पहर।

खंडी हुक्म बुझै सो जोगी कहिया एक स्यों चित लाए सहसा टूटै निर्मल होवै जोग जुगत इव पाए नदरी आमदा सब किश बिनसै हर से ती चित लाए सतगुर नाल तेरी भावनी लागै तां एह सो जी पाए एहो जोग ना होवै जोगी जे कुटुंब छोड़ पर पवन करै ग्रह शरीर में हर हर नाम गुर प्रसादी अपना हर प्रबल है एहो जगत मिट्टी का पुतला जोगी इसमें रोग वड्डा तृष्णा माया अनेक जतन पेख करै जोगी रोग ना जाए गवाया हर का नाम औखद है जोगी जिसनो मन वसाए गुरमुख होवै सोई बूझै जो जुगत सो पाए जोगै का मार्ग बिखम है जोगी जिसनो नजर करे सो पाए अंतर बाहर एको वेखै विचो परम चुकाए विण वजाई किंगरी वाजै जोगी सा किंगरी वजाए कह नानक मुक्त होवै जोगी साचे रह समाए राम कली महला तीजा भगत खजाना गुरमुख जाता सतगुर बूझ बुझाई संतो गुरमुख दे वड़ियाई रहाओ सच रहो सदा सहज सुख उपजै काम क्रोध विचों जाई आप छोड़ नाम लिव लागी ममता शब्द जलाई जिस ते उपजै तिस ते बिनसै अंते नाम सिखाई सदा हजूर दूर न देखो रचना ज निरजाई सच्चा शब्द रवै कट अंतर सच्चे सों लिव लाई सत्संगत में नाम निर्मोलक वड्डे पाग पाया जाई परम ना चुकाओ सतगुर सेवाओ मन रखो इकठाई बिन नाम ऐसा पूली फिरदी बिरथा जन्म गवाई जोगी जुत गवाई हंडै पाखंड जोग ना पाई शिव नगरी में आसन बैसै गुरसबदी जोग पाई तातर बाजी शब्द निवारे नाम वसै मन आई एहो शरीर सरवर है संतो इशनान करे लिव लाई नाम इशनान करै से जन निर्मल शब्दे मैल गवाई त्रै गुण अचेत नाम चेतै नाही बिन नामै बिन सजाई ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै मूर्त त्रै गुण परम पुलाई गुर प्रसादी त्रिगुटी छूटै चौथे पद लिवलाई पंडित पढ़ै पढ़वाद वखाणै तिन्ना बूझ ना पाई बिख्या माते परम पुलाए उपदेश कहै किस पाई भगत जना की उत्तम बाणी जुग जुग रही समाई

मनसा मार मन सह समाणा बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम ज्योति ज्योत में लाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा हर की पूजा दुर्लंभ है संतो कहना कछु न जाई। संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई रहाओ, हर बिन सब किश मैला संतो क्या हो पूज चढ़ाई। हर साचे पावे सा पूजा होवे पाणा मन वसाई, पूजा करे सब लोग संतो मन मुक्ताए ना पाई। शब्द मरे मन निर्मल संतो एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे एक शब्द लिव लाई, बिन नामे होर पूजना होवी परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो राम नाम लिव लाई, आपे निर्मल पूज कराए गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने पाणा मन वसाई। पाणे ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो कूड़ करे वड्याई। पाखंड कीने जम नहीं छोड़े लै जासी पत गवाई, जिन अंतर शब्द आप पछाणे गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे ज्योति ज्योत में लाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे सतसंगत में लाई। गुरमुख गावे आप गवावे दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे सच नाम लिव लाई। पै भंजन अत पाप निखंजन मेरा प्रभ अंत सिखाई, सब किश आपे आप वरतै नानक नाम वड्याई। राम कली महला तीजा हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कटे अंतर करतै आप सवारी रहाओ, पारस परसे फिर पारस होए हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी तिन जुए बाजी हारी, एक आंदन भगत करे दिन राती राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते सहजे हों मैं मारी, पै बिन भगत ना होई कभी पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया ज्ञान तत् बिचारी, आपे आप कराए करता आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी हर जियो सा लाही विचों आप निवारी, नाम पदार्थ गुरते पाया खुट सचे भंडारी। अपनिया भगतां नू आपे तुठा अपनी किरपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका आखण बिख विचारी, शब्द लगे से जन निस्तरे पौजल पारे उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे बूझे को विचारी, जो तुर लिखिया सोई पाया मिल हर शब्द।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए सिर सिर धंधा लाई, तिसै सरे वो ता सुख पावो सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए अलख न लखना जाई, आपे मार्जी वाले आपे तिसनो तिल ना तुमाई,

राम कली महला पंजवां जी जंत सब पेखिया प्रभ सगल तुम्हारी धारणा एहो मन हर

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवै सुखे सुख गुदारना। भगत सरण जो आवै प्राणी तिस इहां उहां ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्य वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको अंकार सदगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत धूर मुखलाई। पतत पुनीत की अखन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। करण कारण समर्थ स्वामी नानक ते शरणाई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ कतो ना ताई। नाम रसायण एहो मन राता अमृत पी तृपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वसिया जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिनयान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सुच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसच लाए तराई। अपने जीता आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसुमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपो काले अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपो सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता को दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बने आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास को दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लालिक पाया हर कीमत कहन न जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचै दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आदि जुगादि हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जोबन सुत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मन बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उदरे संत परे हर सरणी पच बिन

लभ लोभ अहंकार ता तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वालो निकी एत मार्ग जाना। गुरप्रसादी जिनी आप तजया हर वासना समाणी, कहे नानक चाल भगता जुगो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हे तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पावहे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्यावहे। जिसरों कथा सुनाहे अपनी, से गुरुद्वारे सुख पावहे। कहे नानक सच्चे साहेब, जो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सदा सोहेला सतगुरु सुनाया। एहो तिनकै मन वसिया, जिन तुरों लिखिया आया। एक फिरै कनेरे करै गल्ला, गली किनै ना पाया। कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए सेज ना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित संगत सवाइया। कहिंदे पवित सुनदे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विण सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम, रहे कर्म कुमाए। सहसै जियो मलीन है, कित संजम तोता जाए। मन तोहो शब्द लागो, हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी, सहज उपजै, एहो सहसा इव जाए।

पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखाओ विण सतगुर मुक्त ना पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिरबाणी। जिन कहो नदर कर्म होवै हृदय तना समाणी, पीवहो अमृतो सदा रहो हर रंग जपियो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित करे रसना कहया कछु ना जानी। चित जिनका हिर लया माया बोलन पे रवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ, शिव सकत आपो पाए कह करता। आपे हुकुम वरताए हुकुम वरताए, आप वेखै गुरमुख सै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होवै एक सो लिव लाए। कहे नानक आप करता आपे हुकुम बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजौ ततै सार ना जानी। तिही गुणी संसार परम सुता, सुत्या रहन विहानी। गुर कृपा ते सेजन जागे जिन्ना हर मन वसिया, बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनो अंदन हर लिव लागै, जागत रहन विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वरदाता। जे अग्न में आहार पहुंचावे ओसनो केहो पोहे ना सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभाली है, कह नानके वरदाता सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अग्न सब एको जेही करता खेलर चाया। जात पाणा ता जमया परिवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। ए माया जित हर विसरे मोह उपजै, पाओ दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिन्नी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटौ रहे लोक मिललाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपीऐ विचों आप जाए। जिसदा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भागत ना के नानका जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो लाहा खट्यो दिहाड़ी, एहो तन तिन्ना मिलिया जिन हर आपे पाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन होवा वन जारा, ए रसना तू अन रस राच रही। तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए होरत कितै, जिचर हर रस पल्ले ना पाए। हर रस पाए पल्ले पीए हर रस, बहुड़ ना तृष्णा लागे आए। एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिस आए। कहे नानक होर अन रस विसरे जा हर वसै मन आए। ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग में आया। मन चाओ भया प्रभागम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापे, गुरचरण लागे दिन सुपागे अपना पिर जापे।
ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਆਏ ਕਹਿ ਕਿਆ ਤੁਧ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖ ਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸ਼ਰਵਣੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮੰਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵਾ ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਹਰ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਹ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਮ ਨਿਧੋ ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੈ ਜਿਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ ਵਾਜਾ ਪਵਨ ਵਜਾਇਆ ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੋ ਗਾਵਹੋ ਤਾਂ ਸੋਹਿਲਾ ਕਰ ਸਾਚੈ ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ ਸੱਚੋ ਤੇ ਆਵਹੈ ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵਹੇ ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ।

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे ससन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रे रंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जन नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्यास जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पए मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुमते नाहीं दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिनसे माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइत फल पाया हर नानक नाम पने।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहजो पाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सास माले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन तरनी तर आप जोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंत्र साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कह सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इं कर महल सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो न जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम जो त्यो जाला तीन पवन मैं गुर गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एके का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मान मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राधनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिव लाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राचै हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुले एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाने, बंधन काट मुक्त कर आने। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पई सिवाल। जापै आप प्रभु त्यो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहां तुद पावां, जा तू मेलै तां तुजै समावां। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिया बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहार जाओ, जो उसारे सो ढासी तिस बिन अवरना कोए, गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए, हणा को मेरा

जो आवै से जाहे फनो आए गए पछताहे लख चौरासी मेदनी कटै न वदै उताहे से जन उबरे जिन हर पाया तंदा मुआवे गुती माया जो दिसै सो चाल सी किस कौ मीत करे ओ जियो समपो अपना तन मन आगै दे ओ असर करता तू धनी तिस ही की मैं ओट गुण की मारी हाउ मुई शब्द रती मन चोट राणा राव ना को रह रंग ना तुंग फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदै तीर राहो बुरा पी हावला सर डूगर असगा हो मैं तन अवगण चुर मुई विण गुण क्यों कर जाहे गुणिया गुणले प्रभ मिले क्यों तन मिलो प्यार तिन्ही जैसी थी रहा जप जप हृदय मुरार अवगुणी भरपूर है गुण पी वसै नाल विण सतगुर गुण ना जपनी जिचर शब्द ना करे बीचार लस्करिया कर समले आए वजो लिखाए कार कमावै सिर तनी लाहा पल्ले पाए लब लो बुरियाइया छोडे मनो विसार गढ़ दोही पातशाह की कदे ना आवै हार चाकर कहिए खसम का सहोए उत्तर दे वजो गवाए अपना तख्त ना बैसै से प्रीतम हथ वड्याइया जय पावै तै दे आप करे किसे आखिए अवरना कोई करे बीजो सूजै को नहीं बह तुली चा पाए नरक निवारण नर नर साचो साचै नाए वन त्रिण ढूंढत फिर रही मन में करो बिचार लाल रतन बहुमान की सतगुर हाथ भंडार ऊतम होवा प्रभ मिले एक मन एक पाए नानक प्रीतम रस मिले लाहा लै परथाए रचना राच जिन रची जिन सिरियाया कार गुरमुख बेअंत त्याई है अंत ना पारावार राड़े रूड़ा हर जियो सोई तिस्मिन राजा अवरना कोई राड़े गारड़ तुम सुनाओ हर वस है मन माहे गुर प्रसादी हर पाई है मत को परम पुलाहे सो साहो साचा जिस हर तन रास गुरमुख पूरा तिस साबास रूड़ी बाणी हर पाया गुरसब दी बीचार आप गया दुख कटिया हर वर पाया नार सोयना रूपा संची है तन का चा बिक्षार साहो सदाए संच तन दुबदा होए खुआर सचियारी सच संचया साचो नाम अमोल हर निर्माइल उजलो पत साची सच बोल साजन मीत सुजान तू तू सरवर तू हंस साचो ठाकर मन वसै हम बलिहारी तिस माया ममता मोहनी जिनकी ती सो जान बिखिया अमृत एक है बूझे पुरख सुजान खेमा में होने खप गए खून लख्या संख गणत ना आवै क्यों गणी खप खप मोए बिसंख खसम पछाण अपना खूले बंद ना पाए शब्द महली खरा तू खेमा सच सुख पाए खर्च खरा तन ध्यान तू आपे वसै शरीर मन तन मुख जापै सदा गुण अंतर मन तीर हम मैं खपै खपाए सी बीजो वथ विकार जंतो पाए विच पायन करता अलग अपार सृष्टे प्यो न जाने कोए सृष्टा करै सो निश्चय होए संपै कोई सिर त्याई है संपै पुरब लिखे की पाई है संपै कारण चाकर चोर संपै साथ न चालै होर बिन साचे नहीं दरगे मान हर रस पीवै छुटै निदान हेरत हेरत हे सखी होए रही हैरान हाँ हाँ करती मैं मुई शब्द रवै मन ज्ञान हार डोर कंकन कणे करथा की सिंगार मिल प्रीतम सुख पाया।

आवा गौण मिटै गुरसबदी आपे परखे बख्श लया एका बेदन दूजै व्यापी नाम रसायन विसरिया सो बूजै जिस आप बुझाए गुर कै शब्द सो मुक्त भया नानक तारे तार नहारा हम मैं दूजा पर हरिया मनमुख पूलै जम की कान पार कर जो है हाणे हाण मनमुख परम पवै बेबाण वे मार्ग मूसै मंत्र मसान शब्द ना चीनै लवै कुबाण नानक साचर ते सुख जान गुरमुख साचे का पौ पावै गुरमुख बाणी अगड़गड़ावै गुरमुख निर्मल हर गुण गावै गुरमुख पवित्र परम पद पावै गुरमुख रोम रोम हर त्यावै नानक गुरमुख साज समावै गुरमुख परचै वेद विचारी गुरमुख परचै तरियै तारी गुरमुख परचै सो शब्द ज्ञानी गुरमुख परचै अंतर विद जानी गुरमुख पाईऐ अलख अपार नानक गुरमुख मुक्त द्वार गुरमुख अकथ कथै विचार गुरमुख निभै सब परवार गुरमुख जपिए अंतर प्यार गुरमुख पाईए शब्द आचार शब्द भेद जाने जानाई नानक हों मैं जाल समाई गुरमुख धरती साचै साजी तिसमै उपत खपत सो बाजी गुर कै शब्द रपै रंग लाए साच रतौ पत स्यों कर जाए साच शब्द बिन पत नहीं पावै नानक बिन नावै क्यों साज समावै गुरमुख अष्टो सिद्धि सब बुद्धि गुरमुख पव जल तरियै सच सुद्धि गुरमुख सारे अवसर बिद जाणै गुरमुख पर विरत नर विरत पछाणै गुरमुख तारे पार उतारे नानक गुरमुख शब्द निस्तारे नामे राते हम मैं जाए नाम रते सच रहे समाए नाम रते जोग जुगत विचार नाम रते पावै मुख द्वार नाम रते त्रिपवन सोजी होए नानक नाम रते सदा सुख होए नाम रते सिद्ध गोष्ट होए नाम रते सदा तप होए नाम रते सच करनी सार नाम रते गुण ज्ञान विचार बिन नावै बोले सब वेकार नानक नाम रते तिन कौ जयकार पूरे गुरते नाम पाया जाए जोग जुगत सच रह समाए बारह मैं जोगी परमाए सन्यासी शे चार गुर कै शब्द जो मर जीवै सो पाए मुख द्वार बिन शब्द सब दूजै लागे देखो हृदय विचार नानक वड्डे सेवट पागी जिनी सच रखिया अवतार गुरमुख रतन लह लिव लाए गुरमुख परखै रतन सुभाए गुरमुख साची कार कमाए गुरमुख साचे मन पति आए गुरमुख अलख लखाए तिस पावै नानक गुरमुख चोट ना खावै गुरमुख नामदान इशनान गुरमुख लागै सहि ध्यान गुरमुख पावै दरगै मान गुरमुख पाव पंजन प्रधान गुरमुख करनी कार कराए नानक गुरमुख मेल मिलाए। गुरमुख शास्त्र सिमरत वेद गुरमुख पावै कटकट भेद गुरमुख वैर विरोध गवावै गुरमुख सगली गणत मिटावै गुरमुख राम नाम रंग राता नानक गुरमुख खसम पछाता बिन गुर परमै आवै जाए बिन गुर काल न पवी थाए बिन गुर मनुआ अत डोलाए बिन गुर तृप्त नहीं बिख खाए बिन गुर बिसियर डसै मरवाट नानक गुर बिन काटे काट जिस गुर मिलै तिस पार उतारै अवगुण मिटै गुण निस्तारै मुक्त महा सुख गुर शब्द विचार गुरम कदे ना आवै हार
ਤਨ ਹਟੜੀ ਉਹ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਵਾਪਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਂਧੇ ਉਹ ਸੇਤ ਬਿਧਾਤੈ, ਲੰਕਾ ਲੁੱਟੀ ਦੈਤ ਸੰਤਾਪੈ। ਰਾਮ ਚੰਦ ਮਾਰਿਓ ਅਹਿ ਰਾਵਣ, ਭੇਦ ਬਿਖਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਚਾਇਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਇਰ ਪਾਹਣ ਤਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕੁੜਤੇ ਤੀ ਸਿਉਦਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਚੁੱਕੈ ਆਵਣ ਜਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਪਾਵੈ ਮਾਣ। ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਟੇ ਖਰੇ ਪਛਾਣ, ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਗੈ ਸਹਿ ਧਿਆਨ। ਗੁਰਮੁਖ ਦਰਗੈ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੋਜੀ ਹੋਏ। ਕਵਣ ਮੂਲ ਕਵਣ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਤੇਰਾ ਕਵਣ ਗੁਰੂ ਜਿਸਕਾ ਤੂੰ ਚੇਲਾ। ਕਵਣ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲੇ, ਬੋਲੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਬਾਲੇ। ਇਸ ਕਥਾ ਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਭਵ ਜਲ ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾ ਵਣਹਾਰ। ਪਵਨ ਆਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਵੇਲਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਤੁਨ ਚੇਲਾ। ਅਕਥ ਕਥਾ ਲੈ ਰਹੋ ਨਿਰਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਤ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਉਮੈ ਅਗਨ ਨਿਵਾਰੀ। ਮੈਣ ਕੇ ਦੰਤ ਕਿਉਂ ਖਾਈਐ ਸਾਰ, ਜਿਤ ਗਰਭ ਜਾਏ ਸੋ ਕਵਣ ਆਹਾਰ। ਹਿਵੈ ਕਾ ਘਰ ਮੰਦਿਰ ਅਗਨ ਪਿਰਾਹਨ, ਕਵਣ ਗੁਫਾ ਜਿਤ ਰਵੈ ਰਹਿ ਅਵਾਹਨ। ਏਤ ਉਤ ਕਿਸ ਕਉ ਜਾਣ ਸਮਾਵੈ, ਕਵਣ ਧਿਆਨ ਮਨ ਮਨੈ ਸਮਾਵੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ, ਦੂਜਾ ਮੇਟੈ ਏਕੋ ਹੋਵੈ। ਜਗ ਕਰੜਾ ਮਨ ਮੁਖ ਗਾਵਾਰ, ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਈਐ ਖਾਈਐ ਸਾਰ। ਅੰਤਰ ਬਾਹਰੇ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਅਗਨ ਮਾਰੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭਾਣੈ। ਸੱਚ ਪੈ ਰਾਤਾ ਗਰਭ ਨਿਵਾਰੈ, ਏਕੋ ਜਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਸ਼ਬਦ ਵਸੈ ਸੱਚ ਅੰਤਰ ਹੀ ਆ।

नानक दरगह पावै मान। साच वखर तन पल्लै होए, आप तरह तारे पी सोए। सहज रत्ता बूझै पत होए, ता की कीमत करै ना कोए। जै देखा तैं रया समाए, नानक पार परै सच पाए। सो शब्द का कहां वास कथियले, जित तरियै भवजल संसारो। त्रै सत अंगल वाई कहियै, तिस कहो कमन आधारो। बोलै खेलै असर होवै, क्यों कर लख लखाए। सुन स्वामी सच नानक प्रणवै, अपने मन समझाए। गुरमुख शब्दे सच लिव लागै, कर नदरी मेल मिलाए। आपे दाना आपे बीना, पूरे भाग समाए। सो शब्द कहो निरंतर वासा लखं, जै देखा तै सोई। पवन का वासा सुन निवासा, अगल कला तर सोई। नदर करे शब्द घट मैं वसै, विचों परम गवाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी, नम मन वसाए। शब्द गुरु पव सागर तरियै, एत उत एको जाणै। चिन्ह वर्ण नहीं छाया माया, नानक शब्द पछाणै। त्रै सत अंगल वाई अवधू, सुन सच आहारो। गुरमुख बोलै तत् बिरोलै, चीनै लख्या पारो। त्रै गुण मेटै शब्द वसाए, ता मन चूकै अहंकारो। अंतर बाहर एको जाणै, ता हर नाम लगै प्यारो। सुख मना एड़ा पिंगला बूझै, जा आपे लख लखाए। नानक तहुते उपर साचा, सतगुर शब्द समाए। मन का जियो पवन कथियले, पवन कहां रस खाई। ज्ञान की मुद्रा कमन अवधू, सिद्ध की कमन कमाई। बिन शब्द रस ना आवै अवधू, हम मैं प्यास ना जाई। शब्द रते अमृत रस पाया, साचे रहे अघाई। कवन बुद्ध जित असर रहिया, कित भोजन तृप्ता सै। नानक दुख सुख सम कर जापै, सतगुर ते काल न ग्रासै। रंग ना राता रस नहीं माता, बिन गुर शब्द जल बलताता। बिंद ना राखिया शब्द ना पाखिया, पवन ना साध्या सच ना आराध्या। अकथ कथा ले सम कर रहै, तव नानक आत्म राम कौल है। गुर प्रसादी रंगे राता, अमृत पिया साचे माता। गुर विचारी अगन निवारी, अपियो पियो आत्म सुखतारी। सच आराध्या गुरमुख तरतारी, नानक पूजै को विचारी। एहो मन मैंगल कहां बसिया ले, कहां बसै एहो पवना। कहां बसै सो शब्द अवधू, ता को चूकै मन का पवना। नदर करे ता सतगुर मेले, ता निकर वासा एहो मन पाए। आपै आप खाए ता निर्मल होवै, तावत वर्ज रहाए। क्यों मूल पछाणै आत्म जाणै, क्यों संस्कार सूर समावै। गुरमुख हों मैं विचों खोवै, तव नानक सही समावै। एहो मन निहचल हिरदै वसियले, गुरमुख मूल पछाण रहै। नाभ पवन कर आसन बैसै, गुरमुख खोज तत् लहै। सो शब्द निरंतर निज कर आछै, त्र पवन जोत सो शब्द लहै। खावै दुख भूख साचे की, साचे ही तृप्तास रहै। अनहद बाणी गुरमुख जानी, विरलो को अर्थावै। नानक आखै सच सुपाखै, सच रपै रंग कबहू ना जावै। जा एहो हिरदा देह ना होती, तौ मन कैठै रहता। नाभ कमल अस्तंभ ना हो तो, ता पवन कवन कर सहिता। रूप ना हो तो रेख ना काई, ता शब्द कहां लिवलाई। रकत बिंद की मड़ी ना होती, मित कीमत नहीं पाई। वर्ण भेख असरूप ना जापी, क्यों कर जाप साचा। नानक नाम रते बैरागी, इब तब साचो साचा। हिरदा देह ना होती अवधू, तव मन सुन रह बैरागी।
नाभ कमल अस्तंभ ना हो तो ता निज घर बसतो पवन अनुरागी। रूप ना रेखिया जात ना होती तौ अकलीन रहतौ शब्द सोसार। गौन गगन जब तब ना होतौ त्रिभवन ज्योत आपे निरंकार। वर्ण पेख असरूप सो एको एको शब्द विडाणी। साच बिना सूचा को नाही नानक कथ कहानी। कित बिद जग उपजै पुरखा कित कित दुख बिन सजाई। हम मैं विच जग उपजै पुरखा नाम विसरिया दुख पाई। गुरमुख होवै सो ज्ञान तत् विचारै हम मैं शब्द जलाए। तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच रह समाए। नामे नाम रहे बैरागी साच रखिया उरतारे। नानक बिन नावै जोग कदे ना होवै देखो हृदय बिचारे। गुरमुख साच शब्द बिचारे कोए गुरमुख सच बाणी प्रगट होए। गुरमुख मन पीजै विरला बूजै कोए गुरमुख निज कर वासा होए। गुरमुख जोगी जुगत पछाणै गुरमुख नानक एको जाणै। बिन सतगुर सेवे जोग ना होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना कोई। बिन सतगुर भेटे नाम पाया ना जाए बिन सतगुर भेटे महा दुख पाए। बिन सतगुर भेटे महा गर्भ गुबार नानक बिन गुरमुआ जन्म हार। गुरमुख मन जीता हम मैं मार गुरमुख साच रखिया अवतार। गुरमुख जग जीता जमकाल मार बिदार गुरमुख दर गै ना आवै हार। गुरमुख मेल मिलाए सो जाने नानक गुरमुख शब्द पछाणै। शब्द का

अभ्यागत है ना आखिया न जे पर कर भोजन करे न उदरे कारण अपने बहले पे करे न अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे न पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे न पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया न विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

नाम जपे नामो वारादे तिस जन को करो सब नमस्कार। मल कूड़ी नाम उतारियन जप नाम होआ सचियार। जन नानक जिस दे एह चलत है सो जीवो देवनहार। पौड़ी तुद जेवण दाता नाहीं किस आग सुनाई है। गुर प्रसादी पाए जिथों हम मैं जाई है। रस कस साधा बाहरा सच्ची वड़ियाई है। जिसनों बख्शे तिस दे आप लै मिलाई है। घट अंतर अमृत रखियोन गुरमुख किसै प्याई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा बा बाणियां कहानियां पुत सपुत करेन। जे सतगुर भावै सो मन लैन सेई कर्म करेन। जाए पुछो सिमरत शास्त्र ब्यास सुख नारद। बचन सब सृष्ट करेन सच्चै लाए सच लगे सदा सच सामालेन। नानक आए से प्रवान पए जे सगले कुल तारेन। महला तीजा गुरु जिन्ना का अंदला सिख भी अंधे कर्म करेन। ओए भाणे चलन आपणे नित झूठो झूठ बोलेन। कूड़ कुसत कमावदे पर निंदा सदा करेन। ओए आप डुबे पर निंदका सगले कुल डोबेन। नानक जित ओए लाए तित लगे ओए बपड़े क्या करेन। पौड़ी सब नदरी अंदर रखदा जेती सिहट सब कीती। एक कूड़ को सत लायन मनमुख वेगूती। गुरमुख सदा तिहाई है अंदर हर प्रीति। जिनको पोतै पुन है तिन वात सपीती। नानक नाम तिहाई है सच सिफत सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सती पाप कर सत कमाहे। गुर दीख्या कर देवन जाहे। स्त्री पुरख खटिया पाओ पावे आवो पावे जाओ। शास्त्र वेदना माने कोए आपो आपे पूजा होए। काजी होए कै बह न्याए फेरे तस्बी करे खुदाए। वड्डी लैके हक गवाए जे को पुछै ता पढ़ सुनाए। तुरक मंत्र कन हृदय समाहे। लोक मुहावे चाड़ी खाहे चौका देके सुचा होए। ऐसा हिंदू वेखो कोए

ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत मैं रेख न रूप महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त एको नाओ कौन सो अखर जित रहे हे आओ। धूप छाव जे सम कर रहे ता नानक आखे गुर को कह छे वरतारे वरतै पूत ना संसारी ना अवधूत निरंकार जो रह समाए काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया सब आत्म राम पछाता। बाहर मूल ना खोजी है कर्म है विधाता मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा मूर्ख होवे सो सुने मूर्ख का कहना मूर्ख के क्या लखन है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरै ओस पिछे डुबदे पी तरना नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक आखै रे मना सुनिए सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही तलबा पौसने आकिया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई आवन जान न सुजई पीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है हर रवर या सब आपै हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै गुर प्रसादी सालाही है हर भक्ति रापै सब मंतन हरिया होया हंकार गवापै। सब किश हर का खेल है गुरमुख किसे बुझाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला सहंसर दान दे इंद्र रोवाया परशुराम रोवे घर आया अजय सो रोवे पीखिया खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम निकाला पया सीता लखमण विछड़ गया रोवे दैसर लंक गवाए जिन सीता आंदी डौरू वाए। रोवै पांडव पय मजूर जिनकै स्वामी रहत है दूर रोवै जन्मे जा खोए गया एकी कारण पापी पया। रोवै शेख मसाइक पीर अंतकाल मत लागे पीड़ रोवै राजे कन पड़ाए कर कर मांगे पीखिया जाए। रोवै किरपन संचय तन जाए पंडित रोवै ज्ञान गवाए। बाली रोवै नाहे पतार नानक दुखिया सब संसार मन्ने नाओ सोई जन जाए औरी कर्म ना लेखै लाए। महला दूजा जप तप सब किश मन्ने अवरकारा सब बाद नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल करतै लिख पाया सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै गुण माहे समाया सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया सब किश।

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनींदा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएंदा कटे हों मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपूरे देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमिया जो लगे दूजे साद जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। श्लोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हाँ तिस सेवी हाँ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन।

कोई ऐसा सज्जन लोड लाहो जो मिले प्रीतम मोहे, गुरपुरै में लाया जत देखा तत सोए, जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए पौड़ी। देवन हार दा तार कित मुख सालाही है, जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है, कोई ना किसी ही वस सबना एक तार, पाले बालक वांग देके आप कर, करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है, सर्वतार समरथ हों तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया, जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवा, भीड़ो मोकलाई की अन सब रखे कुटुंबै नाल, कारज आप सवारयान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल, दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवा, विण तुद होर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख, देह नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। गुरवण तैण हरिया कीतिया, नानक क्या मनुख पौड़ी। सो ऐसा दातार मनो ना विसरै, कड़ी ना मोहत चसा तिस बिनु ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै, जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै, सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै, तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवा, तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए, तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या, तिन सद बलिहारै जाओ, तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सदबल।

व्यापया दुर्मत कबुद कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड़ै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा। सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा। नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल स्नेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की। जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है। सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई। जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई। जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई। जिसनो तेरी माया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई। श्लोक महला पंजवा कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा।

ਪਲਾਣ ਤਨਖ ਚੜਾਇਓ ਸਤ ਦਾ ਜਸ ਹੰਦਾ ਬਾਣ ਕਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅੰਧਾਰ ਸਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿ ਭਾਣ ਸਤੋ ਖੇਤ ਜਮਾਇਓ ਸਤੋ ਸ਼ਾਹਵਾਣ ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕਿਉ ਮੈਦਾ ਖਾਣ ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾ ਸੁਜੀਓ ਮਨ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਣ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਨਿਵਾਰਿਓ ਕਰ ਨਦਰ ਨੀਸਾਨ ਆਓ ਤਰਿਆ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਣ ਚੱਖੜ ਵਾਓ ਨਾ ਡੋਲਈ ਪਰਬਤ ਮੇਰਾਣ ਜਾਣੈ ਬਿਰਥਾ ਜੀ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੂੰ ਜਾਣ ਕਿਆ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੂੜ ਸੁਜਾਣ ਦਾਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਸੋ ਸੱਤੇ ਦਾਨ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਹੈਰਾਨ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀ ਬਾਣ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵਿਹਾ ਪੋਤਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰ ਆਤਨੈ ਸਵਾਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਅਤੈ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ ਅਟਲ ਅਥਾ ਹੋ ਅਤੋਲ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਲਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਾ ਪਰਵਾਰਿਆ ਤਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਅਮਰ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁੰਜੁਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਆਪੀ ਨੈ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਥੰਮ ਖਲੋਵਾ ਆਪੇ ਪੱਟੀ ਕਲਮ ਆਪ ਆਪ ਲਿਖਣ ਹਾਰਾ ਹੋਵਾ ਸਭ ਉਮਤ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਵਾ ਤਖ਼ਤ ਬੈਠਾ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਖਵੈ ਚੰਦੋਵਾ ਉਗਵਣਾਉ ਤੈ ਆਥ ਵਣਾਉ ਚਉ ਚੱਕੀ ਕੀਅਨ ਲੋਵਾ ਜਿਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਮਨਮੁਖਾਂ ਪਇਆ ਮੋਵਾ ਦੂਣੀ ਚਾਉਣੀ ਕਰਾ ਮਾਤ ਸੱਚੇ ਕਾ ਸੱਚਾ ਢੋਵਾ ਚਾਰੇ ਜਾਗੇ ਚਹੁ ਜੁਗੀ ਪੰਚਾਇਣ ਆਪੇ ਹੋਵਾ ਰਾਮ ਕਲੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਓ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਾਇਆ ਕਲਾਲਨ ਲਾਹਨ ਮੇਲੋ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁੜ ਕੀਨ ਰੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤਸਰ ਕਾਟ ਕਾਟ ਕਸਦੀਨ ਰੇ ਕੋਈ ਹੈ ਰੇ ਸੰਤ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਜਪ ਤਪ ਦਿਓ ਦਲਾਲੀ ਰੇ ਏਕ ਮੂੰਦ ਪਰ ਤਨ ਮਨ ਦੇਵੋ ਜੋ ਮਦ ਏਕ ਲਾਲੀ ਰੇ ਰਹਾਓ ਭਵਨ ਚਤੁਰ ਦਸ ਪਾਠੀ ਕੀਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਗਨ ਤਨ ਜਾਰੀ ਰੇ ਮੁੰਦਰਾ ਮਦਕ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੀ ਸੁਖਮਨ ਪੋਚਨ ਹਾਰੀ ਰੇ ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਨੇਮ ਸੁਚ ਸੰਜਮ ਰਵ ਸਸ ਗਹਿਣੈ ਦਿਓ ਰੇ ਸੁਰਤ ਪਿਆਲ ਸੁਧਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਹਾਰਸ ਪਿਓ ਰੇ ਨਿਜਰ ਧਾਰ ਚੁਵੈਤ ਨਿਰਮਲ ਇਹ ਰਸ ਮਨੁ ਮਾਰਾ ਤੋ ਰੇ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਸਗਲੇ ਮਦ ਸ਼ੂਸ਼ੇ ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਸ ਸਚੋ ਰੇ ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਮਹੁਆ ਭਉ ਪਾਠੀ ਮਨ ਧਾਰਾ ਸੁਖ ਮਨ ਨਾਰੀ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪੀਵੈ ਪੀਵਨ ਹਾਰਾ ਔਦੂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮਤਵਾਰਾ ਉਨ ਮਦ ਚੜਾ ਮਦਨ ਰਸ ਚਾਖਿਆ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਭਇਆ ਉਜਿਆਰਾ ਰਹਾਓ ਦੁਇਪੁਰ ਜੋਰ ਰਸਾਈ ਪਾਠੀ ਪੀਓ ਮਹਾਰਸ ਭਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀਏ ਜਲੇਤਾ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗੁਰਗੰਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੁਧ ਪਾਈ ਤਾ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਤ ਮਾਤਾ ਉਚਕ ਨਾ ਕਬ ਹੂੰ ਜਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਮੇਰ ਪਰਬਤ ਸਵਾਮੀ ਉਠ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਤੁਮ ਡੋਲੋ ਨਾ ਹਮ ਗਿਰਤੇ ਰੱਖ ਲੀ ਨੀ ਹਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਤਬ ਜਬ ਕਬ ਤੁਹੀ ਤੁਹੀ ਹਮ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖੀ ਸਦ ਹੀ ਰਹਾਓ ਤੋਰੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਹਰ ਬਸਿਓ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕੀ ਤਪਤ ਬੁਝਾਈ
पहले दर्शन मगहर पायो फुनकासी बसे आई, जैसा मगहर तैसी काशी हम एक कर जानी। हम निरतन ज्यों हो तन पाया मरते फूट गुमानी, करे गुमान चुबै ते सूला को काढ़न कौ नाही। अजय सो चोभ कौ बिलल बिलाते नरके कोर पचाही, कवन नरक क्या सुर्ग बिचारा संतन दो उरादे। हम काहू की कांड न करते अपने गुर प्रसादे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले है सारंग पानी। राम कबीरा एक पय है कोई न सके पिछानी, संता मानो दूता डानो एह कुटवारी मेरी। दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी, हम कुकर तेरे दरबार पौके आगे बदन पसार। रहाओ पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक, अब तो मिटिया ना जाई। तेरे द्वारा तुन सहज की माथे मेरे दगाई, दागे होए सो रन मैं जूझै बिन दागे भग जाई। साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाई। कोठरे मैं कोठरी परम कोठी बिचार, गुरदीनी बस्त कबीर कौ ले वो बस समार। कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग, अमृत रस जन पाया थिरता का सुहाग। जेह मुख बेद गायत्री बिकसै, जेह मुख बेद गायत्री निकसै सो क्यों ब्राह्मण बिसर करै। जा कह पाए जगत सब लागै सो क्यों पंडित हर ना कहै। काहे मेरे बामनु हर ना कहै, राम ना बोले पांडे दोजक परै। रहाओ आपन ऊंच नीच कर भोजन हठे कर्म कर उधर भरै। चौदस अमावस रच रच मांगै कर दीपक लै कूपरै। तू ब्राह्मण मैं कासीक जुलहा, मोहे तोहे बराबरी कैसे कै बनै। रा हमरे राम नाम कहे उबरे बेद भरोसे पांडे डू मरै। तरवर एक अनंत डार साखा पोह पोह पत्र रस भरिया। यह अमृत की बाड़ी है रे तिन हर पूरे करिया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रगासा गुरमुख बिर लै जानी। रहाओ पावर एक पोह परस बीदा, बारे ले उर तरिया सोरे मदे पवन चकोरिया आकाशे फरफरिया। सहज सुन एक बिरवा उपजया, धरती जल हर सोखिया। कह कबीर हों ताका सेवक जिने हो बिरवा देखिया। मुंद्रा मोहन दया कर चोली, पत्र का करो बिचार रे। ए खिंथा एह तन सीओ अपना, नाम करो आधार रे। ऐसा योग कमावो जोगी, जप तप संजम गुरमुख भोगी। रहाओ बुद्ध विभूत चढ़ाओ अपनी, सिंगी सुरत मिलाई कर बैराग। फिरो तन नगरी मन की किंगरी बजाई, पंच तत् लै हृदय रख रह निरालम ताड़ी। कहत कबीर सुनोरे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया। पवनिद तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जी ओ पिंड था दिया। जिसकी पाओ भगत ने साधी रहाओ, पारतान पारतान पारती निंदा पर अपवाद ना छूटै। आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटै। जेह कर कथा हो त्यार संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा। लंपट चोर दूत मतवारे तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर ए संपै मोह माही। दया धर्म यार गुर की सेवा ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर भगत वछर पैहारी। कहत कबीर पीर जन राखो हर सेवा करो तुम्हारी।
जिहे सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर, ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहीं रहाओ, जे सिमरन नाही नरकार, मुक्त करै उतरै बो पार, नमस्कार कर हृदय माहे, फिर तेरा आवन नाहे, जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार, जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राखो तार, गुर प्रसादी उतरै पार, जे सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान, से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू अंदन पियो, जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए, सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै, सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास, जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग, जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार, कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत, राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्त गुर अनल बुझाया, जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना, पवन पत ओन मनो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ, उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग, बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा, चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा, जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा, बगतै बग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया, कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग, चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप, कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर धरिया पसार, रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश, कह कबीर निरंजना लेख, दुनिया होशियार बेदार जागत, मुसीयत होरे पाई, निगम होशियार पहरुआ, देखत जम ले जाई, रहाओ नींब पयो आंब, आंब पयो नींबा, केला पाका चार, नाली एर फल से बरपाका, मूर्ख मुग्ध गवार, हर पयो खांड, रेत मैं बिखरियो, हस्ती चुनियो ना जाई, कह कमीर कुल जात पाता, जो चीटी होए चुन खाई, बाणी नाम देव जियो की, राम कली कर पहला, एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, आनी ले कागद, काटी ले गुडी, आकाश मदे परमी अले, पंच जना सो बात बतौआ, चीत सो डोरी राखी अले, मन राम नामा बेदी अले, जैसे कनक कला चित मांडी अले, रहाओ आनी ले कुंभ, पराई ले उदक, राजकुमार पुरंदरीये, हस्त बिनोद विचार करती है, चीत सो गागर राखी अले, मंदर एक द्वार दह जाके, गऊ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गऊ चरावत, चीत सो बछरा राखी अले, कहत नाम देव सुनो तिलोचन, बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी, चीत सो बार कराखी अले, वेद पुराण शास्त्र अनंता, गीत कवित ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार मैं, अनहद वेद मजाओ गो, बैरागी राम गावो गो, शब्दा तीता नहदराता, या कुल कहकर जाओ गो, रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो, चंद सूरज दोय समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओगो, तीर्थ देखना जल मैं पैसो, जी जंत ना सतावोगो, 68 तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओगो,
पंच सहाई जन की शोभा, भलो भलो ना कहावो गो, नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध

जय। राम नाम सर तऊ न पूजय, छोड़ छोड़ रे पाखंडी मन कपट ना की जय। हर का नाम नित नित ली जय रहाओ। गंगा जौ गोदावर जाइए, कुंभ जौ केदार नहाइए, गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करे, तन जौ हिवाले गारे, राम नाम सर तऊ न पूजय। अस दान गज दान सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ निर्माल की जय, आप बराबर कंचन दी जय, राम नाम सरतऊ न पूजय। मन न की जय रोस, जमे न दी जय दोष, निर्मल निर्वाण पद चीन ली जय। जथ रथ राय नंद, राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत्रस अमृत पीजय। राम कली बाणी रविदास जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्श, लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पार स नाम परस। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बाडो कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते, एह बुद्ध कबै ना नासी। कहो रविदास समय सबै नहीं समझस, भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसाए कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थान क्या निशानी, तह बाजे सबदया नाहद बाणी, तह चांदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै, एस कला जो जाने पे ओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगमया पारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रह सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै, बीज मंत्र लै हिरदय रह, मनुआ उल्ट सुन महंगह। जागत रह ना अलिया पाख, पांचो इंद्री बस कर रख, गुर की साखी राख चीत, मन तन अर्प कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म न जुए हारे। असर नदी का बंदे मूल, पच्छम फेर चढ़ावे सूर, अजर जरै सो निजर चरै, जगन्नाथ्यो गोष्ठ करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल विचकार, सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामे गुहै। मस्तक पद्म द्वाले मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी, पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचे तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख असाध नगर में, एक खिन पल दूर करे, वड़ पागी हर नाम ते आवे।

तिनकी संगत देह प्रभ जाचाओ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे, कृपा कृपा तार जग जीवन, रख ले वो शरण परे, नानक जन तुम री शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा। राम जप जन रामे नाम रले, राम नाम जपयो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ, हर हर अगमया गोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले, हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले, परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले, विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले, हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले, उनमें कहन कहन कहन हर गर जय, मन बिकसे मोर मुरले, हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले, जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंध भले। नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम सखे, गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ, उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे, तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे, हर गुण ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे, जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे, हमरे अवगन बिखिया बिखै के, बहु बार बार निमखे, अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे, जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे, जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर राम रंगे, हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ, जन्म जन्म के भूल चूक, हम अब आए प्रभ शरण अगे, तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पाप अगे, तुमरी संगत हर को ना उधरे हो, प्रभ किए पतत पवगे, गुण गावत शीपा दुष्टारे हो, प्रभ राखी पैज जनगे, जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हाँ बल बल बल तिनगे, पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे, तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे, जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा। मेरे मन जप हर हर नाम मने, जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ, हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने, किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने, तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने, जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही गुण जानो प्रभ अपने, माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने, ज्यों जल कुंचर तंदुए बंदो, हर चेत्यो मोख मुखने, स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर तुम खोजो जुग जुगने, तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानके प्रभ वडने। नट महला चौथा। मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे, हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुरु हर जपने रहाओ, हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्याव हर रुणने, जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने, एहो पर पंच किया प्रभ स्वामी, सब जग जीवन जुगने, ज्यो सलल सलल उठे बौ लहरी, मिल सलल सलल समणे, जो प्रभ किया सो तुम ही जानो, हम न जाही हर गहने, हम बारक कौर दुस्त धारो, हम करे प्रभु सिमरणे, तुम जल निधार मान सरोवर, जो सेवै सब फलने, जन नानक हर हर हर हर बांछै।
हर देवो कर कृपणे। नट नारायण महला चौथा पड़ताल, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन सेव सफल हर काल, ले गुर पगरे नरवाल। सब दालद पाई दुख दाल, हर हो नदर निहाल। रहाओ हर का गृहो रे आप सवारो, हर रंग रंग महल बेअंत। लाल लाल हर लाल, हरे अपनी कृपा करी आप गृह आयो। हम हर की गुर की है बसीठी, हम हर देखे पई निहाल निहाल निहाल।

जन नानक हर हर मिले भए गलतान हाल निहाल निहाल। नट महला चौथा मन मिर संत संगत सुभवंती सुनया कथ कथा सुखवंती सब किलबिख पाप लहंती हर हो लिखत लिखंती रहाओ। हर कीर्त कलयुग विच यूतम मत गुरमत कथा भजंती जिन जन सुनी मनी है जिन जन तिस जन कै हाँ कुरबानंती। हर अकथ कथा का जिन रस चाखिया तिस जन सा पूख लहंती। नानक जन हर कथा सुन त्रिपते जप हर हर हर होवंती। नट महला चौथा कोई यान सुनावै हर की हर गाल तिसको हाँ बल बल बाल सो हर जन है पल पाल। हर हो मेल निहाल रहाओ। हर का मार्ग गुरसंत बतायो गुर चाल दिखाई हर चाल। अंतर कपट चुकावो मेरे गुर सिखो नेह कपट कमावो हर की हर काल। निहाल निहाल निहाल ते गुर के सिख मेरे हर प्रभ पाए जिन्ना हर प्रभ जान्यो मेरा नाल। जन नानक कहो मत हर प्रभ दीनी हर देख निकट है दूर। निहाल निहाल निहाल निहाल। राग नट नारायण महला पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम हाउ क्या जाना क्या पावै मन प्यास बहुत दर्शावै रहाओ। सोई ज्ञानी सोई जनतेरा जिस ऊपर रुच आवै कृपा करो जिस पुरख विधाते सो सदा सदा तू त्यावै। कवन योग कवन ज्ञान ध्याना कवन गुनी री जावै। सोई जन सोई निज भगता जिस ऊपर रंग लावै। साई मत साई बुद्ध स्याणप जित निमख ना प्रभ बिसरावै। संत संग लगे हो सुख पायो हर गुण सद ही गावै। देखियो अचरज महामंगल रूप किश्यान नहीं दिष्टावै। कहो नानक मोर्चा गुर लाहे हो तैं गर्भ जोन कै आवै। नट नारायण

आठ पहर गुण गायण रहाओ। साधु तूर करो नित मज्जन, सब किल विख पाप गवायण, पूर्ण पूर्ण रहे कृपा निद, घट घट दिष्ट समायण। जाप ताप कोट लख पूजा, हर सिमरन तुल ना लायण, दोए कर जोड़ नानक दान मांगे, तेरे दासन दा दसायण। नट महला पंजवा, मेरा सर्वस नाम निधान, कर कृपा साधु संग मिलियो, सतगुर दीनो दान रहाओ। सुखदाता दुख पंजन हारा, गाओ कीर्तन पूर्ण ज्ञान, काम क्रोध लोभ खंड खंड कीने, बिनस्यो मूड अभमान। क्या गुण तेरे आख वखाना, प्रभयंत्र जामी जान, चरण कमल सरन सुख सागर, नानक सद कुर्बान। नट महला पंजवा, हाँ वार वार जाओ गुर गोपाल रहाओ। मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते, दीना ना दयाल, उठत बैठत सोवत जागत, जी प्राण तन माल। दर्शन प्यास बहुत मन मेरा, नानक दर्शन हाल। नट पड़ताल महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। को है मेरो साजन मीत, हर नाम सुनावे नीत, बिनसै दुख विपरीत, सब अर्पो मंतन जीत रहाओ। कोई विरला अपन कीत, संग चरण कमल मन सीत, कर कृपा हर जस दीत, हर पाजो जन्म पदार्थ जीत। कोट पतत होहे पुनीत, नानक दास बल बल कीत। नट अष्टपदिया महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद। राम मेरे मंतन नाम आधारे, खिन पल रह न सको बिन सेवा, मैं गुरमत नाम सुमारे रहाओ। हर हर हर हर हर मन त्यावो, मैं हर हर नाम प्यारे, दीन दयाल पहे प्रभ ठाकर, गुर के शब्द सवारे। मधुसूदन जग जीवन माधो, मेरे ठाकर अगम अपारे, एक बिनो बेनती करो गुर आगै, मैं साधु चरण पखारे। सहस नेत्र नेत्र है प्रभ कहो, प्रभ एको पुरख निरारे, सहस मूर्त एको प्रभ ठाकर, प्रभ एको गुरमत तारे। गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उरतारे, हर हर कथा बनियत मीठी, ज्यों गूंगा गटक समारे। रसना साध चखे पाए दूजे, अत फीके लोभ बेकारे, जो गुरमुख साध चखे राम नामा, सब अनरस साध बिसारे। गुरमत राम नाम तन पाया, सुन कहत्या पाप निवारे। धर्म राय जम नेड़ ना आवे, मेरे ठाकुर के जन प्यारे, सास सास सास है जेते, मैं गुरमत नाम समारे। सास सास जाए ना मैं बिन, सो बिरथा सास बेकारे। कृपा कृपा कर दीन प्रभ सरणी, मोको हरजन मेल प्यारे। नानक दासन दास कहत है, हम दासन के पनिहारे। नट महला चौथा, राम हम पाथर निर्गुणियारे, कृपा कृपा कर गुरु मिलाए, हम पहन शब्द गुर तारे रहाओ। सतगुर नाम दृढ़ा यत मीठा, मैला गर्म लगारे, ना मैं सुरत वजी है दय दस, हर मुस्की मुसक गंधारे। तेरी निर्गुण कथा कथा है मीठी, गुरनी के बचन समारे। गावत गावत हर गुण गाए, गुण गावत गुर निस्तारे। बबेक गुरु गुरु समदर्शी, तिस मिलिया संको तारे। सतगुर मिलिया परम पद पाया, हों सतगुर कै बलिहारे। पाखंड पाखंड कर कर परमे, लोभ पाखंड जग बुरियारे। हलत पलत दुखदाई होवे, जमकाल खड़ा सिर मारे। उगवे दिन सियाल जल संभाले, बिख माया के बिस्थारे। आई रहन पया सुपनंतर, बिख सुपने पी दुख सारे। कलर खेत लै कूड़ जमाया, सब कूड़े के खलवारे। साग तनार सब पुख पुखाने, दर ठंडे जम जंदारे। मनमुख कर्ज चढ़िया बिख पारी, उतरे शब्द विचारे। जितने कर्ज कर्ज के मंगिए, कर सेवक पग लगवारे। जगन्नाथ सब जंतर उपाए,
ਨੱਕ ਖੀਨੀ ਸਭ ਨੱਥ ਹਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਖਿੰਚੈ ਤਿਵ ਚੱਲੀਐ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ। ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਹਰਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਮੱਜਨ ਹੈ ਨੀਕੋ, ਮਿਲ ਕਰਮਲ ਪਾਪ ਉਤਾਰੇ ਰਹਾਓ। ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਬਾ ਗਨ ਕੋ ਧਾਰੇ, ਪਰਸਨ ਪਰਸ ਭਏ ਕੁਬਜਾ ਕਉ, ਲੈ ਬੈ ਕੁੰਠ ਸਿਧਾਰੇ। ਅਜਾਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਤਕੀਨੀ, ਕਰ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਾਰੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਕੈ ਮਨ ਭਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਮਾਰ ਬੇਦਾਰੇ। ਮਾਨੁਖ ਕਥੈ ਕਥ ਲੋਕ ਸੁਣਾਵੈ, ਜੋ ਬੋਲੈ ਸੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਵੈ, ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਬ ਲਗ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਬਤ, ਤਬ ਲਗ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਮਾਰੇ। ਜਬ ਘਰ ਮੰਦਰ ਅੱਗ ਲਗਾਨੀ, ਕੱਢ ਕੂਪ ਕੱਢੈ ਪਨਿਹਾਰੇ, ਸਾਗਰ ਸਿਉਮਨ ਮੇਲ ਨਾ ਕਰੀਓ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਕਤ ਬਚਨ ਵਿਸ਼ੂਆ ਜਿਉਂ ਡਸੀਐ, ਤਜ ਸਾਕਤ ਪਰੈ ਪਰਾਰੇ। ਲਗ ਲਗ ਪ੍ਰੀਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ, ਲਗ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਮੇਰੇ ਠਾਕਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ। ਪੂਰਬ ਜਨਮ ਪਰਚੂਨ ਕਮਾਏ, ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਰਸ

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद, अनक जतन कर रहे हर अंत नाही पाया, हर अगम अगम अगाध बोध आदेश हर प्रबराया रहाओ, काम क्रोध लो मोह निर्चगर ते चगराया, हम राख राख दीन तेरे हर शरण हर प्रभ आया, शरणागति प्रद प्रभ पालते हर भगत वच्छल नाया, प्रहलाद जन हर नाख पकड़िया हर लाख लिय उतराया, हर चेतरे मन महल पावन सब दुख पंजन राया, पौ जन मर निवार ठाकर हर गुरमति प्रभ पाया, हर पतत पावन नाम स्वामी पौ भगत पंजन गाया, हर हार हर उतार ओ जन नानक नाम समाया, माली गौड़ा महला चौथा जप मनो राम नाम सुखदाता, सतसंगत मिल हर साध आया, गुरमुख ब्रह्म पिछाता रहाओ, वडभागी गुर दर्शन पाया, गुर मिले हर प्रभ जाता, दुर्मत मैल गई सब नीकर हर अमृत हर सरनाता, तन तन साध जिनी हर प्रभ पाया, तिन पूछो हर की बाता, पाए लगो नित करो जुदरिया, हर मेलो कर्म विधाता, ललाट लिखे पाया गुर साधु गुर बचनी मंत्र राता, हर प्रभ आए मिले सुख पाया, सब किल विख पाप गवाता, राम रसायन

मेरे मन पज हर हर नाम गोपाला, मेरा मन तन लीन पया राम नाम मैं, मत गुरमत राम रसाला रहाओ। गुरमत नाम त्याईये हर हर मन जपिए हर जप माला, जिनके मस्तक लिखिया हर मिलिया हर बनवाला। जिन हर नाम ते आया तिन चूके सर्ब जंजाला, तिन जम नेड़ ना आवई गुर राखे हर रखवाला। हम बारक किशु ना जानहू हर मात पिता प्रतपाला, कर माया अगन नित मेलते गुर राखे दीन दयाला। बहु मैले निर्मल होया सब किलबख हर जस जाला, मन अंध भया गुर पाया जन नानक शब्द निहाला। माली गौड़ा महला चौथा, मेरे मन हर पज सब किलबिख काट, हर हर उर तारियो गुरपूरै, मेरा सीस कीजै गुरवाट रहाओ। मेरे हर प्रभ की मैं बात सुनावै, तिस मन देवो कटकाट, हर साजन मेलो गुरपूरै, गुरबचन बिकानो हट हाट। मकर प्राग दान बहु किया शरीर दियो अधकाट, बिन हर नाम के बिन हर नाम को मुक्त ना पावै। बहु कंचन दीजे कटकाट, हर कीर्त गुरमत जस गायो, मन उगरे कपट कपाट। त्रिकुटी फोर परम पौ पागा, लच लज पानी मटकी माट, कल युग गुरपूरा तिन पाया, जिन तुर मस्तक लिखे ललाट। जन नानक रस अमृत पिया, सब लाथी भूख तिखाट, शक्का एक माली गौड़ा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन टहलो हर सुख सार, अवर टहला झूठिया नित करे जम सिर मार रहाओ। जिन्ना मस्तक लिखिया ते मिले संगार, संसार पवजल तारिया हर संत पुरख अपार। नित चरण सेवो साध के तज लो मोह बेकार, सब तजो दूजी आसड़ी रख आस एक निरंकार। एक परम पूले सागता, बिन गुर अंध अंधार, तुर होव ना सो होया को न मेटनहार। अगम रूप गोबिंद का अनक नाम अपार, तन तन ते जन नानका जिन हर नामा उरतार। माली गौड़ा महला पंजवा, राम नाम कौ नमस्कार, जास जपत होवत उधार रहाओ। जा कै सिमरन मिटै तंद, जा कै सिमरन छूटै बंद, जा कै सिमरन मूर्ख चतर, जा कै सिमरन कुलै उदर। जा कै सिमरन पौ दुख हरै, जा कै सिमरन अपदा टरै, जा कै सिमरन मुचित पाप, जा कै सिमरन नहीं संताप, जा कै सिमरन रिद विगास, जा कै सिमरन कवलादास। जा कै सिमरन निद निधान, जा कै सिमरन तरे निदान। पतत पावन नाम हरी, कोट भगत उधार करी, हर दास दासा दीन सरन, नानक माथा संत चरण। माली गौड़ा महला पंजवा, ऐसो सहाई हर को नाम, साध संगत पज पूर्ण काम रहाओ। बूढ़त कौ जैसे बेड़ी मिलत, बूजत दीपक मिलत तिलत, जलत अग्नि मिलत नीर, जैसे बारक मुख है खीर। जैसे रण में सखा प्रात, जैसे भूखे भोजन मात, जैसे किरखे बरस मेंग, जैसे पलन सरन सेंग। गरड़ मुख नहीं सर्प त्रास।

थोर कही हर अगम अगम अगाध तुही ऊच मूचो बहवा पार सिमरत नानक तरे सार माली गौड़ा महला पंजवा इही हमारे सफल काज अपने दास को लेहो निवाज रहाओ चरण संतै माथ मोर नैन दर्श पेखो निस्पोर हस्त हमरे संत टहलो प्राण मन तन संत बहलो संत संग मेरे मन की प्रीत संत गुण बसे मेरे चीत संत आज्ञा मन है मीठ मेरा कमल बिकसे संत डीठ संत संग मेरा होए निवास संतन की मोह बहुत प्यास संत बचन मेरे मन है मंत संत प्रसाद मेरे बिखे हंत मुकत जुगत एहा निधान प्रभ दयाल मोहे देवो दान नानक कहो प्रभ दया तार चरण संतन के मेरे हृदय मजार माली गौड़ा महला पंजवा सबके संगी नाही दूर करन करावन हाजरा हजूर रहाओ सुनत जियो जास नाम दुख बिन से सो कियो विश्राम सगल निद हर हर हरे मुन जनता की सेव करे जा कै घर सगले समाहे जिसते बिरथा कोई नाहे जी जंतर करे प्रतपाल सदा सदा सेवो कृपाल सदा धर्म जा कै दीबाण बेमोहताज नहीं किश काण सब किश करना अपने आप रे मन मेरे तू ता को जाप साध संगत कहो हौ बलिहार जास मिल होवै उधार नाम संग मन तन है रात नानक कहो प्रभ करी दात माली गौड़ा महला पंजवा दो पदे एको अंकार सतगुर प्रसाद हर समर्थ की सरना जियो पिंड तन रास मेरी प्रभ एक कारण करना रहाओ सिमर सिमर सदा सुख पाईए जीवन का मूल रव रहया सरबत ठाई सुख मोह स्थूल आल जाल बेकार तज सब हर गुणा नित गाओ कर जोड़ नानक दान मांगे देहो अपना नाओ माली गौड़ा महला पंजवा प्रभ समरथ देव अपार कौन जाने चलत तेरे किशंत नाही पार रहाओ एक खिने था प्यो थापदा कड़ पन करने हार जेत कीने पार जना प्रभ दान दे दातार हर सरन आयो दास तेरा प्रभ ऊच अगम मुरार कड़ लेहो पौ जल बिखमते जन नानक सद बलिहार माली गौड़ा महला पंजवा मन तन बस रहे गोपाल दीन बांधव भगत वच्छल सदा सदा कृपाल रहाओ आदि अंते मद तू है प्रभ बिना नाही कोए पूर रहया सगल मंडल एक स्वामी सोए करन हर जस नेत्र दर्शन रसन हर गुण गाओ बलिहार जाए सदा नानक देहो अपना नाओ माली गौड़ा बाणी भगत नामदेव जी की एको अंकार सतगुर प्रसाद तन तन ओ राम बेन बाजै मदर मदर तुन अनहत गाजै रहाओ तन तन मेघा रोमावली तन तन कृष्ण ओंडै कंबली तन तन तू माता देव की जय ग्रह रमैया कवलापति तन तन बन खंड बिंद्रा बना जय खेल श्री नारायणा बिन बजावे गोदन चरै नामे का स्वामी आनंद करै मेरो बाप माधो तू तन केसो सांवलियो बीठ लाए रहाओ कर तरे चक्कर बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उधारी अले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर ले त्यो बारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन केतक तारी अले ऐसा अदम अजात नाम देओ तो शरणागत आई अले सबै घट राम बोले रामा बोले राम बिना को बोले रे रहाओ एकल माटी कुंजर चीटी
ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ, ਅਸਥਾਵਰ ਜੰਗਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਮ, ਕਟ ਕਟ ਰਾਮ ਸਮਾਨਾ ਰੇ। ਏਕਲ ਚਿੰਤਾ ਰਾਖਿਆ ਅਨੰਤਾ, ਔਰਤ ਜੋ ਸਭ ਆਸਾ ਰੇ, ਪ੍ਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਕਾਮਾ, ਕੋ ਠਾਕਰ ਕੋ ਦਾਸਾ ਰੇ। ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਾ ਜੁਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਲੋਕ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ, ਹੋਏ ਰਹਾਂ ਸਦ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ, ਪੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ। ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੋ ਰਾਤੀ ਸੱਦੜਾ, ਨਾਮ ਖਸਮ ਕਾਲੇ, ਖੇਮੇ ਛਤਰ ਸਰਾਏ ਚ ਦਿਸਨ ਰੱਥ ਪੀੜੇ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕਉ ਸਦ ਮਿਲੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਕਰਮਹੀਣ ਕੂੜਿਆਰ, ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇਰਾ, ਅੰਧਾ ਪਰਮ ਭੂਲਾ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਰਹਾਓ। ਸਾਧ ਕੀਤੇ ਦੁਖ ਪਰ ਫੋੜੇ, ਪੂਰਬ ਲਿਖੇ ਮਾਏ, ਸੁਖ

गया सो जो बनो धन पछताणी, तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा, पणत नानक अंदेसा एही, बिन दर्शन कैसे रवो स्नेही। मारू महला पहला, मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुपागा, गुर की बचनी हट बेकाना, जित लाया तित लागा, तेरे लाले क्या चतराई, साहिब का हुक्म ना करना जाई रहाओ। मां लाली प्यो लाला मेरा, हाँ लाले का जाया, लाली नाचे लाला गावे, भगत करो तेरी राया, पिए ता पानी आनी मीरा, खाहे ता पीसन जाओ, पखा फेरी पैर मलोवा, जपत रहा तेरा नाओ। लून हरामी नानक लाला, बख्शै तुद वड्याई, आ जुगा दया पदाता, तुद बिन मुक्त ना पाई।

तौ दीवाना जानिए जा एकाकार कमाए, हुक्म पछाणे खसम का दूजी अवर सियाण पकाए। तौ दीवाना जानिए जा साहिब तरे प्यार, मंदा जाने आप कहो अवर भला संसार। मारू महला पहला, एहो तन सरबरया भरपूर, मनुख फिर से जाने दूर। सो तन वखर नाम हृदय हमारा, जिस तू देह तिसे निस्तार। रहाओ ना एहो तन

हर पाया हलत पलत पत राख रहाओ हर हर नाम ते आई हर कीर्त गुरमुख चाख तन तरती हर बीजी विच संगत हर प्रभ राख अमृत हर हर नाम है गुर पूरे हर अस चाख मन मुख तृष्णा भर रहे मन आसा दह दस बहु लाख बिन नामै त्रिग जीव दे विच विष्टा मन मुख राख कोई आवै जाए पवाई है बहु जोनी दुर्गंध पाख त्राहे त्राहे सरणागति हर दया तार प्रभ राख संत संगत में लाभ कर हर नाम मिले पतसाख हर हर नाम तन पाया जन नानक गुरमत पाख मारू महला चौथा कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर भगत भरे भंडारा गुरमुख राम करे निस्तारा जिसनों कृपा करे।

जप हर हर नाम छिड़ावै जियो रहाओ सुख सागर अमृत हर नाओ मंगत जन जाचै हर देहो पसाओ हर सत सत सदा हर सत मेरा मन भावै जियो नवे छिद्र स्रवै अपवित्रा बोल हर नाम पवित्र सब किता जे हर सो प्रसन्न होवै मेरा स्वामी हर सिमरत मल लै जावै जियो माया मोह।

तूं सर्वत्र तेरा सब कोई, जो तू करे सोई प्रभ होई। जन नानक गुण गावै बेचारा, हर पावै हर थाए पावै जियो। मारू महला चौथा, हर हर नाम जपो मन मेरे, सब किलबिख काटै हर तेरे। हर तन राखो हर तन संचो, हर चलद्या नाल सिखाई जियो। जिसनो कृपा करे सो त्यावै, नित हर जप जापै जप हर सुख पावै। गुर प्रसादी हर रस आवै, जप हर हर पार लंघाई जियो। रहाओ निरपो निरंकार सतनाम, जग में सृष्टि उत्तम काम। दुश्मन दूत जमकाल ठेहे मारो, हर सेवक नेड़ ना जाई जियो। जिस उपर हर का मन मानिया, सो सेवक चहो जुग चहो कुंट जानिया।

नहीं चलता। जिस हर राखै तिस कौन मारै, जिस करता आप छिड़ाई जियो। हवन दे नाम लई करतारे, जिन सेवक भगत सबे निस्तारे। दस अठ चार वेद सब पूछो, जन नानक नाम छिड़ाई जियो। मारू महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। डर पै तरत आकाश नखियत्रा, सिर ऊपर अमर करारा। पौन पानी बै संतर डर पै इंद्र बिचारा। एका निरपौ बात सुनी, सो सुखिया सो सदा सुहेला। जो गिरमिल गाए गुनी रहाओ, देह तारे अर देवा डर पै से साधक डर मोया। लख चौरासी मर मर जन्मे, फिर जो नी जोया। राजस सातक तामस डर पै, केते रूपयो पाया। शल बप्रिय कौला डर पै, अत डर पै धर्म राया। सगर समग्री डर ब्यापी, बिन डर करने हारा। कहो नानक भगतन का संगी, भगत सोहै दरबारा। मारू महला पंजवां, पांच बरख को अनाथ त्रू बारक। हर सिमरत अमर अटारे, पुत्र हेत नारायण कहो जम कंकर मार बिदारे। मेरे ठाकर केते अगंत उधारे, मोहे दीन अल्प मत निर्गुण। परयो सरन द्वारे रहाओ, बालमीक सुपचारो तरयो। बद्धक तरे बिचारे, एक निमख मन माहे अराध्यो। गदपत पार उतारे, कीनी रखिया भगत प्रहलाद। हर नाक्ष नखै बिदारे, बिदर दासी सुत भयो पुनीता। सगले को लियो जारे, कवन पराध बतावो अपने। मिथ्या मोह मगनारे, आयो साम नानक ओट हर की। लीजै पूजा पसारे।

अवर दिन काहू काज न लाए, सो दिन मोको दीजे प्रभ जियो, जा दिन हर जस गाए रहाओ। पुत्र कलत्र गृह देख पसारा, इसी मैं उर जाए, माया मद चाख पए उदमाते, हर हर कबो न गाए। एह बिद खोजी बहु प्रकारा, बिन संतन नहीं पाए, तुम दा तार वड्डे प्रभ समरथ, मांगन कौ दान आए। त्याग्यो सगला मान महत्ता, दास रेण शरण आए, कहो नानक हर मिल पए एक, महा आनंद सुख पाए। मारू महला पंजवा, कवन थान तीरियो है नामा, कवन बस्त अहंकारा, कवन चिहन सुनि ऊपर शोहयो, मुखते सुन कर गारा। सुनो रे तू कौन, कहां ते आयो, एती ना जानो केती क मुद्दत, चलते खबर ना पायो रहाओ। सहनशील पवन यार पानी, बसदा खिमा ने प्राते, पंच तत् मिल पयो संजोगा, इन मैं कमन दुराते। जिन रच रचिया पुरख विधाता, नाले हों मैं पाई, जन्म मरण उस ही कौ है रे, ओहा आवै जाई। वर्ण चिहन नाही किछ रचना, मिथ्या सगल पसारा, पंत नानक जब खेल उजारा, तब एक है एक अंकारा। मारू महला पंजवा, मान मोहवर लोभ विकारा, बियो चीतना कालेओ, नाम रतन गुणा हर वणजे, वा लाद वखर लै चालेओ। सेवक की ओड़क निभी प्रीत, जीवत साहेब सेवयो अपना, चलते राख्यो चीत रहाओ। जैसी आज्ञा कीनी ठाकरो, तिस्ते मुख नहीं मोरयो, सहजा नंद रखियो गृह पीतर, उठ उवाहू कौ दौरयो। आज्ञा मैं भूख सोई कर सूखा, सो घर खनी जान्यो, जो जो हुक्म पयो साहिब का, सो माथै ले मान्यो। पयो कृपाल ठाकुर सेवक कौ, सवरे हल्त पलाता, तन सेवक सफल ओह आया, जिन नानक खसम पछाता। मारू महला पंजवा, खुलिया कर्म कृपा पई ठाकुर, कीर्तन हर हर गाई, श्रमथा का पाए बिश्रामा, मिटकई सगली ताई। अब मोहे जीवन पदवी पाई, चीत आयो मन पुरख विधाता, संतन की शरणाई रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल बैर आई, सद हजूर हाजर है नाजर, कतै न पयो दूराई। सुख शीतल सरदा सा पूरी, होए संत सहाई, पावन पतत किए खिन पीतर, मैं मां कथन न जाई। निरपौ पै सगल पै खोए, गोबिंद चरण उटाई, नानक जस गावै ठाकर का, रहन दिन सलिवलाई। मारू महला पंजवा, जो समरथ सर्व गुण नायक, तिसको कबो न गाव सिरे, छोड़ जाए खिन पीतर ता कौ, ओआ कौ फिर ताव सिरे। अपने प्रभ कौ क्यों ना समार सरे, बैरी संग रंग रस रचिया, तिस्यों जियरा जार सरे रहाओ। जा कै नाम सुने जम छोडे, ताकि सर न पाव सरे, काड़ दे स्याल बपरे कौ, ताकि ओ टिकाव सरे। जिसका जास सुनत पवतरी है, ता स्यो रंग ना लाव सरे, थोरी बात अल्प सुपने की, बहुर बहुर अटकाव सरे। पयो प्रसाद कृपा निध ठाकर, संत संग पत पाई, कहो नानक त्रै गुण प्रम छूटा, जव प्र पय सहाई। मारू महला पंजवा, अंतरजामी सब जाने, तिस्ते कहां दुलारे हो, हस्त पाव चरे खिन पीतर, अग्न संग लै जा रहे हो। मूड़े तै मंते राम बिसारे हो, लून खाए करे हराम खोरी, पेखत नैन बिदारे हो रहाओ। असाध रोग उपजो तन पीतर, टरत ना काहू टारे हो, प्रभ बिसरत महा दुख पायो, एहो नानक तत् बिचारे हो।
ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਚੀਤ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨੀਤਾ ਨੀਤ। ਤਿਸ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਉ, ਆਦ ਮਦ ਅੰਤ ਹੈ ਸੋਉ। ਸੰਤਨ ਕੀ ਓਟ ਆਪੇ ਆਪ ਰਹਾਉ, ਜਾਂ ਕੈ ਵਸ ਹੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਗਏ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਤੀਜਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਦਾਤਾ, ਤੁਮ ਕਾਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਅਗਿਆਨਥ। ਹੋਛਾ ਮਦ ਚਾਖ ਹੋਏ ਤੁਮ ਬਾਵਰ, ਦੁਲਭ ਜਨਮ ਆਕਾਰਥ। ਹਰੇ ਨਰ ਐਸੀ ਕਰੈ ਅਯਾਨਥ, ਤਜ ਸਾਰੰਗ ਧਰ ਭ੍ਰਮ ਤੂੰ ਭੂਲਾ। ਮੋਹੇ ਲਪਟਿਓ ਦਾਸੀ ਸੰਗਸਾਨਥ, ਰਹਾਉ ਧਰਣੀ ਧਰ ਤਿਆਗ। ਨੀਚ ਕੁਲ ਸੇਵੈ ਹਾਂ ਕਰਤ ਬਿਹਾਵਥ। ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਅਗਿਆਨੀ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਕਹਾਵਤ। ਸਤ ਹੋਤਾ ਅਸਤ ਕਰ ਮਾਨਿਆ, ਜੋ ਬਿਨਸਤ ਸੋ ਨਿਚਰ ਜਾਨਥ। ਪਰ ਕੀ ਕਹੋ ਆਪਣੀ ਕਰ ਪਕਰੀ, ਐਸੇ ਭੂਲ ਭੁਲਾਨਥ। ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਸਭ ਏਕੈ ਨਾਮ ਤਰਾਨਥ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਣੈ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਾਨਥ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਪਤ ਕਰਤਾ ਸੰਗ ਸੋ ਪ੍ਰਭ। ਡਹਿਕਾਵੇ ਮਨੁੱਖ ਆਏ, ਵਿਸਾਰ ਹਰ ਜਿਉ ਬਿਖੈ ਭੋਗੈ, ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਲ ਲਾਏ। ਰੇ ਨਰ ਕਾਏ ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਾਮ ਗਰਦਪ। ਤੁਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਰਮ ਰਾਏ, ਰਹਾਓ ਬਿਕਾਰ ਪਾਥਰ ਗਲੈ ਬਾਂਧੇ। ਨਿੰਦ ਪੋਟ ਸਿਰਾਏ, ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਮੁੰਦ ਲੰਘਣਾ, ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ

पूर्ण अत्र त्याग आए सहज समाध सुभाए हर भंडार हाथ आया नानक गुरते पाया। मारू महला पंजवा कर छेवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद छोड़ सगल सियाण पा मिलसा त्याग गुमान अवर सब किश मिथिया रसना राम राम वखान। मेरे मन करन सुन हर नाम मिटह अग तेरे जन्म जन्म के कवन बपरो जाम। रहाओ दुख दीन ना पाओ ब्यापै मिले सुख विश्राम। गुर प्रसाद नानक बखाना हर भजन तत् ज्ञान। मारू महला पंजवा जिन्नी नाम विसारिया से होत देखे खेहे पुत्र मित्र बिलास बनता टूटते ए नेहे। मेरे मन नाम नित नित लेहे जलत नाही अग्न सागर सूख मंतन देहे। रहाओ बिरख छाया जैसे बिनसत पवन झूलत में है हर भगत दृढ़ मिल साध नानक तेरा काम आवत ए है। मारू महला पंजवा पुरख पूर्ण सुख है दाता संग बस्तो नीत मरे ना आवे ना जाए बिनसै व्यापत उसन ना सीत। मेरे मन नाम स्यों कर प्रीत चेत मन में हर हर निदाना एह निर्मल रीत। रहाओ कृपाल दयाल गोपाल गोविंद जो जपै ते सीध नवल नवतन चतर सुंदर मन नानक ते संग बीद। मारू महला पंजवा चलत बैस्त सोवत जागत गुरमंत्र हृदय चितार चरण सरन पज संग साधु भव सागर उतरै पार। मेरे मन नाम हृदय तार कर प्रीत मन तन लाए हर स्यों अवर सगल विसार। रहाओ जियो मन तन प्राण प्रभ के तू अपने आप निवार गोविंद पज सब स्वार्थ पूरे नानक कवो नाहार। मारू महला पंजवा तज आप बिनसी ताप रेण साधु थियो तिसे प्राप्त नाम तेरा कर कृपा जिस दियो। मेरे मन नाम अमृत पियो आन साध विसार होचे अमर जुग जुग जियो। रहाओ नाम एक रस रंग नामा नाम लागी लियो मीत साजन सखा बंदप हर एक नानक कियो। मारू महला पंजवा प्रतपाल माता उदर राखै लगन देत ना सेक सोई स्वामी इहां राखै बूध बूझ बुद्ध बबेक। मेरे मन नाम की कर टेक तिसे बूझ जंतु किया प्रभ करण कारण एक। रहाओ चेत मन में तज सियाणप छोड़ सगले पेख सिमर हर हर सदा नानक तरे कई अनेक। मारू महला पंजवा पतत पावन नाम

साध संगत गुण उचारण हर नाम अमृत पाथ करो कृपा मुरार माधव सुन नानक जी वै गाथ मारू अंजलि महला पंजवां कर सतवां एको अंकार सतगुर प्रसाद संजोग विजोग तुरों ही हुआ पंच तात कर पुतला किया साहे कै फुरमायड़ जी देही विच जियो आए पया जिथे अगन पखे पड़हारे ऊर्द मुख मह गोबारे सास सास माले सोई उथे खसम छडाए लया विचों गरबै निकल आया खसम सार दुनी चितलाया आवै जाए पवाई है जोनी रहना किथी थाए पया मेहरवान रख लयन आपे जी जंत सब तिसके थापे जन पदार्थ जिन चलिया नानक आया सो परवान थिया मारू महला पंजवा वैदो ना वाई पहनो ना पाई एको सहाई राम हे कीता जिसो होवै पापा मलो धोवै सो सिमरो प्रधान हे कटकटे वासी सर्व निवासी अस्थिर जाका थान है आवै ना जावै संगे समावै पूर्ण जाका काम है भगत जना कौ राखण हारा संत जीवै जब प्राण आधारा करण कारण समर्थ स्वामी नानक तिस कुर्बान है एक ओवंकार सतगुर प्रसाद मारू महला नावा हर को नाम सदा सुखदाई जां कहो सिमर अजा मल उदरियो गन का हूं गत पाई रहाओ पंचाली कौ राज सभा में राम नाम सुदयाई ताको दुख हरियो करना मैं अपनी पैज बढ़ाई जेह नर जस कृपा निध गायो ताको पयो सहाई कहो नानक मैं ही परोसे गई आन सरनाई मारू महला नावा अब मैं कहां करो री माई सगल जन्म बिख्यन स्यों खोया सिमरियो नाहे कनाई रहाओ काल फास जब घर मैं मिली तेह सुध सब बिसराई राम नाम बिन या संकट मैं को अब होत सहाई जो संपत अपनी कर मानी छन मैं पई पराई कहो नानक यह सोच रही मन हर जस कब हूं ना गाई मारू महला नावा माई मैं मन को मान ना त्याग्यो माया के मद जन्म सिरायो राम भजन नहीं लाग्यो रहाओ जम को डंड परयो सिर ऊपर तब सोब तै जाग्यो कहां हो तो अब कै पछताए छूट तो नाहन भाग्यो एह चिंता उपजी घट मैं जब गुर चरणन अनुराग्यो सफल जन्म नानक तब हुआ जाओ प्रभ जस

ना जाना सियाना सदा साहेब कह रंगे राता अंदन नाम वखाना। बाबा मूर्ख हां नावें बल जाओ तू करता।

आओ चरण तले उगाहे बैसियो श्रम ना रहे हो शरीर महासागर ने व्यापै खने उतरियो तीर चंदन अगर कपूर लेपनो ते संगे नहीं प्रीत बिष्टा मूत्र खोद तिल तिल मन ना मनी विपरीत ऊच नीच बेकार सुकृत संलग्न सब सुख छतर मित्र सतर ना कशु जान सर्व जी समत कर प्रगास प्रचंड प्रगटयो अंधकार बिनास पवित्र अपवित्र है करण लागे मन ना पयो बेखाद सीत मंद सुगंध चलयो सर्व थान समान जहां साक्ष तहां लागयो तिल ना शंका मान सुभाए अपाए जो निकट आवे सीत ताका जाए आप पर का कश ना जाने सदा सह सुभाए चरण शरण सनाथ यो मन रंग राते लाल गोपाल गुण नित।

सोई सोहेला पालिया। ग्रह राज में नरको दास करोदा, बहुविध वेद पाठ सब सोदा। देही मैं जो रह अलिपता, तिस जन की पूर्ण कहली है। जागत सूता परम विगुता, बिन गुर मुक्त ना होई है मीता। साध संग तुटे हो बंधन, एको एक निहाली है। कर्म करे ता बंदा, नह करे ता निंदा। मोह मगन मन व्याप्या चिंदा, गुर प्रसाद सुख दुख समझाने। घट घट राम हाली है, संसार में सहसा व्यापै। अकथ कथा गोचर नहीं जापै, जिसे बुझाए सोई बुझै। ओ बालक वांगी पाली है, छोड़ बह तो छूटै नाही। जो सिंचै तो पौ मन माही। इस ही मह जिसकी पत राखै, तिस साधु चौर टाली है। जो सूरा तिस ही होए मरना, जो भागै तिस जोनी फिरना। जो वरताए सोई पल मानै, बुझ हुक्मै दुरमत जाली है। जित जित लावै ते तित लगना, कर कर वेखै अपने जचना। नानके पूर्ण सुखदा ते, तू देहता नाम समाली है। मारू महला पंजवां, बिरखै हेठ सब जंत इकट्ठे। एक तत्ते एक बोलन मिठे, अस्त्या दोत भया उठ चले। ज्यो ज्यो औध विहानियां, पाप करेंदण सर पर मुठे। अजरा ईल फड़े फड़ कुठे, दोजग पाए सृजनहार। लेखा मंगै बाणिया, संग न कोई भैया बेबा। माल जोबन धन छोड़ वंजेसा, करण करीम ना जातो करता। तिल पीड़े जो कहानिया, खुश खुश लैंदा वस्त पराई। वेखै सुने तेरे नाल खुदाई, दुनिया लभ पया खात अंदर। अगली गल ना जानिया, जम जम मरै मरै फिर जम्मै। बहुत सजाए

आपे पौन पानी बेसंतर आपे मेल मिलाई है, आपे सस सूरा पूरो पूरा आपे ज्ञान त्यान गुरसूरा, काल जाल जम जो है ना साकै साचे सुन लिवलाई है, आपे पुरख आपे ही नारी आपे पासा आपे सारी, आपे पिड़ बांधी जा खेल आपे कीमत पाई है, आपे पवर फुल फल तारवर आपे जल थल सागर सरवर, आपे मशकश करनी कर तेरा रूप ना लखना जाई है, आपे दिनस आपे ही रैनी आप तीजे गुर की बैनी, आद जुगाद अनाहद अंदनो कट कट शब्द रजाई है, आपे रतना नूपा मोलो आपे परखे पूरा तोलो, आपे किस ही कस बख्से आपे दे लै पाई है, आपे तनख आपे सरबाणा आपे सुगण स्वरूप सियाणा, कहता बगता सुनता सोई आपे बणत बनाई है, पौन गुरु पाणी पित जाता उधर संजोगी धरती माता, रैन दिन सदोए दाई दाया जाखे लैखे लाई है, आपे मछली आपे जाला आपे गऊ आपे रखवाला, सर्ब जिया जग जो तुम्हारी जैसी प्र फुरमाई है, आपे जोगी आपे भोगी आपे रसिया परम संजोगी, आपे वे बाणी निरंकारी निरपव ताड़ी लाई है, खाणी बाणी तुझे समाणी जो दिस सब आवन जानी, सही साह सचे व्यापारी सदगुर बूझ बुझाई है, शब्द बुझाए सदगुर पूरा सर्व कला साचे परपूरा, अफरियो वे प्रवाहो सदा तू ना तिस दिल ना तुमाई है, काल बिकाल पहे देवाने शब्द सहज रस अंतर माने, आपे मुक्त तृप्त वरदाता भगत पाए मन पाई है, आप निरालम गुरगम ज्ञाना जो दिसै तुझ माहे समाना, नानक नीच

तिल ज्यों पीड़ी, मात पिता कलत्र सुत बेली नाही, बिन हर रस मुक्त ना की ना है। मीत सखे के ते जग माही, बिन गुर परमेश्वर कोई नाही, गुर की सेवा मुक्त परायण, अंदन कीर्तन की ना है। कूड़ छोड़ साचे कौ तावो, जो इच्छो सोई फल पावो, साच वखर के वापारी विरले, ले लाहा सौदा की ना है। हर हर नाम वखर ले चलो, दर्शन पावो सहज महलो, गुरमुख खोज लह जन पूरे, इउं समदर्शी चीना है। प्रभ बेअंत गुरमत को पावै, गुर कै शब्द मन को समझावै, सतगुर की बाणी सत सत कर मानो, इउं आत्म रामै लीना है। नारद सारद सेवक तेरे, त्रिपवन सेवक वडो वडेरे, सब तेरी कुदरत तू सिर सिर दाता, सब तेरो कारण कीना है। एक दर सेवै दर्द वंजाए, कोई दर गै पहंदे सतगुरु छड़ाए, हाँ मैं बंधन सतगुर तोड़े, चित चंचल चलना दीना है। सतगुर मिलो चीनो बिदसाई, जित प्रभ पावो गणत ना काई, हाँ मैं

जो जन्मै ते सर पर मरना किरत पया सिर साहा हे। संजोग वियोग मेरा प्रभ की है, सृष्टि उपाय दुखा सुख दिए। दुख सुख ही ते पय निराले, गुरमुख शीरस नाहा हे। नीके साचे के वापारी, ससव दालै गुर विचारी। सच्चा वखर जिस तन पलै, सब सच्चै ओ महा हे। काची समी तोटा आवै, गुरमुख वणज करे प्रभावै। पूंजी साबत रास सलामत, चूका जमका फाहा हे। सबको बोलै अपन भाणे, मनमुख दूजे बोल न जाने। अंदले कीमत अंदली बोली, आए गया दुखता है। दुख में जन्मै

ना सोच संजम तुलसी माला, गोपी का न गऊ ग्वाला, तंत मंत पाखंड ना कोई, ना को वंश वजाएदा, कर्म धर्म

नहीं जियो ना जिंदो, ना तद गोरख ना माशिंदो, ना तद ज्ञान ध्यान कुल ओपत, ना को गणत गणाएंदा। वर्ण भेख नहीं ब्राह्मण खत्री, देव ना देहरा गौ गायत्री, होम जग नहीं तीर्थ नावन, ना को पूजा लाएंदा। ना को मुल्ला ना को काजी, ना को सेख मसाए कहाजी, रैयत राव ना हो मैं दुनिया, ना को कहन कहाएंदा। भाव ना भगती ना सिव सकती, साजन मीत बिंद नहीं रखती, आपे सहो आपे वनजारा, साचे एहो पाएंदा। वेदक तेवना सिमरत शास्त, पाठ पुराण उदय नहीं आस्त, कहिता बगता आपा गोचर, आपे लख लखाएंदा। जात सपाणा ता जगतो पाया, बाज कला आडान रहाया, ब्रह्मा विष्णु महेश्यो पाए, माया मोह वधाएंदा। विरले कहो गुर शब्द सुनाया, कर कर देखे हुक्म सवाया, खंड ब्रह्मांड पताल आरंभे, गुप्तो प्रगटी आएंदा। ता का अंत न जाने कोई, पूरे गुरते सोजी होई, नानक साच रते बिस्मादी, बिस्म पए गुण गाएंदा। मारू महला पहला, आपे आपो पाए निराला, साचा थान की ओ दयाला, पौन पानी अग्नि का बंधन, काया कोट रचाएंदा। नौकर थापे थापन हार है, दसवें वासा लख्या पार है, सायर सप्त परे जल निर्मल, गुरमुख मैल न लाएंदा। राव सस दीपक ज्योत सबाई, आपे कर वेखै वडियाई, ज्योत स्वरूप सदा सुखदाता, सच्चे सोभा पाएंदा। गढ़ में हाट पटनवा पारा, पूरे तोल तोले वनजारा, आपे रतन वसाहे लेवे, आपे कीमत पाएंदा। कीमत पाई पावन।

आपे बख्श लह सुख पाए सद ही नाम निवासी है। एहो तम धरती शब्द बीजया पारा हर साचे सेती वणज वापारा सच धन जमया तोट ना आवै अंतर नाम निवासी है। हर जियो अवगण आरे नो गुण की जय आपे बख्श लह नाम दी जय गुरमुख होवै सो पत पाए इकत नाम निवासी है। अंतर हर तन समझ न होई गुरप्रसादी बूझै कोई गुरमुख होवै सो तन पाए सदी नाम निवासी है। अनलवाओ परम पुलाई माया मोहे सो दना काई मनमुख अंधे किशु ना सूझै गुरमत नाम प्रगासी है। मनमुख हौं मैं माया सूते अपना कर ना संभालै अंत विगूते पर निंदा करै बो चिंता जाले दुखे दुख निवासी है। आपे करते कार कराई आपे गुरमुख दे बुझाई नानक नाम रते मन निर्मल नामे नाम सवारी है। मारू महला तीजा एको सेवी सदा थिर साचा दूजे लागा सब जग काचा गुरमती सदा सच सालाही साचे ही सच पति जय है। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जाता आपे लाए लय जग जीवन दाता आपे बख्शे दे वड़े आई गुर

बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, साचा पूरे सतगुर बूझ बुझाई, नामे राता पवित शरीरा, बिन नावे डूब मोए बिन नीरा, आवे जावे नाम नहीं बूझे, एक ना गुरमुख शब्द पछाता है, पूरे सतगुर बूझ बुझाई, बिन नावे मुक्त के नै ना पाई, नामे नाम मिले वड्याई, सहज रह रंग राता है, काया नगर टह टह टेरी, बिन शब्द चूके नहीं फेरी, साच सलाहे साच समावे, जिन गुरमुख एको जाता है, जिसनो नजर करे सो पाए, साचा शब्द वसै मन आए, नानक नाम रते निरंकारी, दर साचे साच पछाता है, मारू सोल है तीजा, आपे करता सब जिस करना, जी जंत सब तेरी सरना, आपे गुप्त वरतै सब यंत्र, गुर कै शब्द पछाता है, हर के भगत भरे भंडारा, आपे बख्शे शब्द विचारा, जो तुद पावै सोई करसै, सच्चे सिओ मन राता है, आपे हीरा रतना आपे हीरा रतना मोलो, आपे नगरी तोले तोलो, जी जंत सब सरन तुम्हारी, कर कृपा आप पछाता है, जिसनो नदर होवे तुर तेरी, मरे न जमे चूके फेरी, साचे गुण गावे दिन राती, जुजगु एको जाता है, माया मोहे सब जगतो पाया, ब्रह्मा विष्णु देव सवाया, जो तुद पाने से नाम लागे, ज्ञान मती पछाता है, पाप पुन वरत संसारा, हरख सोग सब दुख है पारा, गुरमुख होवे सो सुख पाए, जिन गुरमुख नाम पछाता है, कीर्तना कोई मेटन हारा, गुर कै शब्दे मुख द्वारा, पूर्व लिखिया सो फल पाया, जिन आप मार पछाता है, माया मोहे हर स्यों चेतना लागे, दूजे पाए घना दुखिया गै, मनमुख परम पुले पेख तारी, अंतकाल पछताता है, हर कै पाणे हर गुण गाए, सब किलव काटे दुख सबाए, हर निर्मल निर्मल है बाणी, हर सेती मन राता है, जिसनो नजर करे सो गुण निध पाए, हम मैं मेरा ठाक रहाए, गुण अवगुण

किस ही जोर दीवान माया का, मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई, तू करते राख मैं निमाणी है। निमाणे मान करे तुद पावे, होर केती चख चख आवे जावे, जिनका पख करे तू स्वामी, तिनकी ऊपर गल तुद आनी है। हर हर नाम जिन्नी सदा ते आया, तिन्नी गुर प्रसाद परम पद पाया, जिन हर सेव्या तिन सुख पाया, बिन सेवा पछो तानी है। तू सब मैं वरतै हर जगन्नाथ, सो हर जपै जिस गुर मस्तक हाथ, हर की शरण पया हर जापी, जन नानक दा दसाणी है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काला उपाय धरी जिन तरना, गगन रहाया हुक्मे चरना, अग्नि उपाय इंद्र में बाधी, सो प्रभ राखे पाई है। जी जंत कौर जिक संबाहे, करण कारण समराथ्या पाहे, खिन में थापो थापन हारा, सोई तेरा सहाई है। मात गर्व में जिन प्रतपालिया, सास ग्रास हुए संग संभालिया, सदा सदा जपिए सो प्रीतम, वड्डी जिस वडे आई है। सुल्तान खान करे खिन कीरे, गरीब निवाज करे प्रभ मीरे, गर्भ निवारण सर्व सुधारण, किश कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता, जिस मन वसिया हर भगवंता, मात पिता सुत बंध पाई, जिन ए सृष्टि उपाई है। प्रभ आए सरना पव नहीं करना, साध संगत नीचो है तरना, मन बच करम्या राधे करता, तिस नाही कदे सजाई है। गुण निदान मंत्र में रव्या, जन्म मरण की जोन न पव्या, दुख विनाश की आ सुख डेरा, जा तृप्त रहे आ गाई है। मीत हमारा सोई स्वामी, थांथनंतर अंतर जामी, सिमर सिमर स्वामी परमेश्वर, चिंता गणत मिटाई है। हर का नाम कोट लख बाहा, हर जस कीर्तन संग तंता, ज्ञान खड़ग कर कृपा दीना, दूत मारे कर ताई है। हर का जाप जपो जप जपने, जीत आवो वसो कर अपने, लख चौरासी नरक ना देखो, रसक रसक गुण गाई है। खंड ब्रह्मांड उदाहरण हारा, ऊंच अथाहो अगम अपारा, जिसनो कृपा करे प्रभ अपनी, सो जंत सहत आई है। बंधन तोड़ लिए प्रभ मोले, कर कृपा कीने कर गोले, अनहद ऋण चुनकार सहज तुनो, साची कार कमाई है। मन प्रतीत बनी प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में शोभ सुहाई है। जय जय कार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईश, तिस बिन दूजा अवर ना दिस, एका जगत सबाई है। सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन दाता, सिमर सिमर जीवै जन तेरे, एक अंकार समाई है। भक्त जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुनी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, संगी जोगी नार लपटाणी, उर्ज रही रंग रसमाणी, किरत संजोगी पे एकत्रा, करते भोग बिलासा है। जो पिर करे सो तन तत् मन, पिर तने सिंगार रखे संगन, मिल एकत्र वसै दिन राती, प्रयो दे तने दिलासा है। धन मांगे प्रयो बोबे तावे, जो पावे सो आन दिखावे, एक वस्त को पहुँच ना साके, तन रहती भूख प्यासा है। तन करे बिनो दो कर जोरे, प्रे परदेस ना जाहो वसो कर मोरे, ऐसा बणज करो गृह पीतर, जित उतरे भूख प्यासा है।
सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा, पही कृपा नानक सतसंगे, तौ धन पिर आनंद उलासा है, तन अंधी पिर चपरसियाना, पंच तत्कार चन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है, तन कह तू वस मैं नाले, प्रे सुखवासी बाल गोपाले, तुझे बिना हो कित ही ना लेख, वचन देहे छोड़ ना जासा है, फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह पारो ठाकरो जिस कान ना शंदा, जिचर रख है तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता उड़ सिदासा है, जाओ प्रे बचन कह तन साचे, तन कछु ना समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा है, आई आ गया पिरों बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊड़ सिधायो छूटर माटी, देख नानक मिथन मुहासा है, हरे मन लोभी सुन मन मेरे, सतगुर सेव दिन रात सदेरे, बिन सतगुर पचबुए साकत, निगुरे गल जमफासा है, मन मुख आवै मन मुख जावै, मन मुख फिर चोटा खावै, जितने नरक से मन मुख भोगै, गुरमुख लेप ना मासा है, गुरमुख सोए जे हर जियो पाया, तिस कौन मिटावै जे प्रभ पैराया, सदा आनंद करे आनंदी, जे सिर पाओ पया गल खासा है, हाँ बलिहारी सतगुर पूरे, शरण के दाते बचन के सूरे, ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता, विछड़ ना कत ही जासा है, गुण निदान किश कीम ना पाई, कट कट पूर रहे हो सब ठाई, नानक शरण दीन दुख भंजन, हौरेण तेरे जो दासा है। मारू सोल है महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, करे आनंद आनंदी मेरा, कटकट पूर्ण सिर सिर नबेरा, सिर साहा कै सच्चा साहेब, अवर नाही को दूजा है, हरखवंत अनंत दयाला, प्रगट रहे ओ प्रभ सरब्यो जाला, रूप करे कर वेखै विकसै, आपे ही आप पूजा है, आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावै दिन राती, आपे सुन सुन पीजा है, साचा तख्त सच्ची पातशाही, सच खजीना साचा साही, आपे सच तारियो सब साचा, सच्चे सच वर्ती जाहे, सचत पावस सच्चे केरा, साचा थान सदा प्रभ तेरा, सच्ची कुदरत सच्ची बाणी, सच साहेब सुख की जाहे, एको आप तू है वड राजा, हुक्म सच्चे के पूरे काजा, अंतर बाहर सब के जाने, आपे ही आप तीजा है, तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज कर तेरा, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होवे, देह दान सब सह जंत लोवे, टोटना आवे पूर भंडार, तृप्त रहे आगी जाहे, जाचै सिद्ध साधक बनवासी, जाचै जति सती सुखवासी, एकदा तार सगल है जाचक, देह दान सृष्टि जाहे, करे भगत हर रंग अपारा, खिन मै थापो थापन हारा, पारो तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगती जाहे, जिस देह दर्श सोई तुद जाने, ओह गुर कै शब्द सदा रंग माने, चतर स्वरूप से आना सोई, जो मन तेरे पावी जाहे, जिस चीत आवै सो वे प्रवाह, जिस चीत आवै सो साचा सहा,
ਜਿਸ ਚੀਤ ਆਵੈ ਤਿਸ ਪਹੁ ਕਿਹਾ, ਅਵਰ ਕਹਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਾਹੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੀ ਅੰਤਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਲੈ ਤੂਟਾ ਗੰਡਾ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਹਿਰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ, ਅਮਿਓ ਚੋਲ ਚੋਲ ਪੀ ਜਾਹੇ। ਮਰੈ ਨਾਹੀ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਅਮਰ ਭਇਆ ਅਬਨਾਸੀ ਥੀਵੈ। ਨਾ ਕੋ ਆਵੈ ਨਾ ਕੋ ਜਾਵੈ, ਗੁਰਦੂਰ ਕੀ ਆ ਪਰਮੀ ਜਾਹੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੇ ਲਾਗਾ ਪੂਰੇ ਮਹੇ ਸਮਾਣੀ। ਚੜੈ ਸਵਾਇਆ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੰਗਾ, ਕਟੈ ਨਾਹੀ ਤੋਲੀ ਜਾਹੇ। ਬਾਰਹਾ ਕੰਚਨ ਸੁਧ ਕਰਾਇਆ, ਨਦਰ ਸਰਾਫ ਵਨੀਸ਼ ਚੜਾਇਆ। ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾਇਆ ਸਰਾਫੀ, ਫਿਰ ਨਾਹੀ ਤਾਈ ਜਾਹੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਦੇਖ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਮਨ ਭੀ ਜਾਹੇ। ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਲਹੇ, ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ। ਗੁਰਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਖਟ ਕਰਮਾ, ਗੁਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਕਿਲ ਵਿਖ ਨਾਸੈ, ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਜਮ ਸੰਗ ਨਾ ਫਾਸੈ। ਗੁਰ ਸਿਮਰਤ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਟੇ ਅਪਮਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ, ਗੁਰ ਕਰਦਾ ਨਿਤ ਜੀ ਦਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੈ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟ ਹਰ ਜਸ ਮੁਖ ਭਣੀਐ। ਕਲ ਕਲੇਸ ਮਿਟਾਏ ਸਤਿਗੁਰ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਦੇਵੈ ਮਾਨਾ ਹੈ। ਆਗਮਾ ਗੋਚਰ ਗੁਰੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਭੂਲਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਕ ਉਹ ਬਿਗਨਾ ਭਗਤੀ, ਹਰ ਪੂਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਗਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਸਭਨੀ ਠਾਈ, ਜਲ ਥਲ ਪੂਰ ਰਹਿਆ ਗੋਸਾਈ। ਊਚ ਊਨ ਸਭ ਏਕ ਸਮਾਨਾ, ਮਨ ਲਾਗਾ ਸਹਿ ਧਿਆਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬੁਝਾਈ, ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹਿ ਜੋ ਹੈ ਮਾਈ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੀਆ ਗੁਰਪੂਰੈ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਪਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਮਾਏ ਸਮਾਣੀ, ਆਪ ਸੁਣੀ ਤੈ ਆਪ ਵਖਾਣੀ। ਜਿਨ ਜਿਨ ਜਪੀ ਤੇਈ ਸਭ ਨਿਸਤਰੇ, ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਨੇ ਚਲਥਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣੈ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪਣ ਭਾਣੈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਜਾਚੈ ਜਨ ਤੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿ ਕੁਰਬਾਨਾ ਹੈ। ਮਾਰੂ ਸੋਲਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰੰਕਾਰਾ, ਸਮੈ ਵਰਤੈ ਆਪ ਨਿਰਾਰਾ। ਵਰਨ ਜਾਤ ਚਿਹਨ ਕੋਈ, ਸਭ ਹੁਕਮੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟਿ ਉਪਾਇੰਦਾ। ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੂਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁਖ ਪਾਏਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਿਸ ਕਿਆ ਕਹੀਐ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਲਈਐ। ਜਿਸ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਸੋਈ ਭੁੱਲੈ, ਸੋ ਬੂਝੈ ਜਿਸੈ ਬੁਝਾਏਂਦਾ। ਹਰ ਸੋ ਕਾ ਨਗਰੇਹੋ ਕੀਆ, ਸੇ ਉਭਰੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣੀਆ। ਤ੍ਰਿਹੋ ਗੁਣਾ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਰਾਰਾ, ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਭਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਅਨਕ

कलयुग में कीर्तन परदाना, गुरमुख जपिए लाए ध्याना, आप तरह सगले कुल तारे, हर दरगह पत स्यों जाएंदा। खंड पताल दीप सब लोवा, सब काल वस आप प्रभ किया, निचल एक आप अविनाशी, सो निचल ज्योति तसै बुझाएंदा। हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बो भाती, फिर सरल सल समाएंदा। एक जाचक मंगै दान द्वारै, जां प्रभ पावै तां कृपा धारै, देहो दरस जित मंत्र पतासै, हर कीर्तन मन ठहराएंदा। रूड़ो ठाकर कितै वस न आवै, हर सो किश करे जे हर क्या संता पावै, कीता लोड़न सोई करायन, दर फेर न कोई पाएंदा। जिथे औकट आए बंत है प्राणी, तिथे हर त्याई है सारंग पानी, जिथे पुत्र कलतर ना बेली कोई, तिथे हर आप छड़ाएंदा। वड्डा साहेब अगमा थाहा, क्यों मिलिए प्रवे प्रवाहा, काट सिलक जिस मार्ग पाए, सो विच संगत वासा पाएंदा। हुक्म बूझै सो सेवक कही है, बुरा भला दुए संसार सही है, हौ मैं जाए ता एको बूझै, सो गुरमुख सहि समाएंदा। हर के भगत सदा सुखवासी, बाल सुभाए अति तो दासी, अनक रंग करै बो भाती, जो पिता पूत लाडाएंदा। अगमा गोचर कीमत नहीं पाई, ता मिलिया जा ले मिलाई, गुरमुख प्रगट पाया तिन जन कहो, जिन तुर मस्तक लेख लिखाएंदा। तू आपे करता कारण करना, सृष्टि उपाय धरी सब तरना, जन नानक शरण पया हर द्वारै, हर भावै लाज रखाएंदा। मारू सोल हे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जो दिसै सो एको तू है, बाणी तेरी सरवणी सुनिया, दूजी अवर न जाप सकाई, सगल तुम्हारी धारणा, आप चितारे अपना किया, आपे आप आप प्रभथिया, आप उपाय रचियोन पासारा, आपे कटकट सारणा। एक उपाय वड़ दरबारी, एक उदासी एक करबारी।

जो जन हर का सेवको हर तुसकी कामी, दखणे महला पंजवा मुखो अलाय हब मरण पछाणन दो कोए, नानक तिन्ना खाक जिन्ना यकीना है कस्यो। महला पंजवा जान मसंदो मंज पछाणु को हेकड़ो, तैतन पड़दा ना है नानक जय गुर भेटिया। महला पंजवा मतड़ी कांड कुआ पाव तो मंदो पीवसा, मूतन प्रेमिया था पसन को सच्चा तनी पौड़ी। निरपव नाम विसारिया नाल माया रचा, आवै जाए पुवाई है बो जो नी नचा। बचन करे तै खिसक जाए, बोले सब कच्चा अंदरों थोथा कूड़ियार, कूड़ी सब खच्चा। वैर करे निर्वैर नाल झूठे लालचा, मारिया सच्चे पात साहे वेख तुर करमचा। जम दूती है हेरिया दुख ही मैं पचा, हुआ तपावस धर्म का नानक दर सच्चा। डखणे महला पंजवा पर बाते प्रब नाम जप, गुर के चरण ते आए जन्म मरण मल उतरै, सच्चे के गुण गाए। महला पंजवा देह अंधारी अंध सुनी नामे हुनिया, नानक सफल जन्म जय कट वुठा सच धनी। महला पंजवा लोयन लोई डेठ प्यास न बुझै मुंह कणी, नानक से अखड़िया बयान जिनी डसन दो मां पेरी पौड़ी। जिन जन गुरमुख सेवया तिन सब सुख पाई, ओ आप तरिया कोटंब स्यो सब जगत तराई। ओन हर नामा तन संचया सब तिखा बुझाई, ओन छड़े लालच दुनी के अंतर लिव लाई। ओस सदा सदा कर आनंद है हर सखा सहाई, ओन वैरी मित्र सब कीते आ सब नाल सुभाई। होवा ओही अल जग मैं गुर ज्ञान जपाई, पूर्व लिखिया पाया हर स्यों बन आई। डखणे महला पंजवा सच सुहावा कंडी है, कूड़े कूड़ी सोए नानक विरले जानी है। जिन सच पल्लै होए महला पंजवा, सज्जन मोख्या नूप अठे पहर निहाल सा। सुतड़ी सो सहु डेठो तैं सुपने हो खनिए, महला पंजवा। सज्जन सच परख मोख्या लावण थोथरा, मन मजाहू लख तुदो दूर ना सो पिरी पौड़ी। धरते आकाश पाताल है चंद सूर बिनासी, बाद साहा साहा उमराव खान टाहे डेरे जासी। रंग तुंग गरीब मस्त सब लोग सदासी, काजी सेख मसाए का सबे उठ जासी। पीर पैगंबर औलिए को थिर न रहासी, रोजा बाग नवाज कतेब विण बुझे सब जासी। लख चौरासी मेदनी सब आवै जासी, निहचल सच खुदाए एक खुदाए बंदा अबनासी। डखणे महला पंजवा डिठी हब टंडोल, हिक सबाज ना कोए आओ सज्जन तू मुख लग, मेरा तन मन ठंडा होए। महला पंजवा आस क्या सा बाहरा मुंह मन वड्डी आस, आस निराशा हिक तू हाँ बल बल बल गई आस। महला पंजवा विछोड़ा सुने दुख विण डिठे मरे ओद, बाज प्यारे अपने बिरही नाती रोद। पौड़ी तट तीर्थ देव देवालिया, केदार मथुरा काशी कोट ते तीसा देवते सन इंद्र जासी। सिमरत शास्त्र वेद चार खड़ दर्शमासी, पोथी पंडित गीत कवत कवते पी जासी। जति सती सन्यासिया सब कालै वासी, मन जोगी दे गंबरा जमै सन जासी। जो दिसै सो विनसना सब बिनस बिनासी, थिर पार ब्रह्म परमेश्वर सेवक थिर होसी। सलोक डखणे महला पंजवा सह नंगे नह नंग, भुखे लख ना भुखिया डुखे को ना डुख, नानक प्री पखंदो सुभ दिष्ट। महला पंजवा
ਸੁਖ ਸਮੂਹਾ ਭੋਗ ਭੂਮ ਸਬਾਈ ਕੋ ਤਣੀ ਨਾਨਕ ਹੱਬੋ ਰੋਗ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਾਮੇ ਹੂਣਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿਕ ਸਕੂ ਤੂੰ ਵਾਹੇ ਪਛਾਣੂ ਪੀ ਹਿਕ ਕਰ ਨਾਨਕ ਆਸੜੀ ਨਿਭਾਹੇ ਮਾਨਖ ਪਰਥਾਈ ਲਜੀਵ ਦੋ ਪੌੜੀ ਨਿਹਚਲ ਏਕ ਨਰਾਇਣੋ ਹਰਗਮਾ ਗਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਲਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਕੀਰਤਨ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰਮੁਖ ਗਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਹਰਾਦਾ ਦਇਆ ਧਰਮ ਤਪ ਨਿਹਚਲੋ ਜਿਸ ਕਰਮ ਲਿਖਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਟਲੈ ਨਾ ਟਲਾਦਾ ਨਿਹਚਲ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਜਨ ਬਚਨ ਨਿਹਚਲ ਗੁਰਸਾਧਾ ਜਿਨ ਕਉ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਿਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਆਰਾਦਾ ਸਲੋਕ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੋ ਡਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨ ਖੇ ਤਾਰਿੰਦ ਲੋਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰ ਸਿਉ ਰਤਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਥੈ ਕੋਇ ਕਥਨ ਨਾਉ ਸੁਣਨ ਦੋ ਮਾਂ ਪਿਰੀ ਮੂੰਹ ਜਲਾਉ ਤਥ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰੀ ਪਸੰਦੋ ਹਰਿਓ ਥੀ ਉਸ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ।

बोलत ही बड़ लाज, राम जे पाया राम ते भवे न बार बार रहाओ, झूठा जग डहक कना दिन दोए बर्तन की आस, राम उदक जेह जन पिया ते बौर न पई प्यास, गुर प्रसाद जे बूझे आया सा ते भया निरास, सब सच नदरी आया जो आतुम भया उदास, राम नाम रस चाखिया हर नामा हर तार, कहो कबीर कंचन पया प्रम गया समुन्द्र पार, उदक समुन्द सलल की साखिया नदी तरंग समावेंगे, सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे, बहुर हम काहे आवेंगे आमन जाना हुक्म तिसा का, हुक्मे बुझ समावेंगे रहाओ, जब चुके पंच तात की रचना ऐसे परम चुकावेंगे, दर्शन छोड़ पे समदर्शी एको नाम ते आवेंगे, जित हम लाए तिथि लागे तैसे कर्म कमावेंगे, हर जी कृपा करे जाओ अपनी तो गुर के शब्द समावेंगे, जीवत मरो मरो फिर जीवो, जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुन रप जन्म ना होई, कहो कबीर जो नाम समाने सुन रया लिव सोई, जाओ तुम को दूर करत हो तो तुम मुक्त बतावो, एक अनेक होए रहो सगल मैं अब कैसे परमावो, राम मोको तार कहां ले जई है, सो दो मुक्त कहां देव कैसी, कर प्रसाद मोहे पाई है रहाओ, तारन तरन तवे लग कही है जब लग तत न जानिया, अब तो बिमल भय कट ही मैं कह कबीर मन मानिया, जिन गढ़ कोट किए कंचन के छोड़ गया सो रावन, काहे की जित है मन पावन, जब जम आए केस ते पकड़े तै हर को नाम छावन रहाओ, काल अकाल खसम का कीना एहो परपंच बधावन, कह कबीर ते अंते मुक्ते जिन हृदय राम रसायन, देही गावा जियो तर महतो बसे पंच किरसाना, नैनू नगटू श्रमनू रसपत इंद्री कया न माना, बाबा अब ना बसो एह गाओ, करी करी का लेखा मांगे कायथ चेतू नाओ रहाओ, धर्म राय जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, पंच किरसान वा पा गए लै बांधे हो जियो दरबारी, कह कबीर सुनो रे संतो खेत ही करो नबेरा, अब की बार बख्श बंदे को बहोर ना पाओ जल फेरा, राग मारू बाणी कबीर जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अन पाओ किने ना देखिया बैरागी अड़े, बिन पै अन पाओ होए वना हम बै, सहो हदूर देखे ता पाओ पवे बैरागी अड़े, हुक्मै बूझे ता निरपाओ होए वना हम बै, हर पाखंड ना की जाई बैरागी अड़े, पाखंड रता सब लोक बना हम बै, तृष्णा पासना छोड़ ही बैरागी अड़े, ममता जालिया पिंड बना हम बै, चिंता जाल तन जालिया बैरागी अड़े, जे मन मृतक होए बना हम बै, सतगुर बिन बैराग ना हो वही बैरागी अड़े, जे लोचे सब कोए बना हम बै, कर्म होवे सतगुर मिले बैरागी अड़े, सहजे पावे सोए वना हम्बे, कहो कबीर एक बेनती बैरागी अड़े, मोको पौजल पार उतार वना हम्बे, राजन कौन तुम्हारे आवे ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओ गरीब मोहे पावे रहाओ, हस्ती देख परम ते पूला श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध बिदर को पानो अमृत कर मैं मानिया, खीर समान साग मैं पाया गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकर अंध बिनोदी जातना काहू की मानी, सलोक कबीर गगन दमामा बाजेओ परयो निशा न काओ, खेत जो मांड्यो सूरमा अब जूजन को दाओ, सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छड़ै खेत, कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देओ जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद,
चार मुक्त चार सिद्ध मिलके दूले प्रभु की शरण परयो मुक्त भयो चौहु जुग जान्यो जस कीर्तन माथे शतर तरयो राजा राम जबत को ना तरयो गुरु उपदेश साध की संगत भगत भगता को नाम परयो रहाओ शंख चक्र माला तिलक बिराइत देख प्रताप जम डरयो निरपो पय राम बल गर्जत जन्म मरण संताप हिरयो अम्बरीक दियो अपह पद राज पीखन अध करयो नौनिध ठाकर दई सुदामै त्रु अटल अजहू न टरयो भगत हेत मारियो हरनाक्ष नरसिंह रूप होय देह धरयो नामा कह भगत बस केसव अजहू बल के द्वार खरो मारू कबीर जियो दीन बिसारियो रे दीवाने दीन बिसारियो रे पेट भरयो पशुआ जो सोयो मनुख जन्म है हारयो रहाओ साध संगतो कबहू नहीं कीनी रचियो तंदे झूठ स्वान सूकर बायस जेवै पटकत चालियो ऊठ आपस कौ दीर्घ कर जानै औरन कौ लग मात मनसा बाचा कर्म ना मैं देखे दोजक जात कामी क्रोधी चातरी बाजी गर्भे काम निंदा करते जन्म सिरानो कबहू ना सिमरियो राम कहे कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुक्त गवार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़सा दत किया अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अखड़ घड़िया तहा अपियो पिया मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृक्ष समान्या रहाओ अर्ध कौ अर्धया सर्द कौ सर्दया सलल कौ सलल समान आया बदत जय देव जय देव कौ रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन पापी जियारा लोभ करत है आज काल उठ जाहेगा रहाओ लालच लागे जन्म गवाया माया परम पुलाहेगा तन जोबन का गर्भ ना की जय कागद ज्यों गल जाहेगा जो जम आए केस गह पटके ता दिन किश ना बसाहेगा सिमरन भजन।

साज शब्द बिन कहो न छूट सो बिरथा जन्म भयो रहाओ। तन मह काम क्रोध हो ममता कठिन पीर अत भारी। गुरमुख राम जपो रस रसना इन बिद तर तू तारी। बहरे करन अगल पई होची शब्द सहज नहीं बूझिया। जन पदार्थ मन मुख हारिया बिन गुरे अंध न सूझिया। रह उदास आस निराशा सहि ध्यान बैरागी। प्रणमत नानक गुरमुख छूटस राम नाम लिव लागी। पहराओ महला पहला पूंडी चाल चरण कर खिसरे तुचा देह कुमलानी। नेत्री तुहंद करन पै बहरे मनमुख नाम ना जानी। अंदले क्या पाया जग आए राम हृदय नहीं गुर की सेवा। चाले मूल गवाए रहाओ जेहवा रंग नहीं हर राती। जब बोले तब फीके संत जना की निंदा व्यापस। पशु पहे कदे होहे नानीके अमृत का रस विरली पाया। सतगुर मेल मिलाए जब लग शब्द भेद नहीं आया। तब लग काल संताए अनको दर कर कबहू ना जानस। एको दर सचियारा गुर प्रसाद परम पद पाया। नानक कह विचारा पहरो महला पहला सगली रैन सोबत गलफाही। दिन से जंजाल गवाया खिन पल कड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगत उपाया मन रे क्यों छूट सुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस राम जपो गुणकारी रहाओ। ऊन दो कवल मन मुख मत होची। मन अंदे सिर तंदा काल बिकाल सदा सिर तेरे बिन्ना मैं गलफंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंदले शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया अंदलो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस दुर्मत ज्ञान में होने। शब्द विचार राम रस चाखिया नानक साच पतीने। पहरो महला पहला गुर कै संग रह दिन राती। राम रसन रंग राता यवर न जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता सोजन ऐसा मैं मन पावे। आप मारे परम प्रराता गुर की कार कमावे रहाओ। अंतर बाहर पुरख निरंजन आद पुरखिया देसो। घट घट अंतर सर्ब निरंतर रव रहया सच वेसो। साच रते सच अमृत जेवा मिथ्या मैल नाराई। निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई। गुणी गुणी मिल लाह पावस गुरमुख नाम वडाई। सगले दुख मिटै गुरसेवा नानक नाम सखाई। पैरो महला पहला हिरदय नाम सर्ब तन धारण। गुर प्रसादी पाई है अमर पदार्थ ते कृतार्थ सहि ध्यान लिव लाई है। मन रे राम भगत चित लाई है। गुरमुख राम नाम जप हिरदय सह सेती कर जाई है रहाओ। परम भेद पौ कवो ना छूटस आवत जात ना जानी। बिन हर नाम को मुक्त ना पावस डूब मोए बिन पानी। तंदा कर तो सगली पत खोवस परम ना मिटस गवारा। बिन गुर शब्द मुक्त नहीं कभी अंदले तंत पसारा। अकुल निरंजन स्यो मन मानिया मन ही ते मन मूवा। अंतर बाहर एको जानिया नानक अवर ना दूवा। पहरो महला पहला जगन होम पुन ता पूजा देह दुखी ने दुख सह। राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह। राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले। बिन नामे नेफल मर भ्रमना रहाओ। पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म ते काल करे। बिन गुर शब्द मुक्त कहा प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे। डांड कमंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गवन अत भ्रमण करे। राम नाम बिन सांत न आवे जप हर हर नाम सो पार पर। जटा मुकुट तन भस्म लगाई
वस्त्र छोड़ तन नग्न पया, राम नाम बिन तृप्त न आवै, किरत कै बांधै पेख पया। जेते जी जंत जल थल महियल, जतर कदर तू सर्ब जिया। गुर प्रसाद राख ले जन को, हर रस नानक झोल पिया। राग पहरो महला तीजा, चौप दे कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जात का गर्व ना करियो कोई, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई। जात का गर्व ना कर, मूर्ख गावारा। इस गर्भ ते चल बहुत विकारा, रहाओ चारे वर्ण आख सब कोई। ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई, माटी एक सगल संसारा। बहुविध भांड है कड़े कुमारा, पंच तत् मिल देही काया कारा। घट वध को करे बिचारा, कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई। बिन सतगुर पेटे मुक्त ना होई, पैरो महला तीजा। जोगी गृही पंडित भेख तारी, ए सूते अपने अहंकारी। माया मद माता रहया सोए, जागत रहे ना मुसे कोए। रहाओ सो जागे जे सतगुर मिले, पंच दूत ओ वसकत करे। सो जागे जो तत् विचारे, आप मरे अवरा ने मारे। सो जागे जो एको जाने, पर किरत छोड़े तत् पछाणे। चहो वरना विच जागे कोए, जमे काले ते छूटे सोए। कहत नानक जन जागे सोए, ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए। पैरो महला तीजा, जां कहो राखै अपनी सरनाई। साचै लागै साचा फल पाई, रे जन कैस्यों करो पुकारा। हुक्मे होवा हुक्मे वर्तारा, रहाओ एहो आकार तेरा है तारा। खिर मैं बिनसै करत ना लागै बारा, कर प्रसाद एक खेल दिखाया। गुर कृपा ते परम पद पाया, कहत नानक मार जी वाले सोए। ऐसा पूजो परम ना पूलो कोए, पैरो महला तीजा। मैं कामण मेरा कंत करतार, जिहा कराए तिहा करी सिंगार। जात पावै ता करे भोग, तन मन साचे साहिब जोग। रहाओ उसत निंदा करे क्या कोई, जाया पे वरत एको सोई। गुर प्रसादी प्रेम कसाई, मिलोगी दयाल पंच शब्द बजाई। पंत नानक करे क्या कोई, जिसनो आ मिलावे सोए। पैरो महला तीजा, सो मुन जे मन की दुबदा मारे। दुबदा मार ब्रह्म बिचारे, इस मन को कोई खोजो पाई। मन खोजत नाम नौनद पाई, रहाओ मूल मोह कर करते जगतो पाया। ममता लाए परम पुलाया, इस मन ते सब पिंड पुराना। मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै। एहो मन जागै इस मन की दुबधा मरै। मन का सुभाव सदा बैरागी, समय वसै अतीत अनरागी। कहत नानक जो जाने पेओ, आद पुरख निरंजन देओ। पैरो महला तीजा, राम नाम जगत निस्तारा। पवजल पारो तारनहारा, गुर प्रसादी हर नाम समालो। सदी निभाए तेरे नाल, रहाओ

नदर करे सतगुरु मिलाए, नानक हिरदय नाम वसाए, पहरो महला तीजा। नामे उदरे सब जितने लो, गुरमुख जिन्ना प्राप्त होए। हर जियो अपनी कृपा करे, गुरमुख नाम वड्याई दे रहाओ। राम नाम जिन प्रीत प्यार, आप उदरे सब कुल उदाहरण हार। बिन नावें मनमुख।

प्रसाद परम पद पाया सब इच्छ पूजा मनहार रहाओ। सब मैं एको रव रहया गुरबिन बूझना पाए गुरमुख प्रगट हुआ मेरा हर प्रभ अंदन हर गुण गाए। सुखदाता हर एक है होर थे सुख ना पाहे सतगुरु जिनी ना सेवया दाता से अंत गए पछताहे। सतगुर सेव सदा सुख पाया फिर दुख ना लागे ताए नानक हर भगत प्राप्त होई ज्योति जो समाए। पैरव महला तीजा बाज गुरु जगत बौराना पूला चोटा खाई मर मर जम्मै सदा दुख पाए दर की खबर ना पाई। मेरे मन सदा रहो सतगुर की सरना हृदय हर नाम मीठा सद लागा गुर शब्दे पवजल तरना रहाओ। पेख करे बहुत चित डोले अंतर काम क्रोध अहंकार अंतर तिसा भूखयत बहुती भौकत फिरे दरबार। गुर कै शब्द मरे फिर जीवै तिनको मुख द्वार अंतर सांत सदा सुख होवै हर राख्या और तार। ज्यो तिस पावै तिवै चलावै करना किशु ना जाई नानक गुरमुख शब्द समाले राम नाम वड़ियाई। पहरो महला तीजा हमें माया मोहे खवाया दुख हटे दुख आए अंतर लोभ हलक दुख पारी बिन विवेक परमाए। मन मुख त्रिग जीवन संसार राम नाम सुपने नी चेतिया हर स्यों कदन लागे प्यार रहाओ। पशुआ कर्म करे नहीं बूझे कूड़ कमाणे कूड़ो होए सतगुर मिले ता उल्टी होवे खोज लह जन कोए। हर हर नाम हृदय सदवसिया पाया गुणी निदान गुर प्रसादी पूरा पाया चूका मन अभिमान। आपे करता करे कराए आपे मार्ग पाए आपे गुरमुख दे वड़ियाई नानक नाम समाए। पहरो महला तीजा मेरी पटिया लिखो हर गोविंद गोपाला दूजे पाए फाथे जमजाला सतगुर करे मेरी प्रतपाला हर सुखदाता मेरे नाला। गुर उपदेश प्रहलाद हर उचरे सासना ते बालको गम ना करे रहाओ। माता उपदेश है प्रहलाद प्यारे पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लियो उबारे। प्रहलाद कह सुनो मेरी माए राम नाम ना छोड़ा गुरदिया बुझाए। संडा मरका सब जाए पुकारे प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया प्रहलाद का राखा हुए रगराया। हाथ खड़ग करताया अत अहंकार हर तेरा कहां तुझ ले उबार। खिन मैं भयान रूप निकसिया थम्यो पाड़ हर नाक्ष नखी बिदारिया प्रहलाद लिया उबार। संत जना के हर जियो कार्ज सवारे प्रहलाद जन के एक ही कुल उधारे। गुर कै शब्द हमें बिखमारे नानक राम नाम संत निस्तारे। पहरो महला तीजा आपे दैत लाए दिते संत जना को आपे राखा सोई जो तेरी सदा सरनाई तिन मन दुख ना होई। जुग जुग भगता की रखदा आया दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने सब दे मेल मिलाया। रहाओ अंधन भगत करे दिन राती दुबदा सब देखोई सदा निर्मल है जो सच राते सच वस्या मन सोई। मूर्ख दुबदा पड़ है मूल ना पछाण है बिरथा जन्म गवाया। संत जना की निंदा करे दुष्ट दै चढ़ाया। प्रहलाद दुबदा ना पड़े हर नाम ना छोड़े डरे ना किसे दा डराया। संत जना का हर जियो राखा दैते काल नेड़ाया। अपनी पैज आपे राखे भगता दे वड़ियाई नानक हर नाक्ष नखी बिदारिया अंधे दर की खबर ना पाई।
राग पहराओ महला चौथा चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जन संत कर कृपा पग लायण गुर शब्दी हर पज सुरत समायण मेरे मन हर भज नाम नारायण हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख भव जल हर नाम तरायण रहाओ संगत साध मेल हर गायण गुरमति ले राम रसायण गुर साधु अमृत ज्ञान सर नायण सब किले विख पाप गए गावायण तू आपे करता सृष्ट तरायण जन नानक मेल तेरा दाद दसायण भैरव महला चौथा बोल हर नाम सफल सा करी गुर उपदेश सब दुख पर हरी मेरे मन हर भज नाम नर हरी कर कृपा मेलो गुरपूरा सत संगत संग सिंध पौतरी रहाओ जग जीवन त्याय मन हर सिमरी कोट कुटंतर तेरे पाप पर हरी सत संगत साध तूर मुख परी इशनान कियो अठसठ सुरसरी हम मूर्ख कव हर कृपा करी जन नानक तारियो तारण हरी पैरव महला चौथा सुकिरत करनी सार जप माली हृदय फेर चले तुद नाली हर हर नाम जपो बनवाली कर कृपा मिलो सतसंगत टूट गई माया जमजाली रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली तिस घड़ी है शब्द सच्ची टकसाली हर अगमा गोचर गुरअगम दिखाली विचकाया नगर लद्दा हर पाली हम बारक हर पिता प्रतपाली जन नानक तारो नदर निहाली पहरो महला चौथा सब कर तेरे तू सबना माहे तुते बाहर कोई ना है हर सुखदाता मेरे मन जाप हाँ तुद सालाही तू मेरा हर प्रभाप रहाओ जै जै देखा तै हर प्रभ सोए सब तेरे वस दूजा अवर ना कोए जिस कौ तुम हर राख्या पावे तिसके नेड़े कोए न जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर पहरो महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूर्त जिस हृदय हर नाम मुरार मस्तक भाग होवे जिस लिखिया सो गुरमत हृदय हर नाम समार मधसूदन जपिया और तार देही नगर तस्कर पंच धातु गुरसब्दी हर का डे मार रहाओ जिनका हर सेती मन मान्या तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूर तो तां किश की जय जे किश होवे हर बाहर जो किश करे सोई पल होसी हर त्यावो अंदर नाम मुरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओ पूछना किसे करे बीचार नानक सो प्रभसदा त्याई है जिन मेलिया सतगुर कृपा तार पैरो महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जप्यागत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिकसे खिन खिन तिनको हों बलिहारी हर हृदय जप नाम मुरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दास संदास की जय पनिहारी रहाओ तिन मत यूतम तिन पत यूतम जिन हृदय वस्या बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साध ना पाया ते हर दर गए कर डे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावे तिन ना काटे सृजनहारी हरे आप बोलावे आपे बोले हरे आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिले सो तुद मिलसी जन नानक आए जंत विचारी पैरो महला चौथा सतसंगत साई हर तेरी जत हर जित हर कीर्त हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन पीना तिन हम श्रेवै नित चरणे
जग जीवन हर त्याय तरने अनेक संख नाम हर तेरे ना जाही जेवा इत गणने रहाओ। गुरसिख हर बोलो हर गावो ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सो कणे। तन सो वंश तन सो पिता तन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दर गए हर जन बने। हर हर अगमो नाम हर तेरे विच भगता हर तरने नानक जन पाया मत गुरमत।

नाम बिना सब दुनिया शार। अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सलाह, गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह। नी तरिया तरपन खुदाए, गरीब निवाज दिन रहन ते आए। नानक कहो खुद खसम मेहरवान, अलो न विसरे दिल जी प्राण। पहराओ महला पंजवा, साच पदार्थ गुरमुख लहो, प्रभ का पाणा सतकर सहो। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायन ने तुठ पीवो। हर हर हर हर रसना कहो रहाओ, कलयुग मैं कनाम उदार। नानक बोले ब्रह्म विचार, पहरो महला पंजवा। सतगुर सेव सर्व फल पाए, जन्म जन्म की मैल मिटाए। पदत पावन प्रभ तेरो नाओ, पूर्व कर्म लिखे गुण गाओ। रहाओ साधु संग होवे उदार, सोभा पावे प्रभ कै द्वार। सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, तूर बंश है सब सुर नर देवा। नानक पाया नाम निधान, हर जप जप उदरिया सगल जहान। पहरो महला पंजवा, अपने दास कौ कंठ लगावे, निंदक कौ अगन में पावे। पापी ते राखे नारायण, पापी पापी की गत कथु नाही। पापी पचया आप कमायण, रहाओ दास राम जीओ लागी प्रीत। निंद की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया। दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई। नानक दास हर की सरनाई, राग पहराओ महला पंजवा। चौपदे कर दूजा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। श्री धर मोहन सगलियो पावन, निरंकार सुखदाता। ऐसा प्रभ छोड़ करे अन सेवा, कौन बिख्या रस माता। अरे मन मेरे तू गोविंद पाज, अवर्यो पाव सगल मैं देखे। जो चितवी है तित बिगरस काज, रहाओ ठाकर छोड़। दासी को सिमरै मनमुख अंध ज्ञाना। हर की भगत करै तिन निंदै, निगुरे पशु समाना। जियो पिंड तन तन सब प्रभ का, स्वागत कहते मेरा। अहम बुद्ध दुर्मत है मैली, बिन गुर भव जल फेरा। होम जग जप तप सब संयम, तट तीर्थ नहीं पाया। मिटाया पै सरनाई, गुरमुख नानक जग तराया। पहरो महला पंजवा, बन मैं पेख्यो तरण मैं पेख्यो, गृह पेख्यो उदासाए। दंड तार जट तारै पेख्यो, वर्त नेम तीर्थाए। संत संग पेख्यो मन माए, ऊब पयाल सर मैं पूर्ण। रस मंगल गुण गाए, रहाओ जोग पेख सन्यासै पेख्यो। जत जंगम कपड़ाए, तपी तपी सरमन मैं पेख्यो। नट नाटक निरताए,

कर जैसी ऊपर नजर करे करतार तेह जन के सब का सवार तिसका राखा एको सोए जन नानक पढ़ना सा कह कोए पैरो महला पंजवा तौकड़िया जे होवे बाहर तौकड़िया जे विसरै नरहर तौकड़िया जे दूजा पाए क्या कड़िया जा रहा समाए माया मोहे कड़े कड़ पचिया बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ तौकड़िया जे दूजा करता तौकड़िया जे अन्याय को मरता तौकड़िया जे कह जाने नाही क्या कड़िया जा भरपूर समाही तौकड़िया जे किश होए तिंगाणे तौकड़िया जे भूल वजाणे गुर कहया जो होए सब प्रभ ते तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते प्रभ तू है ठाकर सब को तेरा जो पावे त्यों करे निबेरा दुतिया नास्त एक रया समाए राखो पैज नानक शरणाए पैरो महला पंजवा बिन बाजे कैसो नृत्यकारी बिन कंठ कैसे गवनहारी जील बिना कैसे बजर बाप नाम बिना बिरथे सब काज नाम बिना कहो को तरिया बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ बिन जेहवा कहाँ को बगता बिन श्रवना कहाँ को सुनता बिन नेत्रा कहाँ को पेख है नाम बिना नर कहीं न लिख है बिन विद्या कहाँ कोई पंडित बिन अमरा कैसे राज मंडित बिन बुझे कहाँ मन ठहराना नाम बिना सब जग बौराना बिन बैराग कहाँ बैरागी बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी बिन बस पंच कहाँ मन चूरे ना बिना ससद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान बिन पै कखनी सर्व बेकार कहो नानक दर का विचार पैरो महला पंजवा हों मैं रोग मानख कौ दीना काम रोग मैंगल बस लीना दृष्ट रोग पचमोए पतंगा नाद रोग खप गए कोरंगा जो जो दिसै सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुर जोगी रहाओ जेहवा रोग मीन ग्रस यानो बासन रोग पवर बिनसानो हेतरो का सगल संसारा त्रिबद रोग में बदे बिकारा रोगे मरता रोगे जन्मे रोगे फिर जोनी परमे रोग बंद रहन रति ना पावे बिन सतगुर रोग कत ना जावे पार ब्रह्म जिसकीनी दया बहा पकड़ रोगों कढ़ लया टूटे बंधन साध संग पाया कहो नानक गुर रोग मिटाया पैरो महला पंजवा चीत आवै ता महा आनंद चीत आवै ता सब दुख पंज चीत आवै ता सरदा पूरी चीत आवै ता कबे न चूरी अंतर राम राय प्रगटे आए गुरपुरै दियो रंग लाए रहाओ चीत आवै ता सर्ब को राजा चीत आवै ता पूरे काजा चीत आवै ता रंग गुलाल चीत आवै ता सदा निहाल चीत आवै ता सद धनवंता चीत आवै ता सद निपरंता चीत आवै ता सब रंग माणे चीत आवै ता चुकी काणे चीत आवै ता सहज कर पाया चीत आवै ता सुन समाया चीत आवै सद कीर्तन करता मन मानिया नानक भगवंता।

तीर्थ हमरी कर कर होई, भगत हमारी सबनी लोई, पिता हमारे प्रगटे मांझ, पिता पुत्र अल किन्नी सांझ। कहो नानक जो पिता पतीने, पिता पूते कै रंग लीने, पहरो महला पंजवा। निर्वैर पुरख सतगुर प्रभ दाते, हम अपराधी तुम बख्साते। जिस पापी को मिले ना टोई, शरण आवे ता निर्मल होई। सुख पाया सतगुरु मनाए, सब फल पाए गुरु ते आए रहाओ। पार ब्रह्म सतगुर आदेश, मन तन तेरा सब तेरा देश। चूका पड़दा ता नदरी आया, खसम तू है सबना के राया। तिस पाणा सूके काष्ट हरिया, तिस पाणा ता थल सिर सरिया। तिस पाणा ता सब फल पाए, चिंत गई लग सतगुर पाए। हराम खोर निर्गुण कौ तूठा, मन तन शीतल मन अमृत बूठा। पार ब्रह्म गुर पय दयाला, नानक दास देख पय निहाला। पैरो महला पंजवा, सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरा सबसका दाता, सतगुर मेरा पुरख विधाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव रहाओ। सतगुर मेरा सर्व प्रतपाल है, सतगुर मेरा मार जीवाल है, सतगुर मेरे की वड़ियाई, प्रगट पई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीबाण, सतगुर कहो सदबल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। जिन गुर सेव्या तिस पौ ना ब्यापै, जिन गुर सेव्या तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत भेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद, पैरो महला पंजवा। नाम लैत मन प्रगट पया, नाम लैत पाप तंते गया। नाम लैत सगल पुरबाया, नाम लैत अठ सठ मजनाया। तीर्थ हमरा हर को नाम, गुरु उपदेसया तत् ज्ञान रहाओ। नाम लैत दुख दूर पराना, नाम लैत अतमूड सुगयाना। नाम लैत प्रगट उजियारा, नाम लैत छुट्टे जंजारा। नाम लैत जम नेड़ ना आवै, नाम लैत दरगह सुख पावै। नाम लैत प्रभ कह सबास, नाम हमारी साची रास। गुर उपदेश कयो एहो सार, हर कीर्त मन नाम आधार। नानक उधरे नाम पुने चार, अवर कर्म लोके पतियार। पैरो महला पंजवा, नमस्कार ता को लख बार, एहो मन दीजै ता को वार। सिमरन ता कै मिटै संताप, होए आनंद ना व्यापै ताप। ऐसो हीरा निर्मल नाम, जास जपत पूर्ण सब काम रहाओ। जा की दृष्ट दुखडेरा टह, अमृत नाम शीतल मन गह। अनक भगत जाके चरण पुजारी, सगल मनोरथ पूर्ण हारी। खिन मैं ऊने सुबर भरिया, खिन मैं सूके कीने हरिया। खिन मैं निथावे कौ दीनो थान, खिन मैं निमाणे कौ दीनो मान। सब मैं एक रहा पर पूरा, सो जापै जे सतगुर पूरा। हर कीर्तन ताको आधार, कहो नानक जिस आप दयार। पैरो महला पंजवा, मोहे दुहागन आप सिंगारी, रूप रंग दे नाम सवारी। मिट्यो दुखर सगल संताप, गुर होए मेरे माई बाप। सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद, कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ। तपत बुझी पूर्ण सब आसा, मिटिया देर भय प्रगासा। अनहद शब्द अचरज बिस्माद, गुरपूरा पूरा प्रसाद। जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन उसदा निहाल। सर्ब गुणा ता कै बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम।
ਜਾਂ ਕਉ

भेटियो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ताकी रेन बिरला को पाए। पैरो महला पंजवा, चितवत पाप ना आल के आवै। बेसवा भजत किशने शरमावै, सारो दिन समझूरी करै। हर सिमरन की वेला बज्जर सिर पर, माया लग पुलो संसार। वा पुलाया पुलावन हार, राच रहया बिरथा ब्योहार। रहाओ पेखत माया रंग बिहाए, गड़बड़ करे कौडी रंग लाए। अंध ब्योहार बंद मंत आवे, करने हारना जी मैं आवे। करत करत इव ही दुख पाया, पूर्ण होत ना कार्ज माया। काम क्रोध लोभ मन लीना, तड़प मुआ जो जल बिन मीना। जिसके राखे होए हरे आप, हर हर नाम सदा जप जाप। साध संग हर के गुण गाया, नानक सतगुर पूरा पाया। पैरो महला पंजवा, अपनी दया करे सो पाए। हर का नाम मन वसाए, साज शब्द हृदय मन माहे। जन्म जन्म के किल विख जाहे, राम नाम जी को आधार। गुर प्रसाद जपो नित पाई, तार ले सागर संसार। रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान, से जंतर गै पावे मान। सुख सहज आनंद गुण गाओ, अगे मिले निथावे थाओ। जुगै जुगंतर एहो तत सार, हर सिमरन साचा विचार। जिस लड़ लाए लय सो लागै, जन्म जन्म का सोया जागै। तेरे भगत भगतन का आप, अपनी महिमा आपे जाप। जी जंत सब तेरे हाथ, नानक के प्रभ सदी साथ। पैरो महला पंजवा, नाम हमारे अंतर जामी। नाम हमारे आवे कामी, रोम रोम रव्या हर नाम। सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रत्न मेरे भंडार। अगम्या मोला।

नाम हमारा है पूरा साहो, नाम हमारा है बेपरवाह हो, नाम हमारा भोजन पाओ, नाम हमारा मन का सुहाओ, नाम ना विसरै संत प्रसाद, नाम लै तो अनहद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम

गुर सो प्रसन्न होए पौ गए नाम निरंजन मन में लय दीन दयाल सदा कृपाल बिरस गए सगले जंजाल सुख सहज आनंद कने सा संग मिटे पै परमा अमृत हर हर रसन भने रहाओ चरण कमल स्यों लागो हेत खिर मैं बिरस्यो महाप्रेत आठ पहरो हर हर जप जाप रखनहार गोविंद गुरे आप अपने सेवक उसदा प्रतपार है पगजना के सास निहार है मानस की कहो केतक बात जम तेरा खै दे कर हाथ निर्मल सोभा निर्मल

सर्ब मनोरथ पूर्ण करने, आठ पहर गावत भगवंत, सतगुर दीनो पूरा मंत। सो वडभागी जिस नाम प्यार, तिसके संग तरह संसार रहाओ। सोई ज्ञानी जे सिमरै एक, सो तनवंता जिस बुद्ध बबेक। सो कुलवंता जे सिमरै स्वामी, सो पतवंता जे आप पिछानी। गुर प्रसाद परम पद पाया, गुण गोपाल दिन रहन ते आया। टूटे बंधन पूर्ण आसा, हर के चरण रिदमाहे निवासा। कहो नानक जाके पूर्ण कर्मा, सो जन आया प्रभ की सरना। आप पवित पावन सब कीने, राम रसायन रसना चीने। पैरो महला पंजवा, नाम लै तो किश बिघ ना लागे, नाम सुन तो जम दूरों भागे। नाम लै तो सब दुख है नास, नाम जपत हर चरण निवास। निर्विघ्न भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ। हर सिमरत किस चाख ना जो है, हर सिमरत दैत देव ना पोहै। हर सिमरत मोह मान ना बदै, हर सिमरत गर्भ जो ना रुदै। हर सिमरन की सगली बेला, हर सिमरन बहु माया अकेला। जात अजात जपै जन कोए, जो जपै तिसकी गत होए। हर का नाम जपिए साध संग, हर के नाम का पूर्ण रंग। नानक कहो प्रभु कृपा तार, सा सा सर देहो चितार। पैरो महला पंजवा, आपे सास्ते आपे भेद, आपे कटकट जाने भेद। ज्योत स्वरूप जाकी सब वत, करण कारण पूर्ण समरथ। प्रभ की ओट गहो मन मेरे, चरण कमल गुरमुखिया राधाओ। दुश्मन दुख न आवे नेरे रहाओ। आपे वाण तरण त्र पवन सार, जाकै सूत प्रोया संसार। आपे शिव शक्ति संजोगी, आप निर्बाणी आपे भोगी। जत कत पेखो तत तत सोए, तिस बिन दूजा नाही कोए। सागर तरिए नाम कै रंग, गुण गावे नानक साध संग। मुकत भुगत जुगत वस जाकै, ऊणा नाही किस जनता कै। कर कृपा जिस होए सो प्रसन्न, नानक दास सही जन तन। पहरो महला पंजवा, भगता मन आनंद गोबिंद। अस्थित पए बिनसी सब चिंद, पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे। पार ब्रह्म वसिया मन आए, राम राम संत सदा सहाय। कर बाहर नाले परमेश्वर, रव रहा पूर्ण सब ठाए रहाओ। धन माल जोबन जुगत गोपाल, जी प्राण नित सुख प्रतपाल। अपने दास को दे राखे हाथ, निमख ना छोड़ सद ही साथ। हर सा प्रीतम अवर ना कोए, सार संभाले साचा सोए। मात पिता सुत बंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायण। तिसकी तार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर। नानक कै मन एहो प्रखार्थ, प्रभु हमारा सारे स्वार्थ। पहरो महला पंजवा, पह कौ पौ पड़िया सिमरत हर नाम। सगल ब्याद मिटी त्रह गुण की, दास के होए पूर्ण काम रहाओ। हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांछे दिन राती, होए पुनीत धर्म राय जाम। काम क्रोध लोभ मद निंदा, साध संग मिटिया अभिमान। ऐसे संत भेटे वडभागी, नानक तिनकै सत कुरबान।

नाव मेरे बंद पो नाव मेरे भाई, नाव मेरे संग अंत होए सखाई। माया मैं जिस रखे उदास, कह कबीर हाँ ता को दास। नंगे आवन नंगे जाना, कोई न रह है राजा राना। राम राजा नौनद मेरा, संपा हेत कला तो तन तेरा। रहाओ आवत संग न जा संगाती, कहा पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कहे कबीर किश गुण बिचार, चले दुवारी चले जुआरी दो हथ चार। मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद। मैला मलता है हो संसार, एक हर निर्मल जा कांत ना उपार। रहाओ मैले ब्रह्मंडा एक ईस, मैले निस्बा सिर जंतीस। मैला मोती मैला हीर, मैला पौन पाव क्यार नीर। मैले शिव शंकरा महेश, मैले सिद्ध साध क्यार पेख। मैले जोगी जंगम जटा सहेत, मैली काया हंस समेत। कहे कबीर ते जन परवान, निर्मल ते जोरा मैं जान। मन कर मक्का किबला कर देही, बोलनहार परम गुर यही। कहरे मुल्ला बाग निवाज, एक मसीह तो दसै दरवाज। रहाओ मिसमिल तामस परम कदूरी, पाखले पंचै हुए सबूरी। हिंदू तुर्क का साहिब एक, कह करे मुल्ला कह करे शेख। कह कबीर हाँ पया दीवाना, मुस मुस मनुमा सहिस्माना। गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुई निबरी। बिगरियो कबीरा राम दुहाई, साच पायो अन कतै न जाई। रहाओ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो। पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो। संतन संग कबीरा बिगरियो, सो कबीर रामे हुए निबरियो। माथे तिलक हथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना। जौ हौ बौरा तौ राम तोरा, लोग मरम कह जाने मोरा। रहाओ तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन्ने फल सेवा। सदगुर पूजो सदा सदा मनावो, ऐसी सेव दरगह सुख पावो। लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचाना। उल्ट जात कुल दो बिसारी, सुन सहज में बुंत हमारी। हमरा झगड़ा रहा ना को, पंडित मुल्ला छाडे दो। रहाओ बुन बुन आप पैरावो, जै नहीं आप तहां होए गावो। पंडित मुल्ला जो लिख दिया, छाड़ चले हम किशु ना लिया। हृदय इखलास निरखले मीरा, आप खोज खोज मिले कबीरा। निरतन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे ओह चेतना धरे। रहाओ जो निरतन सरतन कह जाए, आगे बैठा पीठ फिराए। जो सरदन निर्दन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्दन सरदन दोनों पाई, प्रभु की कला ना मिटी जाई। कह कबीर निर्दन है सोई, जाके हृदय नाम ना होई। गुर सेवा ते भगत कमाई, ताबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया। जब लग बिकल पई नहीं बानी, भजले रेह मन सारंग पानी। आब ना भजस भजस का उपाई, आवै अंत ना भजया जाई। जो किश करे सोई अवसार, फिर पछताव ना पाव पार। सो सेवक जो लाया सेव, तिन ही पाए निरंजन देव। गुरमिल ताके खुले कपाट, बहुर ना आवै जोनी बाट। इही तेरा अवसर एह तेरी बार, कट पीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत कह हार, बहुबिद कहो पुकार पुकार। शिव की पुरी बसै बुधसार, तह तुम मिलकै करो विचार। ईतूत की सोजी पर कौन कर मेरा कर कर मरै। निज पदू

सो सुरतान जो दोए सर तन बाहर जाता पीतर यान गगन मंडल में लश्कर करे सो सुरतान शत्र सर तर जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उचरे मुसलमान का एक खुदाए कबीर का स्वामी रया सुमाए महल्ला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरथा हो वैसेव जो पाथर की पाई पाए तिसकी काला जाई जाए ठाकर हमरा सदवो लंता सर्ब जिया को प्रभ दान देता रहाओ अंतर देव न जन अंध भ्रम का मोहया पावे फंद ना पाथर बोले ना किश दे फोकट कर्म ने फल है सेव जे मृतक कहो चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे जे मृतक कहो बिष्टा माहे रुलाई ता मृतक का क्या कट जाई कहत कबीर हाँ कहो पुकार समय देख सकत गावार दूजे पाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले जल मैं मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के शेदे काम माया कुंचर को व्याप भयंगम प्रिंग माया मैं खापे माया ऐसी मोनी पाई जेते जीते ते डकाई रहाओ पंखी मृग माया मैं राते साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मैं पेला सिद्ध चौरासी माया मैं खेला छे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरजर चंदा तपे रखीसर माया मैं सूता माया मैं काल यार पंच दूता स्वान स्याल माया मैं राता बंतर जीते अर सिंघाता मांजार गाडर अर लुबरा बिरख मूल माया मैं परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा यार तार तेव कह कबीर जिस उधर तिस माया तब छूटे जब साधु पाया जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवार आए ऐसा ज्ञान विचार मना हर कीना सिमरो दुख भंजना रहाओ जब लग सिंह रह बन माहे तब लग बन फूल ही नाहे जब ही स्यार सिंह को खाए फूल रही सगली बन राये जीतो बूढ़े हार उतरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिवलाए सत्तर सह सलाह रह जाके सवा लाख पै कंबरता के सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजरस दूर महल को पावे रहाओ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिर दीवाना बाबा आदम कहो किशन दर दिखाई उन पी पिस्त कनेरी पाई दिल खल हल जाके जर्द रूबानी छोड़क तेब करे सैतानी दुनिया दोस रोस है लोई अपना किया पावे सोई तुम दाते हम सदा पिखारी दियो जवाब होए बजगारी दास कबीर तेरी पने समाना पिस्त नजीक राख रहमाना सब कोई चलन कहत है उहां ना जानो बैकुंठ है कहां रहाओ आप आपका मर्म ना जाना बात नहीं बैकुंठ बखाना जब लग मान बैकुंठ की आस तब लग नाही चरण निवास खाई कोट ना परलप गारा ना जानो बैकुंठ द्वारा कह कमीर अब कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे क्यों लीजे गढ़ बंका पाई दोवर कोटियार तेवर खाई रहाओ पांच पचीस मोह मद मत सर आडी प्रबल माया जन गरीब को जोर ना पहुंचे कहां करो रगराया काम केवारी दुख सुख दरवानी पापुन दरवाजा क्रोध प्रधान महा बड़ दुंदर तै मनमावासी राजा स्वाद स्नाहा टोप ममता को कबुद कमान चढ़ाई तसना तीर रहे गढ़ पीतर इं गढ़ लियो न जाई प्रेम पलीता सुरत हवाई गोला ज्ञान चलाया ब्रह्म अगन सहजे परजाली एक चुट सजाया
ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਲੈ ਲਰਨੇ ਲਾਗਾ ਤੋਰੇ ਦੋਏ ਦਰਵਾਜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਕੜਿਓ ਗੜਕੋ ਰਾਜਾ ਭਗਵਤ ਪੀਰ ਸਕਤ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਕੱਟੀ ਕਾਲ ਪੈ ਫਾਸੀ ਦਾਸ ਕਮੀਰ ਚੜਿਓ ਗੜੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਲਿਓ ਅਵਨਾਸੀ ਗੰਗ ਗੁਸਾਇਨ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਜੰਜੀਰ ਬਾਂਧ ਕਰ ਕਰੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਾ ਡਿਗੈ ਤਨ ਕਾਹੇ ਕਉ ਡਰਾਏ ਚਰਨ ਕਮਲ ਚਿਤ ਰਹੋ ਸਮਾਏ ਰਹਾਓ ਗੰਗਾ ਕੀ ਲਹਿਰ ਮੇਰੀ ਟੁੱਟੀ ਜੰਜੀਰ ਮ੍ਰਿਗਸ਼ਾਲਾ ਪਰ ਬੈਠੇ ਕਬੀਰ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਕਉ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥ ਜਲ ਥਲ ਰੱਖਣ ਹੈ ਰਘਨਾਥ ਪਹਿਰਾਉ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਗਮ ਦੁਰਗਮ ਗੜ ਰਚਿਓ ਬਾਸ ਜਾਮੈ ਜੋਤ ਘਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੈ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦ ਜੇ ਪੌੜੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਇਹੋ ਜੀਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਗੈ ਜਰਾ ਮਰਨ ਛੂਟੈ ਪਰਮ ਭਾਗੈ ਰਹਾਓ ਅਬਰਨ ਬਰਨ ਸਿਓ ਮਨ ਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਉ ਮੈਂ ਗਾਵਨ ਗਾਵੈ ਗੀਤ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਚੁਣਕਾਰ ਜੇ ਪੌੜੇ ਪ੍ਰਭ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਖੰਡਲ ਮੰਡਲ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਤ੍ਰਿਆ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤ੍ਰੇ ਖੰਡਾ ਆਗਮੈ ਗੋਚਰ ਰਹਿਆ ਅਭਯੰਤ ਪਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ ਕੋ ਧਰਨੀ ਧਰਮੰਤ ਕਦਲੀ ਪੋਹਪ ਤੂਪ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਜ ਪੰਕਜ ਮੈਂ ਲਿਓ ਨਿਵਾਸ ਦੁਆਦਸ ਦਲ ਅਭਯੰਤਰ ਮੰਤ ਜੈ ਪੌੜੇ ਸ੍ਰੀ ਕਮਲਾ ਕੰਤ।

रहाओ मिथ्या जिह बाय अवरे काम, निर्वाण पाद एक हर को नाम। असंख कोट अन पूजा करी, एक ना पूजस नाम हरी। प्रणवै नाम देओ एहो करना, अनंत रूप तेरे नारायणा। पर तन पर दारा पर हरी, ताकै निकट बसै नर हरी। जो ना पजंते नारायणा, तिनका मैं ना करो दर्शना। रहाओ जिनकै पीतर है अंतरा, जैसे पस तैसे होए नरा। प्रणवत नाम देओ ना कै बिना, ना सोहै बत्तीस लखना। दूध कटोरै गड़वै पानी, कपल गाए नामै दुहयानी। दूध पियो गोविंदे राय, दूध पियो मेरो मन पति आए। नाही ता कर को बाप रसाए, रहाओ सोयन कटोरी अमृत भरी। लैना मैं हर आग्या तरी, एक भगत मेरा हृदय बसै। ना मैं देख नारायण हसै, दूध पी आए भगत गर गया। ना मैं हर का दर्शन भया, मैं बौरी मेरा राम पतार। रच रचता कहो करो सिंगार। भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग, तन मन राम प्यारे जोग। रहाओ बाद विवाद कहूं सिव न कीजै, रसना राम रसायन पीजै। आप जी जान ऐसी बन आई, मिलो गोपाल निशान बजाई। उस्त निंदा करे नर कोई, नामे श्री रंग पेट लसोई। कबहू खीर खांड घीओ ना पावै, कबहू घर घर टूक मंगावै। कबहू कूर्ण चने बनावै, ज्यो राम राखै त्यों रहियै रे भाई। हर की महिमा किश कथन ना जाई, रहाओ कबहू तुरे तरंग नचावै। कबहू पाए पनियो ना पावै, कबहू खाट सुपेदी सुवावै। कबहू पूंपे आर ना पावै, पंत नाम देव एक नाम निस्तार है। जे गुर मिलै ते पार उतार है। हस्त खेल तो तेरे देहुरे आया, भगत कर तो नामा पकड़ उठाया। हिन्नड़ी जात मेरी जात मराया, शिपे के जन्म काहे कवाया। रहाओ लै कमली चलियो पलटाए, देहुरे पाछै बैठा जाए। ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरै, भगत जना का देहुरा फिरै। पैरो नाम देओ जियो, कर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद जैसी पूखे।

अंतर्यामी प्रभ दयाल, अपने दास को नजर निहाल, कर कृपा मोहे देहो दान, जप जीव नानक तेरो नाम। बसंत महला पंजवां, राम रंग सब गए पाप, राम जपत कछ नहीं संताप, गोविंद जपत समिट अंधेर, हर सिमरत कछ नाए फेर। बसंत हमारे राम रंग, संत जना स्यों सदा संग रहाओ, संत जनी किया उपदेश, जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उदयान थान, गुर प्रसाद घट घट पछान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निगट पेख प्रभ करण हार, ई तूत प्रभ कार्य सार, चरण कमल सो लगो ध्यान, कर कृपा प्रभ कीनो दान। तेरिया संत जना की पांछो धूर, जप नानक स्वामी सद हजूर। बसंत महला पंजवां, सच परमेश्वर नित नवा, गुर कृपा ते नित चवा, प्रभ रखवाले माई बाप, जाकै सिमरन नहीं संताप। खसम ते आई एक मन एक पाए, गुरपुरे की सदा सरनाई, साचे साहिब रखिया कंठ लाए रहाओ। अपने जन प्रभ आप रखे, दुष्ट दूत सब भ्रम थके, बिन गुर साचे नहीं जाए, दुख देस दिसंतर रहे ताए। किरत ओना का मिटस नाहे, ओए अपना बीजा आप खाहे, जन का रखवाला आप सोए, जन को पहुंच ना सकस कोए। प्रभदास रखे कर जतने आप, अखंड पूर्ण जाको प्रताप, गुण गोबिंद नित रसन गाए, नानक जीवै हर चरण ते आए। बसंत महला पंजवां, गुर चरण सरेवत दुख गया, पार ब्रह्म प्रभ करी मया, सर्व मनोरथ पूर्ण का

तू समरथ स्वामी मेरा हो क्या जाना तेरी पूजा। तेरा महला गोचर मेरे प्यारे बिखम तेरा है भाणा, कहो नानक टह पया द्वारा रख ले वो मुकद्या जाना। बसंत हिंडोल महला पंजवां, मूल ना बुझै अपना सूझै भरम व्यापी अहमनी, पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी, मोहे निस्तारो निर्गुणी रहाओ, उपत परलो प्रभते होवै ए बिचारी हर जनी। नाम प्रभु के जो रंग राते, कल मैं सुखिए से गनी। आवरियो पाओ ना को सूझै, नानक तरिए गुर बचनी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग बसंत हिंडोल महला नावा। साधो एहो तन मिथ्या जानो, या पीतर जो राम बस्त है साचो ताहे पछानो रहाओ। एहो जग है संपत सुपने की, देह का ऐडानो, संग त्योहार है कछु ना चल है ताहे कहां लपटानो। उस्तत निंदा दो पर हर, हर कीर्त और आनो, जन नानक सब ही मैं पूर्ण एक पुरख भगवानो। बसंत महला।

जोगी जंगम अर संन्यास सभी पर डारिये फास। जेह जे हर को नाम समार ते पव सागर उतरे पार। जन नानक हर की शरण आए दीजे नाम रह गुण गाए। बसंत महला नावा माई मैं तन पायो हर नाम। मन मेरो धामन ते छूटो कर बैठो विश्राम रहाओ। माया ममता तन ते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। लोभ मोहे परसना साकै गही भगत भगवान। जन्म जन्म का संसार चूकार तन नाम जप पाया। तृष्णा सकल बिनासी मन ते नहीं सुख माए समाया। जा कहो दयाल कृपा निध सो गोविंद गुण गावै। कहो नानक बिद की संपै को गुरमुख पावै। बसंत महला नावा मन कहा बिसार्यो राम नाम। तन बिनसै जम स्यो परे काम रहाओ। एहो जग तुए का पहार तै साचा मानिया के विचार। तन दारा संपत ग्रह कै संग न चल समझ ले। एक भगत नारायण होए संग कहो नानक भजते एक रंग। बसंत महला नावा कहां पूले ओरे झूठे लोभ लाग। कश बिगड़ो नाहन अजहो जाग रहाओ। सम सुपने कहो जग जान बिन सैशन मैं साची मान। संग तेरे हर बस्त नीत निस्बासर पाइता है मीत। बार अंत की होए सहाय कहो नानक गुणता के गाए। बसंत महला पहला अष्टपदियां कर पहला दो तुकिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ नाम नहीं चीत। नाम विसार ग्रह देख पीत। मनुआ डोले चीता नीत जग स्यों टूटी झूठ प्रीत। काम क्रोध बिख बज्र भार नाम बिना कैसे गुणचार रहाओ। कार बालू का कुमन केर बरखस बाणी बुद्ध बुदा हेर। मात्र बूंद ते तार चक फेर सर्ब जोत नामे की चेर। सर्ब उपाय गुरु सिर मोर भगत करो पगला गौ तोर। नाम रता चाहो तुझे और नाम दुराए चले सो चोर। पत खोई बिखियन चल पाए साच नाम रतो पास्यों कर जाए। जो किशकीनस प्रभर जाए पै माने निरपो मेरी माए। कामन चाहे सुंदर भोग पान फूल मीठे रस रोग। खिले बिकसै ते तो सोग प्रभ शरणागत कीनस होग। कापड़ पहरस अधिक सिंगार माटी फूली रूप बेकार। आसा मनसा बांधो बार नाम बिना सुना कर बार। गाछो पुत्री राजकुमार नाम भणो सच दोत सवार। प्रयो सेवो प्रभ प्रेम आधार गुर शब्दी बिखत्यास निवास। गुर शब्दी बिखत्यास निवार मोहन मोहे लिया मन मोहे। गुर कै शब्द पछाना तोहे। नानक ठांडे चाहे प्रभु दयार तेरे नाम संतोखे कृपा धार। बसंत महला पहला मन भूलो परमस आए जाए। अतलुब्ध लुबानो बिख माए। नए असर दी सहक पाए जो मीन कुंडलिया कंठ पाए। मन भूलो समझ सो साच नाए। गुर शब्द बिचारे सहज पाए रहाओ। मन भूलो परमस पवरतार बिल बिरथे चाहे बहु बेकार। मैंगल ज्यो फासस कामहार कड़बंधन बांध्यो शीस मार। मन मुग्धो दादर भगतहीन दर प्रहट सरापी नाम बीन। ता कै जात ना पाती नाम लीन सब दुख सखाई गुण है बीन। मन चले न जाई ठाक राख बिन हर असराते पत ना साख। तू आपे सुरता आप राख
ਧਰ ਧਾਰਨ ਦੇਖੈ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਿਸ ਕਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰਮੇਲੇ ਬਿਰਥਾ ਕਹੋ ਮਾਏ। ਅਵਗਣ ਛੋਡੋ ਗੁਣ ਕਮਾਏ, ਗੁਰਸਬਦੀ ਰਾਤਾ ਸੱਚ ਸਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਮਤ ਉਤਮ ਹੋਏ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਉਮੈ ਕੱਢੈ ਧੋਏ। ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਸਦਾ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੈ ਔਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਮਨ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੈ ਆਵੈ ਜਾਏ, ਸਮੈ ਏਕੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਭ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਸਭ ਤੇ ਸਿਰ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਅਭੁੱਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਕਦੇ ਨਾਹੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਮਾਤਾ ਗਾਹੇ। ਤੂੰ ਮੋਟੋ ਠਾਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨਿਆ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨਰ ਹੋਏ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈ ਪਰ ਹਰ ਦੋਏ। ਦੂਰ ਦਰਦ ਮਾਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜੈ ਏਕ ਸਮਾਏ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਕੇਤੀ ਬਿਲਾਏ, ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਚੀਨਸ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ। ਰਹਾਉ ਬੇਦ ਵਖਾਣ ਕਹੈ ਇਕ ਕਹੀਐ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਅੰਤ ਕਿਨ ਲਈਐ। ਏਕੋ ਕਰਤਾ ਜਿਨ ਜਾ ਕੀਆ, ਬਾਜ ਕਲਾ ਧਰ ਗਗਨ ਧਰੀਆ। ਏਕੋ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਏਕ ਨਿਰਾਲਮ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਏਕੋ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੈ ਜਾਣ। ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤ ਪੂਰਾ ਜੁਜੁਗ ਸੋਈ। ਅਨਹਦ ਰਾਤਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਲਖ ਅਪਾਰ।

तू सर सागर गुण गहीर, तू अकुल निरंजन निरंजन परमहीर, तू आपे करता करण योग, ने केवल राजना सुखी लोग, नानक त्रापे हर नाम सुआद, बिन हर गुर प्रीतम जन्म बा। बसंत हिंडोल महला पहला, कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार, कर महल चार बहाली, चारे दीवे चौ हथ दिए, एका एका वारी, मेहरवान मधसूदन माधव, ऐसी संगत तुम्हारी रहाओ, कर कर लश्कर पावक तेरा, धर्म करे सिकदारी, धरती देग मिलै कवेरा, भाग तेरा भंडारी, नासा बूर होवे फिर मंगे, नारद करे खुवारी, लाबा देरा बंदी खाना, अवगुण पैर लोहारी, पूंजी मार पवे नित मुदगर, पाप करे कोटवारी, पावे चंगा पावे मंदा, जैसी नजर तुम्हारी, आदि पुरख को अल्लाह कही है, सेखा आई वारी, देवन देवत्या कर लागा, ऐसी कीर्त चाली, कूंजा बाग निवाज मुसल्ला, नील रूप बनवारी, घर घर मिया सब ना जिया, बोली अवर तुम्हारी, जे तू मीर महीपत साहिब, कुदरत कौन हमारी, चारे कुंट सलाम करेंगे, घर घर सिर्फ तुम्हारी, तीर्थ सिमरत पुन दान, किशलाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वडियाई, मेका कड़ी संभाली, बसंत हिंडोल कर दूजा महला चौथा, एको अंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वसिया, खिन पल थिर ना रहाई, अन क्यों पाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक एक कर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाईऐ, भज राम नाम निशान रहाओ, एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हुआ रसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मोए सब सागत, हर गुरमती कर पाया, दीना दीन दयाल पे है, जो कृष्ण बिद्र कर आया, मिल्यो सुदामा भावनी तार, सब किश आगे दालत पंज समाया, राम नाम की पैज वडेरी, मेरे ठाकरे आप रखाई, जे सब सागत करे बखीली, एक रती तिल ना कटाई, जन की उसत है राम नामा, दे दे सोभा पाई, निंदक साकत खब ना सकै तिलो, अपने कर लू की लाई, जन को जन मिल सोभा पावे, गुण में गुण परगासा, मेरे ठाकर के जन प्रीतम प्यारे, जो होवे दासन दासा, आपे जल परंपर करता, आपे मिल मिलावे, नान गुरमुख सहज मिलाए, ज्यों जल जलै समावे, बसंत महला पंजवा, कर पहला दो तुकिया, एको अंकार सतगुर प्रसाद, सुन साखी मन जप प्यार, अजामल उदरिया कहे एक बार, बाल्मीक होवा साध संग, ध्रुव को मिलिया हर निसंग, तेरिया संता जाचो चरण रेन, ले मस्तक लावो कर कृपा देन रहाओ, गुण का गण का उदरी हर कह तोत, गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख, बिपर सुदामे दालद पंज, रे मन तू पी पज गोबिंद, बदक उदारो खम परहार, कुबजा उदरी अंगुष्ट तार, पिदर उदारो दास्त पाए, रे मन तू पी हर ते आए, प्रहलाद रखी हर पैजे आप, बस्तर शीनत द्रौपदी रखी लाज, जिन जिन सेव्यांत बार,
ਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਤੂੰ ਪਰੈ ਪਾਰ, ਧੰਨੈ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਰਮਿਲ ਪਈ ਸਿੱਧ। ਬੇਣੀ ਕਹੋ ਗੁਰ ਕੀਓ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਹੋਏ ਦਾਸ, ਜੈ ਦੇਵ ਤਿਆਗਿਓ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਈ ਉਦਰਿਓ ਸੈਨ ਸੇਵ। ਮਨ ਡੀਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਹੂੰ ਜਾਏ, ਮਨ ਤੂੰ ਪੀ ਤਰਸੈ ਸਰਨ ਪਾਏ, ਜਿਹਾ ਨਗਰੋ ਠਾਕਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪ, ਸੇ ਤੈ ਲੀਨੇ ਭਗਤ ਰਾਖ। ਤਿਨਕਾ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਕੋਏ, ਇਹ ਵਿਦ ਦੇਖ ਮਨ ਲੱਗਾ ਸੇਵ, ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਇਓ ਏਕ ਰੰਗ, ਨਾਮ ਦੇਵ ਹਰ ਜੀਓ ਬਸੈ ਸੰਗ, ਰਵਿਦਾਸ ਤੇ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਗੋਬਿੰਦ ਰੂਪ। ਬਸੰਤ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅਨਕ ਜਨਮ ਭਰਮੇ ਜੋ ਨ ਮਾਹੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਨਰਕ ਪਾਹੇ, ਭਗਤ ਬਿਹੂਨਾ ਖੰਡ ਖੰਡ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਜਮ ਦੇਤ ਡੰਡ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਮੀਤ, ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰੀਤ। ਰਹਾਉ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਆਵਤ ਕਹੂੰ ਕਾਜ, ਤੂੰ ਬਾਦਰ ਸਭ ਮਾਇਆ ਸਾਜ।

काम क्रोध मन वस किया, सुपने नाम न हर लिया। कभी राजा कब मंगनहार, दुख सुख बंधो संसार। मन उदरन का साजना है, पाप बंधन नित पौत जाहे। ईठ मीत को सखा नाहे, आप बीज आपे ही खाहे। जा कह कीने होत बेकार, से छोड़ चलिया खिन मैं गावार। माया मोहे बहु परमया, किरत रेख कर करमया। करने हारा लिपत आप, नहीं लेप प्रपुन पाप। राख ले हो गोबिंद दयाल, तेरी शरण पूर्ण कृपाल। तुझ बिन दूजा नहीं ठाओ, कर कृपा प्रभ देहो नाओ। तू करता तू करनहार, तू ऊंचा तू बहु अपार। कर कृपा लड़ ले हो लाए, नानक दास प्रभ की शरणाए। बसंत की वार महल पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर का नाम ते आए कै हो हरिया पाई, कर्म लिखन तै पाई है एह रुत सुहाई। वन त्रैण त्र पौन मौलिया, अमृत फल पाई। मिल साधु सुखी उपजै, लथी सब शाई। नानक सिमरै एक नाम, फिर बहुन ना ताई। पंजे बदे महाबली, कर सच्चा ढोवा। अपने चरण जपायन, विच दै खड़ोवा। रोग सोग सब मिट गए, नित नवा निरोवा। दिन रैण नाम त्याईंदा, फिर पाए ना मोवा। जिस ते उपजिया नानका, सोई फिर होवा। किथों उपजै कह रह, कै माए समावै। जी जंत सब खसम के, कौन कीमत पावै। कहन त्याईन सुन नित, से भगत सुहावै। अगमा गोचर साहेबो, दूसर लवै ना लावै। सच पूरै गुरु उपदेसिया, नानक सुनावै। बसंत बाणी भगतां की, कबीर जी कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मौली धरती मौलिया आकाश, कटकट मौलिया आत्म प्रगास। राजा राम मौलिया अंत पाए, जै देखाओ तै रहा समाए। रहाओ द्वितीया मौले चार वेद, सिमरत मौली स्यो कतेब। शंकर मौल्य योग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान। पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान। सन्यासी माते हमेव, तपसी माते तब कै पेव। सब मत माते को न जाग, संग ही चोर कर्म सुन लाग। रहाओ जागै सुख देओ आर्यकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर। शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव। जागत सुबत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार। इस देही के अधिक काम, कह कबीर भज राम नाम। जोय खसम है जाया, पूत बाप खेल आया। बिन श्रवणा खीर पिलाया, देख लोगा कल को पाओ। सुत मुकलाई अपनी माओ। रहाओ पग्गा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता। निंद्रा बिन नर पैसोवै, बिन बासन खीर बलोवै। बिन असन गऊ लवेरी, पेंडे बिन बाड़ कनेरी। बिन सतगुर बाट ना पाई, कहो कबीर समझाई। प्रहलाद पठाए पंड साल, संग सखा बहुलिए बाल। मोको कहा पढ़ाव सियाल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न से नहीं काम। रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बुलाए बेगताए। तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छिड़ाऊ मेरो कहो मान। मोको कहा सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार। एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार। काड़ खड़ग को प्यो रसाए, तुझ रख नहारो मोहे बताए। प्रभ थमते निकसे कै विस्तार, हर नक्ष छेद्यो नख बिदार। ओए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव। कह कबीर को लखे ना पार, प्रहलाद उधारे अनकबार।
ਇਸ ਤਨ ਮਨ ਮੱਧੇ ਮਦਨ ਚੋਰ, ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਹਿਰਲੀਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅਨਾਥ ਪ੍ਰਭ ਕਹੋ ਕਾਹੇ, ਕੋ ਨਾ ਬਿਗੂਤੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਾਹੇ। ਮਾਦਾ ਦਾਰਨ ਦੁਖ ਸਯੋ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੋ ਚਪਲ ਬੁੱਧ ਸਿਓ ਕਹਾਂ ਬਸਾਏ। ਰਹਾਓ ਸਨਕ ਸਨੰਦਨ ਸਿਵ ਸੁਕਾਦ, ਨਾਭ ਕਮਲ ਜਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦ। ਕਬ ਜਨ ਜੋਗੀ ਜਟਾ ਤਾਰ, ਸਭ ਆਪਣੇ ਅਵਸਰ ਚੱਲੇ ਸਾਰ। ਤੂੰ ਅਥਾਹ ਹੋ ਮੋਹੇ ਥਾਹ ਨਾਹੇ, ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਦੁਖ ਕਹੋ ਕਾਹੇ। ਮੋਰੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖਿਆਥ ਤੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਗੁਣ ਰਹੁ ਕਬੀਰ। ਨਾਇਕ ਏਕ ਬਨਜਾਰੇ ਪਾਚ, ਬਰਦ ਪਚੀਸਕ ਸੰਗ ਕਾਚ। ਨਹੋ ਬਹੀਆਂ ਦਸ ਗੋਨ ਆਹੇ, ਕਸਨ ਬਹੱਤਰ ਲਾਗੀ ਤਾਹੇ। ਮੋਹੇ ਐਸੇ ਬਣਜ ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਨਕਾਜ, ਜਿਹ ਘਟੈ ਮੂਲ ਨਿਤ ਬੜੈ ਬਿਆਜ। ਰਹਾਓ ਸਾਤ ਸੂਤ ਮਿਲ ਬਨ ਯਕੀਨ, ਕਰਮ ਭਾਵਨੀ ਸੰਗ ਲੀਨ। ਤੀਨ ਜਗਾਤੀ ਕਰਤਰਾਰ, ਚਲੋ ਬਨਜਾਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ। ਪੂੰਜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬਨਜ ਟੂਟ, ਦਹਿ ਦਿਸ ਟਾਂਡੋ ਗਯੋ ਫੂਟ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਮਨ ਸਰਸੀ ਕਾਜ, ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੋ ਤਾਂ ਭਰਮ ਪਾਜ। ਬਸੰਤ ਹਿੰਡੋਲ ਕਰ ਦੂਜਾ ਏਕ ਓਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ

मर है आप आगे कहो पंडित सूचा कम ठाओ जहां बैसहो भोजन खाओ रहाओ जेहबा जूठी बोलत जूठा कर्ण नेत्र सब जूठे इंद्री की जूठ उत्तर सनाही ब्रह्म अगन के लूठे अगन पी जूठी पानी जूठा जूठी बैस पकाया जूठी करसी प्रोसन लगा जूठे ही बैठ खाया गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दिनी कारा कह कबीर ते नर सूचे साची परी बिचारा रामानंद जी कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद कत जाइए रे कर लागो रंग मेरा चेतना चले मन पयो पंग रहाओ एक दिवस मन पहियो मांग कह चंदन चोवा बहुत सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुरमन ही माहे जहां जाइए तह जल पखान तू पूर रहो है सब समान वेद पुराण सब देखे जोए उहां तव जाइए जो इहां ना होए सतगुर मैं बलिहारी तोर जिन सगर बिकल ब्रह्म काटे मोर रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म गुर का शब्द काटे कोट कर्म बसंत बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद साहेब संकट वै सेवक पजै चिरंकाल ना जीवै दो को लज्जै तेरी भगतना छोड़ाओ पावै लोग हसै चरण कमल मेरा ही अरे बसै रहाओ जैसे अपने तनह प्राणी मरन मांडै तैसे संत जना